हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना। और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूं, वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म आयाम, सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले

बैठने की विधि सभी प्राणायाम सिंहासन सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नासिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है। दोनों हाथ कंधे के समांतर उंगलियों से कंधे को छूना है। दोनों हाथ कानों से सटाते हुए ऊपर नीचे की ओर लेके जाना। उंगलियां कंधों पर रखकर कोहनियां गोल गोल घुमाना। दोनों हाथ घुटनों पर कंधे का संचालन करना। तो ये है कपालभाति प्राणायाम में द्वितीय चक्र सूक्ष्म व्यायाम का। कपालभाति प्राणायाम का तृतीय यानी तीसरा चक्र प्रथम चक्र की भांति ही 5 मिनट इसे हमें करना है। तृतीय चक्र में सूक्ष्म व्यायाम आता है। बाएं जांघ पर दाएं पैर को मोड़कर रखें, ऊपर नीचे दबाएं व बाल मंचन आसन करना है। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करना है। पैर के दोनों तलवों को आपस में जोड़कर दोनों हाथों से पैर की उंगलियां पकड़कर बटरफ्लाई करना है। आइए अब कपालभाति के प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र के साथ में लाभ की ओर चलते हैं। चेहरे की आभा सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ
पेट की सभी बीमारियों जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, शरीर की गांठें, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, एलर्जी एवं समस्त वात पित्त एवं कफ दोष, कैंसर की गांठें इत्यादि ठीक होते हैं और मन में उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज आपको मैं ये बता दूं कि ये जो समय सारणी आज हम आपको बता रहे हैं, ये निरंतर ही योगशाला में हम आज आपको कराते रहेंगे, क्योंकि ये समय सारणी अगर आपने नित प्रतिदिन कर ली तो आपको कोई और प्राणायाम करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। इसके बाद आता है तीसरा यानी वाय प्राणायाम, 5 बार करेंगे। नाक से श्वास फेफड़ों में अधिक से अधिक भरें, फिर नाक से ही पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। पेट को ऊपर की ओर खींचें, यानी उद्यान बंध में। नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर की ओर उठाकर रखें, यानी मूल बंध को। हुड्डी को कंठ से लगाएं, यानी जालंधर बंध को, और एक त्रिबंध लगाकर साथ में करते हैं। इसके बाद एक प्राणायाम और आसन आता है जो कि है अग्निसार, सहायक क्रिया प्राणायाम। 5 बार फेफड़ों में नाक से श्वास अधिक से अधिक भरें, फिर पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर रोक दें। पेट को ढीला करके अंदर बाहर चलाना है। आइए अब अग्निसार के लाभ। समस्त उदर, मूत्र व किडनी संबंधी रोग इस प्राणायाम को करने से दूर होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम साथ ही साथ में हमें हाथों का, पैरों का और कंधे का करते रहना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समय सारणी में इसके अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि लिसनर्स आपको पता है कि हम योग की एक समय सारणी को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो पहला उसका पार्ट समय सारणी में हो चुका है जो वाय प्राणायाम तक हुआ था। आइए अब अनेक और प्राणायाम ऐसे हैं जिसे हम अपनी समय सारणी में ला सकते हैं। अगला प्राणायाम है अग्निसार, सहायक क्रिया प्राणायाम हम साथ ही साथ में करते रहेंगे। 5 बार फेफड़ों में नाक से श्वास अधिक से अधिक भरें, फिर पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर रोक दें। पेट को ढीला करके अंदर बाहर चलाना है। लाभ जो इससे होने वाले हैं वो है समस्त उदर, मूत्र व किडनी संबंधी रोग दूर होते हैं। अगला है उज्जयी, गले को सिकोड़ते हुए लंबी सांस भरें, गले से आवाज निकलेगी। कुछ समय के लिए हुड्डी को कंठ से लगाएं, फिर गर्दन सीधी करके दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका से सांस बाहर निकाल दें। इसका लाभ थायराइड, टॉन्सिल व खर्राटे ठीक होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम उज्जयी प्राणायाम के अंतर्गत दाहिनी भुजा व बाईं भुजा को क्रमशः 5 बार सीधा उल्टा घुमाते रहना है। इसी क्रम में दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम आइए करते हैं। लगातार 5 मिनट तक करना है। प्रथम चक्र दाईं नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करके बाएं से श्वास अंदर भरें, फिर बाईं नासिका को मध्यमा व अनामिका से बंद करके बाहर निकालें, फिर दाई नासिका से श्वास भरकर दाहिने अंगूठे से दाई नासिका बंद कर लें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। सूक्ष्म व्यायाम अनुलोम विलोम के अंतर्गत 5 मिनट लगातार प्रथम चक्र की भांति ही करना होगा। द्वितीय चक्र सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर आपस में कलाई पकड़कर अंगड़ाई की मुद्रा में दोनों कंधों की तरफ कम से कम 2-2 बार स्ट्रेच करें, फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर सर के पीछे लगाकर सर का दबाव हथेली की तरफ और हथेली का दबाव सर की तरफ बनाएं। दायां हाथ दाहिनी कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं, बायां हाथ बाईं कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं एवं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जोड़कर मत्थे से ले जाकर लगाएं। हाथ से मत्थे पर उसी हाथ को विपरीत बल लगाने पर मेरुदंड में कंपन होने पर छोड़ दें। 3 अभ्यास करें। हाथ घुटनों पर रखकर
कंधे का संचालन करें। यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा आवश्यक होता है हमारी शरीर की पूरी नस नाड़ियों के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट लगातार प्रथम चक्र की भांति, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र साथ में। सूक्ष्म व्यायाम पैर फैलाकर नी कप सिकोड़ना और छोड़ना, जांघ को नीचे से पकड़कर पैर से साइकिलिंग करना, पैर को गोल दाएं व बाएं घुमाना, तितली आसन करना। लाभ: डिप्रेशन, माइग्रेन तथा आँखों के रोगों में अत्यंत लाभ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर वक्रतुंड सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना, इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं, और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

आप सुन रहे हैं आरती स्पेशल पहली किरण, जहां हर सुबह होती है श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के नाम। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की, या कर रहे हैं उस परंपरा की, जो शब्दों से नहीं प्रकाश से प्रार्थना करती है, यानी आरती। प्राचीन काल की आरती। प्राचीन समय में जब मंदिर नहीं थे, मंत्र पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य के हृदय में बसते थे मंत्र, तब अग्नि ही गुरु थी। ऋषि मुनि यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखारबिंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों, अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है। कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना, तो माँ के लिए ये मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी, यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है। बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है। यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र, मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, अर्थात हे कृष्ण मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जीवन की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्राप्त कराएं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाहन करता है। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण की आरती की ओर।

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए, अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीज़ों को स्वस्थ रखती हैं, माँ शारदे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात, अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए, अब बढ़ते हैं माँ शारदे की आरती की ओर।

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है, जो घर से रोगाणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत, प्रेत, अज्ञान, रोग, दुराचार, पाप, दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से, जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया, जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गो माता की। कहते हैं ना कि गो माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इनके श्रीपग जहाँ भी पड़ते हैं वो जमीन अपने आप में ही माना जाता है कि गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, क्योंकि इनके खुर से ही गंगा का उद्गम माना गया है। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थी भीषे चिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र गाय की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी तीर्थ उनमें निवास करते हैं, यानी हमारी गौ माता में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा? Hey, not possible. You know what they're saying? Life is like a roller coaster ride. What do you say? पर तुम तो यहाँ हो ही नहीं, किससे पूछो?

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: आज से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan. आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और आपका मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा। यस ऑफ कोर्स आपके अपने आरजे अदनान आ गए हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में और आने के साथ ही साथ देखिए कितना गुलजार सा मौसम हो रहा है भाई। इस वातावरण की बात नहीं कर रहे, आपके चेहरे की बात कर रहे हैं। कितना ज्यादा खुश आप हो गए, डेफिनेटली हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं जब आपसे मिलते हैं। तो चलिए इसी मुलाकात को अब चूंकि शुरू कर चुके हैं तो अब आपको बिना देरी किए हुए सीधे ले चलते हैं थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। सो क्या आप जानना चाहेंगे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? सो आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो ये कहता है कि इररिप्लेसिबल यानी कि अपूर्णीय बनने के लिए आपको अलग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई चीज या आप खुद इररिप्लेसिबल हो यानी दोस्तों के ग्रुप्स में, फैमिली में, अपने करियर में, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी, तो आपको अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को हमेशा बना के रखना होगा क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रिप्लेस करने में किसी को भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी है जो स्पेसिफिकली आपको डिफाइन करती है, जो बताती है कि आप इस तरह के हैं, अगर आप उसको ले करके और रख करके चलते हैं सो डेफिनेटली आप इररिप्लेसिबल हो जाएंगे यानी आपकी कोई अपूर्णीय होंगे, आपके कोई जगह नहीं ले पाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं कर पाएगा जो आप जैसी हो। सो इसलिए आपका स्पेशल होना, अपनी स्पेशलिटी को हमेशा बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फिलहाल मुझे लगता है कि ये थॉट आप तक पहुंच गया है और इस थॉट को अब आप जरा सोचिए कि क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको इररिप्लेसिबल बनाती है आपके करियर में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, कहीं पे भी, किसी भी मंच पे। और जरूर होगी, तो सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि उसको आज से निखारने का काम भी आप शुरू करने वाले हैं। सो फिलहाल स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और लौटते हैं हम कुछ नई बातों के साथ।

0: क्या बात है भाई, जलवों का धुआं नहीं झड़ता, क्यों? क्योंकि कहते हैं जब बारिश हो जाती है तो जो सारे धुएं होते हैं, धूल होती है, वो खुद ब खुद मिट जाती है। फिलहाल कल की बारिश मुबारक, एक ऐसी बारिश जो ऑलरेडी काफी अनएक्सपेक्टेडली हुई, और न सिर्फ हुई बल्कि बहुत बड़ी राहत लेकर आई। सो ऑफकोर्स जैसे बारिश मुबारक, वैसे आपको आज का सैटरडे मुबारक। वेलकम करते हैं आपका मॉर्निंग वाले शो में, आपने ट्यून किया हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और लगातार जबरदस्त आप बैक टू बैक सॉन्ग सुनते जा रहे हैं। सो फिलहाल इस सॉन्ग के बाद भाई आपको ले चलते हैं सीधे कहाँ, आज की थॉट ऑफ द डे की तरफ, जो कि आपका इंतजार कर रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। सो यस, आज का थॉट ऑफ द डे क्यों बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज है वीकेंड मॉर्निंग, और आपको पता है कि जब वीकेंड का टाइम आता है तो कितना ज़्यादा सब कुछ ख़ास हो जाता है। सो चलिए इसी को और भी ज़्यादा ख़ास बनाते हैं इस वीकेंड मॉर्निंग के थॉट ऑफ द डे के साथ। लेकिन उससे पहले एक बात जो शायद जहन में आती है कि आज की सुबह क्या नया किया, क्या कुछ जो सोचा था उसमें कुछ नया हुआ, या आज भी सुबह वैसी ही हुई जैसी अभी तक हो रही थी, सोचने वाली बात है ना। यस, सो अगर कुछ नया हुआ है तो ज़रूर हमारे साथ में साझा करिए, क्योंकि हम तो इंतज़ार करते हैं कि भाई अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा नया है, कुछ भी आप जानते हैं या ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत अगर कुछ नए के साथ होती है तो उसमें कुछ बात होती है। और कहते हैं ना कि शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी शुरुआत आराम से हो जाती है, उसमें पता नहीं चलता है। जब हम कुछ बहुत बड़ी चीज़ की तरफ जाते हैं तो एक साथ हमको बहुत बड़ा लगता है कि भाई ये तो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं, सो डेफिनेटली इट डज़ वर्क, और कहीं ना कहीं फिर वो सारी चीज़ें हमारे साथ में हो भी जाती हैं। तो आइए ऐसे ही एक खूबसूरत से थॉट की तरफ आपको ले के चलते हैं, और इसी थॉट के बाद आप बताइए कि आपको आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा मॉर्निंग वाले शो का।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

ज्यादातर दुनिया को ये लगता है कि भाई जो मोक्ष है वो दरअसल जिंदगी के बाद है, राइट? बट आज का थॉट ऑफ द डे कुछ और कहता है। आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि असली मोक्ष जो है वो जीवन के बाद नहीं, खुद जीवन है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे भाई, मोक्ष यानी शांति, और ये तो जब जिंदगी नहीं रहती उसके बाद ही परमानेंट वाली मिल जाती है। बट जरा सोचिए, कोई भी चीज जब सब वक्त निकल जाए और कुछ भी ना हो, जब सब कुछ डेड हो, तो उस वक्त हम किसी एक क्रिया को कैसे मान सकते हैं कि कोई चीज़ चल रही है? कहते नहीं कि आप कहो कि हम बहुत अच्छे हैं या फलाना शख्स बहुत अच्छा है, बट उसकी अच्छाई तो तब समझ में आती ना जो बुरा वक्त आता है। अच्छे वक्त में तो सभी अच्छे होते हैं, सभी का मूड अच्छा होता है, लेकिन सही इंसान की तलाश हम वहाँ कर पाते हैं जो मुसीबत में या बहुत ज़्यादा टफ टाइम में वो खुद को मैनेज कर लेता है, या वो बहुत अच्छे से चीज़ों को वहाँ से करके तब निकलता है। सो दैट इज़ द पॉइंट। ये बहुत बड़ी बात है कि मोक्ष जो है वो ज़िंदगी के बाद नहीं बल्कि ज़िंदगी में ही है, और इसी को ही मैनेज करना है, राइट? यही कहना है आज के सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट का। सो आज का थॉट ऑफ द डे ये पैगाम लेकर आया है कि भाई जो मोक्ष है वो ज़िंदगी के बाद वाला नहीं है, ज़िंदगी में ही है। सो कहीं ना कहीं इस बात को शायद हमको समझना पड़ेगा, न सिर्फ समझना पड़ेगा बल्कि इस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में फील भी करना होगा। और जिस दिन हमको हमारी लाइफ में ये फील होने लग गया, उस दिन मान लीजिए कि चीज़ें हम खुद ब खुद लाइफ को लेकर ही चलेंगे। यानी जो भी हम सुकून ढूंढते हैं, जो भी शांति पीस जिसकी हम बात

करते हैं वो लाइफ में ही होता है, और वही शायद हमारा मोक्ष होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से हट करके कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जिसमें हम सच में खुद को पाते हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ में तो हम नहीं पाएंगे, राइट? सो यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। बड़ा ही प्यारा थॉट ऑफ द डे है, और कहीं ना कहीं ये थॉट ऑफ द डे बड़ी ही प्यारी बात कहता है, और ये जो बात है मुझे तो बहुत पसंद आई, एंड डेफिनेटली मैं खुद भी अब अपनी लाइफ में वो मोक्ष पाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल क्या आप भी कोशिश करके ये मोक्ष पाने की तैयारी में हैं? अगर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपको कैसा लगा थॉट ऑफ द डे, आप भी सोच सकते हैं, और अगर बताना भी चाहें तो 89.6 FM की चैट बॉक्स पर आकर के बता भी सकते हैं। इंतज़ार रहेगा फिलहाल आपका। एक बार वापस से सैटरडे मॉर्निंग मुबारक, और आरजे अदनान लाइव हैं आपके शो में।

0: क्या बात है भाई। और सुबह सुबह अगर अदनान समी आ जाए तो भाई ऐसा लगता है जैसे छा गए हैं दिलो दिमाग पर। कुछ वॉइसेस ऐसी होती है जो मॉर्निंग के वाइब को देके चली जाती है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई अब सीधे चलते हैं इस बात की तरफ जो अभी हमने कहा है। और क्या कहा है? थॉट ऑफ द डे को कहीं ना कहीं लाइफ में फील करने को कहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो थॉट ऑफ द डे है ये सच में लाइफ में फील हो जाते हैं। और देखिए मैसेजेस भी आ गए हैं। क्या मैसेजेस आए हैं वो तो हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जो भी हमारे श्रोता फ्रीक्वेंसी से ट्यून करके सुन रहे हैं 89.6 FM को उनका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो सुनते हैं हमको रेडियो गार्डन पर वर्ल्ड वाइड, आपका भी वेलकम करते हैं। और साथ ही कई सारे ऐसे श्रोता हैं, बहुत सारे ऐसे जो सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से ट्यून करके सीधे लाइव शोज में बातचीत करते हुए। तो भाई हम आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और अब आइए चलते हैं आपके आए हुए मैसेजेस की तरफ।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई पहला मैसेज जो दिख रहा है वो मुकेश यादव का गोंडा से ही दिख रहा है। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, दिल से गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम करते हैं मुकेश आपका मॉर्निंग वाले शो में। आशु जी हैं लखनऊ से, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात, आपका भी स्वागत करते हैं। और आप लिखती हैं कि दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह हैं, या तो किसी के दिल में या तो किसी की दुआओं में, और ये दोनों ही जगह बहुत ही लाजवाब है। बहुत इवन मैं तो कहता हूँ स्पेशल फील होता है अगर आप सच में रहते हैं ऐसे। एंड आशु जी ने कहा है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रीति जी भी बहराइच से मौजूद हैं, लिखती हैं सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड लिखती हैं गीता श्रीवास्तव जी, गुड मॉर्निंग डियर आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सविता दुबे जी हैं हरखापुर गोंडा से, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी। आशु जी ने भी लिखा है कि जो आत्मा को जान लेता है वही संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप ना तो शरीर है ना ही मन, बल्कि वो शुद्ध चैतन्य आत्मा है। प्रीति जी लिखती हैं 100% सत्य वचन, ऑसम थॉट। जो इंसान कठिनाइयों पर चलता है उसको ताउम्र परीक्षा ही देना पड़ता है, और उसकी परीक्षाओं का कोई अंत ही नहीं, जैसे कि मेरा। गीता जी लिखती हैं कि जब से खुद को जाना है जिंदगी भागम भाग में बीत रही है, थोड़ा सा रुक कर आज का थॉट सुना, बहुत ही प्यारा सा मन को शांति मिले। ना कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाना है, बेशक। सो इस थॉट के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच में समझ में आती है कि ये जो मोक्ष है ये कहीं और नहीं मिलने वाला, ये हमको अपनी लाइफ में ही ढूंढना है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्रिएट करना है, यानी यहीं से इसको निकालना है, क्योंकि इसकी कोई और जगह नहीं है, इसकी जगह है तो यहीं पर है। सो अब किस तरह से हम अपनी लाइफ के मोक्ष को ढूंढते हैं, किस तरह से ये हमको मिलता है, ये हम ज़रूर देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। एंड इसकी इम्पॉर्टेंस का ऑफकोर्स अंदाज़ा हमको तब लग पाता है जब हम इसको कर पाते हैं, क्योंकि जब तक नहीं करते हैं तब तक हमको इसकी वैल्यू भी समझ में नहीं आती। हमको लगता है कि शायद नहीं होगा, लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, बट ऐसा नहीं है। कुछ भी करते रहे, कोई भी सिचुएशन रहे, उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा ज़रूर हिस्सा लाइफ का आना ही चाहिए जिसमें आप उस सुकून को महसूस कर सके एटलीस्ट, क्योंकि ये हिस्सा आपकी लाइफ को बेहतर न सिर्फ बनाता है बल्कि उसके अर्थ को ढूंढता है। क्योंकि सिर्फ पैदा हो गए हैं और इस दुनिया में, इस जहां में है, ये तो काफ़ी नहीं है। कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनसे हमको लगता है कि अच्छा हम इसलिए हैं इस लाइफ में या इसलिए इस जहां में हैं। जैसा कि कभी बिला एक्सपेक्टेशन आपने किसी की हेल्प की है, या किसी ने आपको बहुत ढेरों दुआएं दी है, कुछ भी ऐसा रहा है, उस पल उस मोमेंट आपको लगा है कि दिस इज़ माई लाइफ एंड मुझे यही चाहिए था। एंड डेफिनेटली ऐसा होता है कि हम कहते हैं इसी मोमेंट के लिए तो शायद हमने काफ़ी दिन से इंतज़ार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हमको समझनी ही होगी कि भाई जो कुछ भी है वो लाइफ के अंदर ही है, लाइफ के बाहर कुछ भी नहीं है। और ये अगर बात हमने समझ ली तो शायद फिर हम लाइफ के अंदर के एफर्ट्स करना शुरू कर देंगे, यही होगा। सो आपको कैसी लगी ये बात जाग करके, ये हमको आप बता सकते हैं। और फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। और कहते हैं ना कि भाई जैसे सॉन्ग्स होते हैं वैसा मूड हो जाता है, तो चलिए सॉन्ग्स तो आपको वैसे भी गुड मॉर्निंग गोंडा में बैक टू बैक हिट्स और रोमांटिक सुनने को मिलते हैं। सो फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट म्यूज़िकल ट्रैक की तरफ। लेकिन आज बातचीत में तो भैया बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए हम लेकर आए, क्योंकि आज सैटरडे है, आज है वीकेंड वाली मॉर्निंग, और आज वीकेंड की इवनिंग होगी, सो जाहिर है खास तो होने वाली है। फिलहाल स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: सो भाई, इतनी सारी बातों के बीच में अगर आपको ये ना बताया जाए कि अपने शहर यानी गोंडा में क्या कुछ चल रहा है, तो बात जो है वो अधूरी ही मानी जाएगी, डेफिनेटली मानी जाएगी। तो इसलिए हम बात को अधूरी ना छोड़ते हुए आपको ले चलते हैं आज की सिटी अपडेट की तरफ, और बताने वाले हैं कि भाई गोंडा में क्या कुछ चल रहा है जो आज आप जानेंगे आपके मॉर्निंग वाले शो के सेगमेंट सिटी अपडेट्स में। सो चलिए रुख करते हैं अपनी सिटी की तरफ और जानते हैं कि क्या हाल है अपनी सिटी का।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

सो सिटी अपडेट्स में आपको ये बताने वाले हैं कि गोंडा में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, राइट? सो भाई आपको हम बता दें कि सबसे पहले तो गर्मी को लेकर ही अपडेट है और कहीं ना कहीं सेहत काफ़ी बिगाड़ रही है ये गर्मी। चिड़चिड़ापन, बेचैनी और नींद ना आने की वजह से इसकी शिकायत लोग जो है डॉक्टर्स से कर रहे हैं और हीट स्ट्रिट्स और पानी की कमी बताया गया है वजह। जी हाँ, सो आइए बताते हैं क्या है पूरी बात। दरअसल जून का ये जो लास्ट वीक है, इसके बीतने के बावजूद भी भीषण गर्मी लोगों को चूँकि अभी राहत नहीं दे रही है। और अगर हम कल की ही बात करें तो ज़िले का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था यानी अधिकतम तापमान वो 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो था वो 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज भी किया गया। तेज़ धूप थी, उमस थी और गर्म हवाएं भी कहीं ना कहीं ऑफकोर्स चल रही थी, जिससे सड़कों पर आपने आवाजाही भी काफ़ी कम देखी थी। सो अब ये जो असर है गर्मी का, ये सिर्फ बॉडी पर नहीं मौजूद है बल्कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की माने तो इससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी और कहीं ना कहीं मेंटल थकान की भी बात सामने आ रही है। नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। सो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और फिजिशियन ने बताया भी कि पिछले कुछ हफ्ते में बिना किसी क्लियर बीमारी के ऐसे मरीज़ ज़्यादा नंबर्स में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जिन्हें बहुत मानसिक बेचैनी और उनके बिहेवियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही है। सो आपको हम बता दें कि फ़िलहाल किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो सलाहकार हैं उनके हिसाब से लगातार 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है, उमस, बिजली कटौती, रात में पूरी नींद ना मिलना और बॉडी में पानी की कमी मिल करके जो हमारा मस्तिष्क है इस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, इससे इंसान का जो बिहेवियर है, फैसला लेने की जो क्षमता है और भावनात्मक जो संतुलन है इस पर भी असर पड़ता है। सो इसका होता क्या, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, आपके पेशेंस लेवल में कमी होना और स्ट्रेस बढ़ने जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती है। सो लक्षण हम आपको बता देते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है ये भी आप ज़रूर जान लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और गर्मी किसी एक शख्स के लिए नहीं बढ़ रही बल्कि हर किसी के लिए बढ़ रही। सो क्या क्या वो लक्षण है जिनका ध्यान देना है, अगर ये लक्षण हमारे अंदर नज़र आते हैं तो हमको किस तरह से इससे बचाव करना। पहली बात तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, ये एक लक्षण है जो कि गर्मी का ही हो सकता है। बढ़ती गर्मी से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, लगातार बेचैनी और घबराहट। इसके अलावा पेशेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है, हम फटाक से कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है, ये भी एक लक्षण है। किसी काम में ध्यान भी नहीं लग रहा है, ये भी एक लक्षण है। मानसिक थकान और सुस्ती रहती है, हमेशा लेटने का मन करता है और कोई काम नहीं करने का मन करता है और फैसला लेने में भी आप प्रॉब्लम हो रही है या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लोगों से मिलने जुलने से भी बच रहे हैं कि अरे आओ यार इतनी गर्मी क्या मिले, अरे ऐसे वैसे। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं लक्षण माने जा रहा है बढ़ती गर्मी का। इससे बचाव क्या करना है कि दिन भर जो है वो हमेशा हमने भी आपको रिमाइंडर दिया है कि भाई पानी पीते रहना है, ORS है या इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका इस्तेमाल करना है। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से सच में बचना, मतलब अगर बहुत ज़रूरी बात या काम ना हो तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जब धूप सबसे ज़्यादा होती है उस वक्त में निकलने से बचना होता है। हल्का और जो आसानी से पच जाए वो खाना खाना होता है, यानी लाइट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना होता है। अब चूंकि नींद में खलल कौन डालता है, सबसे पहले तो मोबाइल और लैपटॉप इसका ज़्यादा इस्तेमाल डालता है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है। घर और जो भी आपके कार्यस्थल है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ हवा का इंतज़ाम आपको रखना है कि वहाँ फ्रेश एयर आपको लगातार मिलती रहे। इसके अलावा बच्चों और बुज़ुर्गों को बंद और गर्म कपड़ों जो कमरे हैं उसमें लंबे वक्त तक नहीं रखना है, यानी ऐसी जगहों पे रखना है जहाँ पे आसानी से हवाएं आती जाती हो। और इसके अलावा लगातार मानसिक परेशानी अगर है, यानी नहीं ख़त्म हो रही है, तो किसी न किसी आपको चिकित्सक यानी आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जानकारी हमने आप तक पहुँचाई क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है गोंडा
मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के हिसाब से ही हमने आपको बताया किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और ये यहाँ नहीं, मतलब जहाँ जहाँ गर्मी ज़्यादा है हर वहाँ हर उस जगह ये पड़ रही है। इसके अलावा गर्मी में ट्रिपिंग और फॉल्ट से भी परेशानी बढ़ गई है। सो गर्मी की वजह से कई जगह केबल भी ख़राब हो रहा है और बहुत भीषण गर्मी से लेकर गांवों से लेकर शहरों तक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत जगह लाइंस में फॉल्ट आ रहा है, इसकी भी बात बताई जा रही है। इसके अलावा 7,66,00,000 रुपए से 17 सड़क परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है। सो देवीपाटन मंडल की जो 17 सड़क परियोजना हैं इसका निर्माण और मरम्मत से जुड़े काम इसको बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही अधीक्षण अभियंता देवीपाटन के 4 ज़िलों में जो स्वीकृत 17 सड़क परियोजनाएं हैं वो बताया गया कि इसमें ज़्यादातर 11 परियोजनाएं बलरामपुर ज़िले से जुड़ी हैं। इसमें रमईडीह गुरचाही संपर्क मार्ग, भुसहर पुरई संपर्क मार्ग, आजमडीह फरेंदी गौरा संपर्क मार्ग, विशुनपुर कोडर वीरपुर मार्ग, परसिया गौरी बेला मार्ग, बलदेव नगर लौकहवा स्कूल संपर्क मार्ग, इन सभी के साथ इनके ज़रूरी काम जो हो रहे हैं वो। और गोंडा ज़िले की बात करें तो इसमें 6 सड़क परियोजनाओं के लिए भी पैसे जो हैं वो आ गए हैं। इसमें बरईपुरवा संपर्क मार्ग, मसौलिया कोडरी संपर्क मार्ग, घरकुइयां डीहा संपर्क मार्ग, सरैया मार्ग से मनिहारी घाट संपर्क मार्ग, नौवा गांव टेढ़वा गुलाम संपर्क मार्ग और सहरिया चौराहे से झौना पश्चिम अहिरनपुरवा तक जो है संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। सो ये जो संपर्क मार्ग हैं इसके लिए स्वीकृत किया गया है बजट। एंड इसके अलावा चलते हैं आपको अगली अपडेट की तरफ। सो आज सुबह 7 बजे शहर के चेतना पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा आपको हम बता दें सुबह 10 बजे से पल्स पोलियो जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के CMO कार्यालय में रैली भी अभी निकाली जानी है, यानी अब से 15 मिनट बाद ये रैली निकाली जाएगी। समाधान दिवस भी आज हो रहा है, सुबह 10 बजे से नगर कोतवाली समेत ज़िले के सभी थानों पर समाधान दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है। इसके अलावा सुबह 10 बजे ही उतरौला रोड में मौजूद जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यहाँ पे हॉकी प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसके अलावा सुबह 10:30 बजे से मेडिकल कॉलेज में सामाजिक अधिकारिता शिविर के तहत दिव्यांग जन सहायक उपकरण वितरण भी अभी आज ही किया जाना है। सो ये सब जो थी वो आज की ही आपको बताया हमने अपडेट्स थी जो कि हमारे गोंडा की ही थी। आई होप कि भाई आप तक ज़रूर इसकी बात पहुंची होगी और कहीं ना कहीं कुछ खबर आपके काम की रही होगी। स्पेशली गर्मी की जो हमने बात बताई वो आप ख़ुद भी फॉलो करें, अपनी फैमिली में भी और लोगों तक भी इस बात को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये सतर्क होने की बात है, ये संभलने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े उससे पहले ही उसको हम समझ करके और सॉल्व करने की कोशिश करें, यही हमारी कोशिश होनी भी चाहिए और यही हम गर्मी को मात भी दे सकते हैं। सो फिलहाल हम भारतीय हैं भाई, जब हम करने पे आते हैं तो हम सब कुछ कर लेते हैं। तो चलिए फिलहाल गर्मी को मात देते हैं और सुनते हैं कूल सा गाना आपके मॉर्निंग वाले शो में।

क्या बात है भाई, क्या बात है। और इतनी सारी एनर्जी के बाद में हम वापस जब आए हैं तो मुझे लग रहा है कि भाई बहुत कुछ है जो आज आपसे बताना है और बहुत कुछ है जो आपको कहना है। सो फिलहाल अभी कमेंट में आशु जी ने बताया, एक और अपडेट दी है कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कल आग लग गई थी। ऑल राइट। एंड इसके अलावा प्रीति जी ने बोला है बहराइच से, सर जी चाहे जो मौसम हो मेरे वकील साहब को हर मौसम में बहुत ही गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि उनके पीछे एक स्प्रेयर लगाने वाला है, जैसे कि आजकल आप लखनऊ की फूड वैली में देखते हैं लोगों को कूल कूल करने के लिए पाइप्स से जो है वो बहुत सारे स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव होता है जिससे कि लोग कूल कूल रहे। एक उनके साथ में परमानेंट लगाने वाला है। वैसे क्या आइडिया है, अगर आपके पास भी इसका कोई अल्टरनेट आइडिया है तो आप भी बता सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको सच में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है। सो फिलहाल अगर आपके घर में भी कोई ऐसा हो और किसी ने उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हो तो भाई चलिए हम बता देते हैं प्रीति जी की, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये कई घरों की प्रॉब्लम है, ये कोई एक दो की बात नहीं है। कई घरों में ऐसे लोग होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उनका गुस्सा कैसे शांत किया जाए और किस तरह से हम उनको बिना ऐसे नुकसान पहुंचाए, बिना ठेस पहुंचाए हम चीज़ों को चेंज कर लें, यानी हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि बहुत इजीली आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। सो अगर कोई भी इस बात को कर चुका है तो वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमसे साझा कर सकता है। वापस लौटने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर भाई आप भी जान लीजिए, क्योंकि ये बातें आप तक पहुँचनी ही चाहिए।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5, सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।

0: भाई अगर आपके साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, यानी बिना छुए ही ख़त्म हो जाती है फ़ोन की बैटरी और आप भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यानी इसका सल्यूशन जो है वो आपके लिए ही है। जी हाँ, फिलहाल आपको ये पता है कि भाई आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बिना छुए ही फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़त्म हो जा रही है। सो चलिए हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, ऐसे हैक्स हैं, यानी आज 3 अगर सेटिंग्स आप चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। अब आप जो है वो अलर्ट हो गए हैं कि अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से आप अपनी बैटरी बचा सकते हैं फ़ोन की।
1: Now you're listening, Good Morning Kota, with your favorite, Ajay Khan.

सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाई कई बार आपका फ़ोन बिना इस्तेमाल किए ही डिस्चार्ज सा हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम बैटरी या स्मार्टफोन में हो, कई बार बैकग्राउंड में जो चल रही कुछ सेटिंग्स और एप्लीकेशंस हैं वो लगातार बैटरी खर्च करती रहती हैं। तो कैसे इनको रोकते हैं आइए बताते हैं। सो फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म होने की बड़ी वजह बैकग्राउंड ऐप्स और हमेशा ऑन रहने वाली लोकेशन सर्विस हो सकती है। सो कई ऐप्स बिना इस्तेमाल के भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जिससे बैटरी और फ़ोन की परफॉर्मेंस दोनों ही अफेक्टेड होती है। सो करना क्या है आपको, सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स हैं तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको ऐप्स करके मिलेगा, जी हाँ, आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। ऐप्स में आपको बैटरी मिलेगा, BATTERY बैटरी। इसमें जा कर के बैकग्राउंड एक्टिविटी करके लिखा होगा, बैकग्राउंड एक्टिविटी, इसको जा कर के रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप, जी हाँ। यानी उसमें बैटरी में जा कर के आपको ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड एक्टिविटी, इसको आप रेस्ट्रिक्ट करने का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आईफोन यूज़र जो हैं वो सेटिंग में जा सकते हैं, सेटिंग में आपको जनरल मिलता है, जनरल में जा कर के आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर सकते हैं। सो इसके साथ ही जिन ऐप्स को हर वक्त लोकेशन की ज़रूरत नहीं है उनकी लोकेशन परमिशन को ओनली वाइल यूजिंग पर सेट करने से भी बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब भाई परमानेंट आपका लोकेशन भी ऑन है तो उसके लिए भी अलग से बैटरी का कंजम्पशन हो रहा है, तो उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि एंड्रॉयड यूज़र्स जो है सेटिंग्स में जाएं, फिर ऐप्स में जाएं, फिर बैटरी में जाएं, और बैटरी में आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड एक्टिविटी, इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जबकि आईफोन यूज़र्स के लिए हमने बताया कि इनको सेटिंग्स में जाना है, देन जनरल में जाना है, और बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर देना है। सो इस तरह से ये दो काम करते हुए, साथ ही जिन ऐप्स को हर वक्त लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती उनकी लोकेशन परमिशन को ओनली वाइल यूजिंग पर सेट करने से भी बैटरी काफ़ी हद तक बचाई जा सकती है। सो ये

पर आप सेट करके अपनी बैटरी को और भी ज़्यादा बचा सकते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। सो चलिए बोलिए, कह दी ना, मिल गया सॉल्यूशन और दे दिया आपके आपने आरजे अदनान ने आपके मॉर्निंग वाले शो में। देखा, आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो इतनी समय से सॉल्व नहीं हो रही होती उसको चुटकियों में आकर के हम बता देते हैं भाई। यही तो फंडा है अपन का मॉर्निंग वाले शो में।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भाई मैं वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्तर 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो एक ऐसी कहानी जिसमें 20 घंटे की गुलामी, मारपीट और कैद, लेकिन एक मजदूर की हिम्मत ने 12 बंधुआ मजदूरों को आज़ादी दिला दी। आखिर क्या हुई पूरी बात, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग वाले जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

सो भाई आपको हम बता दें कि मुजफ्फरनगर में एक फैक्ट्री में नौकरी का झांसा दे करके राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश से लाए गए 12 मजदूरों, जिसमें नाबालिग भी शामिल थे, इनको कथित तौर पर महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। अगर इन पीड़ितों के माने तो उनसे रोज करीब 20 घंटे तक काम कराया जाता था, जबकि बताइए 8 घंटे का रूल होता है लेबर लॉ में। अगर देखा जाए 20-20 घंटे लगातार काम कराया जाता रहा। इनके मोबाइल और इनका जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं इवन वो तक छीन लिए गए थे, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, और अगर वो कोई अपोज करे तो लोहे की रॉड, पाइप और कोनों से पीटा जाता था। सो कुछ ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें दिन भर सिर्फ एक रोटी दी जाती थी और फैक्ट्री के बाहर पिटबुल कुत्ते तैनात रहते थे ताकि कोई भाग ना सके। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनी विक्रम की हिम्मत। दरअसल विक्रम, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर फैक्ट्री की दीवार फांदी और किसी तरह पुलिस तक पहुंचे और पूरी आपबीती सुनाई। इनकी शिकायत पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने छापा मारकर 12 बंधुआ मजदूरों को सुरक्षित छुड़ाया और कई आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। अब इस मामले में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और कई आरोपों की गंभीर जांच चल रही है। पीड़ितों का आरोप ये भी है कि भागने की कोशिश करने वाले एक मजदूर की मौत भी हो गई थी, जिसकी जांच जारी है। सो कभी कभी एक इंसान की हिम्मत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि कई और जिंदगियों की आज़ादी बन जाती है, ये समझ में आया इस बात से। ज़रा सोचिए, जिसको हम कभी न कभी अंग्रेज़ों के ज़माने से जोड़ करके ऐसे रूल की बात करते थे, वो आज आज़ाद हिंदुस्तान में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जहां इंसान को बांध दिया जाता है, पूरे 20 घंटे काम कराया जाता है, मोबाइल पहचान पत्र छीन लिए जाते हैं, अपोज करने पर लोहे की रॉड से मारा जाता है और बाहर पिटबुल जैसे ख़तरनाक चौकसी के लिए डॉग्स को छोड़ा जाता है। आज के ही वक्त में, हमारे ही समाज में, इसी भारत में जिसको हम महान कहते हैं, लेकिन शायद महानता कहने में नहीं है, महानता गलत को गलत कहने में है, तब आएगी। क्योंकि जिस तरह से बहुत सारी ऐसे हम घटनाओं को देख रहे हैं लगातार, एक ही चिंता का विषय है कि कल को हम भी हो सकते हैं, हमारी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है। राह चलते कहीं पे भी किसी को भी गुस्सा आता है, कोई कुछ भी कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात इसलिए नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। सो हमेशा से हमको शायद एक बात बताई गई है कि भाई अपने काम से मतलब रखो, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने काम से मतलब रखने लग जाएं तो कलकदार हमारा भी नंबर आएगा, फिर दुनिया देखेगी और वो अपने काम से मतलब रखेगी। सो फिर तो रोड पर हमारे साथ भी कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे लगता है इतनी हिम्मत ज़रूर हम सब में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पे हम खुद भी रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ भी है, और हम अगर इस देश को महान मानते हैं तो वो हमारे अंदर से होता है, कहने से नहीं बनता है। हम जब गलत को रोकने लग जाएंगे और सच को जब बढ़ावा देने लग जाएंगे तब महान माना जाएगा। फिलहाल इस तरह की घटनाएं सच पे सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि आज के भी वक्त में जिन कहानियों को हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे, जिनको बताया जाता था किसी ज़माने में ऐसा किया गया, वो आज इतने ज़्यादा आधुनिक युग में, आज के इस हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। फिलहाल आपका क्या मानना है और क्या है कहना, आप बयां कर सकते हैं चैट बॉक्स पर आकर के। और हम चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, वापस से आते हैं और ज़रूर हम कुछ और बातें भी संग अपने लाने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे पास आ गया है ऑफ कोर्स कंटेंट, जो कि आपकी तरफ से ही आप भेजते हैं फेसबुक पर, मैसेंजर पर या फिर इंस्टाग्राम के मैसेंजर पर। सो अगर आप भी लिखते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप लिख लें और हम तक पहुंचाएं, और हम उसको बाकी सभी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। एंड यस, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा मंच है जहां आपके लिखे हुए जज्बात, आपकी लिखी गई बात बाकी लोगों तक भी पहुंचने वाली है और पहुंचनी भी चाहिए।
सो फिलहाल अभी आइए चलते हैं अपने अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, वापस से आएंगे और आने के बाद कुछ और बातों को आपसे साझा करने वाले हैं। आप सुनते रहिए अपना मॉर्निंग वाला शो, गुड मॉर्निंग ओंडा विद योर मॉर्निंग चॉक, आरजे अदनान।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार तो हमेशा लड़ाई के बाद मुझसे बात क्यों नहीं करती हो?
1: वो इसलिए क्योंकि लड़ाई में की गई मेरी मेहनत बेकार न जाए।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका मॉर्निंग वाले शो में वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम और ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब करंट अफेयर्स में ही आपको मिलने वाला है। सो क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल सवाल भी बड़े अच्छे से हैं। सवाल ये है कि अभी हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा वोल्केन डी फुएगो ज्वालामुखी किस देश में मौजूद है, क्योंकि अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, इस कारण ये चर्चा में भी आया था और इसका नाम है वोल्केन डी फुएगो। ये किस देश में मौजूद है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी हंडुरास। सो ये चार देशों के नाम बताए गए हैं और पूछा ये गया है कि भाई इसमें से किस देश में मौजूद है वोल्केन डी फुएगो ज्वालामुखी, जो कि अभी हाल में ही विस्फोट हुई थी और इसी वजह से चर्चा में आई थी। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी होंडुरास। सो ये चार ऐसे देश हैं जिसमें से हमारे ख्याल से आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। तो मैक्सिको का नाम सुना होगा, पनामा भी सुना होगा, ग्वाटेमाला और होंडुरास तो बहुत ही कम सुना होगा। ये भी हालांकि देश है और इन चार देशों के ऑप्शन में पूछा ये गया है कि हाल ही में जो यहाँ विस्फोट हुआ था वोल्केन डी फुएगो में, ये आखिर किस देश में मौजूद है। अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला या फिर ऑप्शन डी होंडुरास में दे सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब फिर हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो है, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? जी हाँ, सहरिया जो जनजाति है वो मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन ए ओडिशा और झारखंड में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, ऑप्शन डी है गुजरात और महाराष्ट्र में। सो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है, यानी मुख्य रूप से दो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पाई जाती है? ऑप्शन ए हमने बताया आपको ओडिशा और झारखंड, ऑप्शन बी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी बताया छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ऑप्शन डी बताया गुजरात और महाराष्ट्र। ये चार ऑप्शंस हैं, दो दो राज्यों को क्लब करके बताया गया है, यानी किन दो राज्यों में मुख्य रूप से सहरिया जनजाति पाई जाती है, ये सवाल है और इसका जवाब भी ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड इसके अलावा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का मुख्यालय आखिर कहाँ है? चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या फिर न्यू दिल्ली में? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इसका हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हैदराबाद में है, ऑप्शन सी बेंगलुरु में है या फिर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में है। सो देखिए, फिलहाल दूसरे सवाल का जवाब आ गया जो कि हमने पूछा था कि सहरिया जनजाति से मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है। सो कमल नयन जी ने मध्य प्रदेश बोला है एंड प्रीति जी ने मध्य प्रदेश राजस्थान बोला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ऑप्शन बी में आता है। ओके, ऑप्शन ए था ओडिशा झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। सो फिलहाल ये दूसरे का आंसर दिया है और आप दोनों ने ही ऑप्शन बी को चूज़ किया है। ऑल राइट, सो चलिए हम ये तो देखने भी वाले हैं। और फिलहाल प्रीति जी ने तीसरे का आंसर भी दे दिया है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली यानी ऑप्शन डी पे है। ऑल राइट, जबकि मैंने तीन सवाल पूछा था। पहला मेरा सवाल था कि हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा वोल्केन डी फुएगो ज्वालामुखी आखिर किस देश में मौजूद है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी होंडुरास। और इसके बाद हमने आपसे पूछा कि भाई सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन ए ओडिशा और झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद हमने आपसे पूछा कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली।
सो इसका भी आंसर आपने दे दिया है। एंड उस्मान खान ने भी एमपी बताया है, जो हमने दूसरा सवाल किया था। ऑल राइट। एंड प्रीति जी ने फर्स्ट वाला डी बताया है, यानी होंडुरास में। ओके, सो वोल्केन डी फुएगो ज्वालामुखी है, जो विस्फोट हुआ था हाल ही में, चर्चा में आया, आपके अकॉर्डिंग वो होंडुरास में मौजूद है। ऑल राइट, सो चलिए वन बाय वन करके हम आपको बताने वाले हैं कि इन सबका आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको बताइए कि भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, और जब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं या जिनको भी नया जानने का शौक़ है, उनके लिए बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि ये सब बातें जानना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। सो चलिए आपको ले चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, और जैसे ही वापस आने वाले हैं आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर इस क्वेश्चंस का आंसर क्या है, और ये सवाल जो है, या आखिर सवाल कैसे सवाल हैं जो आपके सामने आ गए हैं। तीन तीन क्वेश्चंस हैं जिनके हमने ऑप्शंस भी आपको बता दिए हैं। सो इन ऑप्शंस को आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
0: तो भाई, हमने सवाल किया था, सवाल था कि हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा वोल्केन डी फुएगो ज्वालामुखी आखिर किस देश में मौजूद है, जिसका एक जवाब ज़रूर आया प्रीति जी की तरफ से, डी यानी कि होंडुरास। तो आइए देखते हैं कि ये होंडुरास में ही मौजूद है या कहीं और।
3: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई इसका जो आंसर है वो दरअसल ग्वाटेमाला है। सो ये आंसर रॉन्ग हो गया। हाल ही में जो विस्फोट हुआ है वोल्केन डी फ्वेगो में, वो दरअसल ग्वाटेमाला देश में मौजूद है, ताकि आपको पता रहे। और दूसरा जो हमने सवाल किया था, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन ए ओडिशा झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। जिसमें से आप लोगों ने ऑप्शन बी चूज़ किया, सबने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो आपको हम बता दें कि आपने जो ये आंसर बताया ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सहरिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी कुछ लोग और भी पाए जाते हैं सहरिया के, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर जो आबादी दो राज्यों में पाई जाती है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इसका हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय किस शहर में मौजूद है? ऑप्शन ए था चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। सो इसका जो आंसर बताया गया, दरअसल इसके बारे में आपने हमको बताया कि इसका डी वाला है आंसर, यानी न्यू दिल्ली, जबकि इसका राइट आंसर जो है वो हैदराबाद है। सो हैदराबाद में ही इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, इसका मुख्यालय इसी शहर में मौजूद है। सो ये तीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो कि हमने आप तक पहुंचा दिए। आई होप कि आप तक इसके राइट आंसर्स पहुंच गए होंगे, एंड ऑफ कोर्स जब आप आंसर्स देते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आपके इन आंसर्स के लिए। एंड अब चलते हैं, प्रीति जी ने बहराइच से भेज दिया है अपना कॉन्टेंट और लिखा है कि भाई शांति संतुष्टि ही जीवन का मोक्ष, ये हेडलाइन दिया है। फिर कहती हैं कि सब कहते हैं शांति संतुष्टि ही मानव जीवन का मोक्ष, पर इन सब राहों पर चलकर मैंने देख लिया है सब योग, लेकिन फिर भी किसी साधना से ना मिला है हमें मोक्ष। मैं जितना शांति डगर पर चलती उतनी तेज़ी से अशांति फैल जाती मेरी ज़िंदगी में। संतोष और सामंजस्य को देख लिया है अब तक मैंने परिवार के बीच रह कर, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी मेरी ज़िंदगी में और मैं रह गई खाली हाथ। लोगों का कहना है कि संतोषम परम सुखम, लेकिन मेरा मानना है कि संतोषम परम दुखम कलयुग ही सत्य भी प्रमाणित होता है, क्योंकि मैं मोक्ष के मार्ग पर चलकर सब आजमा चुकी हूँ। बस और कुछ ना कहना, सब रब हाथ, कर्म सिर्फ अपने हाथ। बेशक। सो वैसे एक ही बात मुझे कहना है कि जब सब आप आजमा चुके हों तो बस अपने को ज़रा आजमा लीजिए, सारे एक्सपीरियंसेस से अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने अपने इमोशंस को हमारे इस ऑफकोर्स मंच पर साझा किया, हमको भेजा फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए। ऑफकोर्स जो भी लोग लिखते हैं वो फेसबुक मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू हमारे पास अपने कॉन्टेंट्स भेजते हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ चूँकि आशु जी ने गुस्से की बात पर बताया था कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो गार्डन में टहलने चली जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एंड बताया कि जीजा जी को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आजकल हाईकोर्ट बंद है। राइट, ये बात है। बेबी जॉन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो में। और मुकेश कहते हैं मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा लाइट वालों पर आता है, थोड़ी सी बारिश क्या होती है पावर कट कर दिया जाता है, पूरी रात अभी तक नहीं आई। हाँ भाई, बड़ी प्रॉब्लम तो होती है, ना आपको पंखा मिल पाता है, मच्छर अलग से काटते हैं, गर्मी तो सर चढ़ ही रहती है, एंड ऑफ कोर्स मोबाइल वगैरह भी चार्ज नहीं हो पाता है, यानी जो आपके ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं, या मोटर नहीं चल पाता जिससे पानी नहीं चढ़ पाता होगा, ऐसे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। और राजमन शर्मा जी मौजूद हैं, हेलो नमस्ते गोंडा, हेलो आपको भी स्वागत है राजमन जी, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। उस्मान खान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे अदनान सर, वालेकुम अस्सलाम, आपका भी स्वागत करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और प्रीति जी ने कहा है कि आज भी ज़माने में अधिकतर लोग अपने से कमज़ोर को दबा कर रखते हैं और आजकल उठते हैं और बुराइयों के ख़िलाफ़ उन्हें कुचल दिया जाता है। ये बात सच है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये नहीं किया गया तो हम ऐसे समाज का हिस्सा बन जाएंगे जहाँ हर रोज़ हमारे शुरुआत एक डर के साथ होगी। सो इसको बढ़ते हुए ही रोकना होगा और गलत को गलत कहना होगा और सही को प्रमोट करना होगा। इसके अलावा प्रीति जी आपका भी स्वागत है कायनात, एंड इट्स कुमार लिखते हैं गोंडा आई एम हेयर, ओके। सो आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है
जो लोग भी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में है थ्रू फ्रिक्वेंसी, थ्रू रेडियो गार्डन या फिर थ्रू रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम से एप्लीकेशन, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच टू एवरीवन. सो चलिए फिलहाल अब इजाज़त का वक्त आ गया है, यानी आपसे इजाज़त लें और वापस से आपके मॉर्निंग शो में मौजूद होंगे कल संडे स्पेशल बनाने के लिए गायगा गुंडा विद आरजे अदनान. सुबह 10 से 11 बजे लाइव कॉल इन भी हम लेंगे, यानी इसी लाइव शो में लाइव आपसे बातचीत होगी कुछ मुद्दों के साथ, कुछ यादों के साथ और एक गाने के साथ. फिलहाल जाने से पहले ये ज़बरदस्त सॉन्ग आपको हम बतौर तोहफा दे रहे हैं ताकि आपकी लूज हो चुकी एनर्जी गर्मी में बढ़ जाए.

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जैसा कि आप सभी पहले से ही गांव की गूंज के कई एपिसोड सुन रहे हैं, तो अब मैं गांव की गूंज के नए एपिसोड लेके फिर से आ रही हूँ, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे की मधुर आवाज में मधुर मधुर गीतों की माला होगी और जिनका साथ दे रही हैं उनकी सह कलाकार श्वेता सिंह जी।
5: हेलो, मैं किरण पांडे। कितने दिनों बाद हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद है कि हम लोगों का गांव अयोध्या नगरी से होकर पड़ता है। चलो चलो, सरयू मैया को प्रणाम कर लेते हैं।
6: अरे किरण दीदी, क्या दूध जैसा निर्मल पानी है और कितना ठंडा है। हम लोग तो शहर में इतना शीतल जल देखने के लिए तरस गए हैं।
4: हाँ श्वेता, यहाँ की सरयू माँ के जल में इतनी सफेद सफेद लहरें, मेरा तो मन कर रहा है कि चलो हम सब लोग यहाँ पर थोड़ा स्नान करके हाथ मुंह धो लें। अरे किरण दीदी, ये मन में क्या गुनगुना रही हैं? चलिए घाट पे बैठकर इस गीत को गाते हैं। अरे लो, शीला काकी भी यहीं पे है। आओ आओ शीला काकी, सभी मिलकर यहाँ सरयू मैया की जय जयकार करते हैं। तो बोलो सरयू मैया की
7: जय।

0: वाह वाह किरण दी, अति सुंदर, अति मनमोहक और मन को मोह लेने वाला भजन गाया आपने, क्यों समता दी?
1: हाँ हाँ श्वेता, बिल्कुल मन को तो मोह ही लिया। चलो हम लोग यहाँ तक तो आ ही गए हैं, तो अब अयोध्या दर्शन करते हुए अपने गांव की ओर चलते हैं, क्यों किरण दी?
2: अच्छा चलो चलो चलते हैं। ये देखो ये चाय की दुकान। अरे हम लोग चाय की दुकान पर पहुंच गए। और श्वेता तुम्हें कुछ याद आया ये चाय की दुकान देखकर?
0: नहीं किरण दी, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। समता दी क्या आपको कुछ याद आ रहा है इस चाय की दुकान को देखकर?
1: नहीं श्वेता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो हम सब यहाँ पर मिले हैं, तो मुझे तो ये चाय की दुकान बिल्कुल भी नहीं याद है।
2: अच्छा सुनो मैं सबको याद दिलाती हूँ। याद करो वो सोंधी सोंधी खुशबू अपने गांव की। बहुत दिन बाद हम लोग वापस आए हैं ना अपने गांव की तरफ, तो इसलिए नहीं याद आ रहा है। याद करो वो कुल्हड़ की चाय जो हम लोग बैठ के पीते थे, है ना? तो अरे भैया जरा चाय दे देना तीन, और वो कुल्हड़ वाली चाय देना। अरे छोटू कितना बड़ा हो गया छोटू। अरे छोटू सुनना जरा सुनो, तीन चाय देना हमें।
3: अरे किरण दीदी आप कितना दिन बाद आवागा है, कहाँ रहे हो आप सब, का हाल चाल है? दीदी चायवा तो हम पिलाई दिए, लेकिन कुछ गौनेवा सुनावेक पड़ी।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं छोटू, हम तुम्हारी पसंद का कोई गीत सुनाएंगे अभी। चलो चलो सब लोग मिलकर ये गीत छोटू के लिए सुना दें।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं।

0: वाह दीदी, बहुत नीक गायो आप सब है, हम इतनी बधैया सुनाई दीन जाए।
1: ठीक है छोटू, ठीक है, तुम कहते हो तो एक बधाई गीत सुना ही देते हैं। श्वेता, वो बधाई गीत जो तुम अक्सर गाया करती थी राम जी का, वही सुना दो।

0: वाह भाई वाह, ये तो बधाई गीत भी हम लोगों ने गा लिया।
1: अरे किरण दी, हम सब ने बधाई गीत तो पहले ही गा लिया, मतलब प्रभु श्री राम के जन्म के पहले ही बधाई तो दे दी, और सोहर कहाँ है हमारा?
0: अरे भाई, सोहर मुझे याद है, और सबको पता है कि सोहर क्यों गाया जाता है।
1: नहीं किरण दी, सोहर के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, थोड़ा आप जरा बताएं।
0: अरे भाई, सोहर मुझे याद है, क्या सबको पता है सोहर कब गाया जाता है? तो सुनो, सोहर तब गाया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते समय सोहर गाया जाता है, विवाह में भी गाया जाता है, लेकिन सोहर जो मेन होता है वो बच्चा जन्म लेता है तब गाया जाता है। तो एक सोहर मुझे याद है समता, मैं थोड़ा गुनगुनाती हूँ, ठीक है?

0: हाँ हाँ किरण दी, यही सोहर तो हम सोच रहे थे कि आप हमें सुना दें, तो चलो हम सब मिल करके अब यही सोहर सभी गाएंगे, क्यों किरण दी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: वाह किरण दी, मजा आ गया। अवधी हमारे अवध प्रांत की मुख्य भाषा है, और कुछ भी हो मुझे तो सुन के बड़ा ही मजा आ गया। क्यों श्वेता?
1: हाँ हाँ समता दी, क्यों नहीं, आनंद तो आना ही था। एक तो हम आज सभी सहेलियां मिले हैं अवध में, और उसी में हमारी प्यारी किरण दी की आवाज, आहा क्या बात है। और यहाँ की मिट्टी की खुशबू और किरण दी की आवाज, क्या ही बात है।
0: यह हम सभी जानते हैं कि यह हमारी अयोध्या नगरी एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है, और यह सरयू नदी के तट पर स्थित है, और अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है, एवं प्रभु श्री राम की जन्म स्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी एवं हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल भी कहा जाता है।
1: वाह, वो कॉलेज के दिन फिर से लौट कर आ गए हैं, वही मस्ती बिना किसी टेंशन के, सचमुच कितना मजा आ रहा है। किरण दी, अयोध्या कितनी बदल सी गई है।
2: हाँ सच में श्वेता, ये लता मंगेशकर चौराहा, ये राम की पैड़ी, ये तो हमारी भगवान राम की नगरी बिल्कुल मॉडर्न लुक दे रही है। अब तो हर गली घूम कर ही जाएंगे। तो चलो हनुमान लला की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और पुजारी जी के साथ मिलकर हनुमान जी के भजन गाते हैं।

0: वाह वाह किरण दी, बहुत ही मधुर भजन था। और क्या इसी के साथ आपको एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है जो कि हनुमान जी से है और प्रभु श्री राम और माता सीता जी से है, तो क्या किरण दी मैं छोटी सी ये कथा आपको सुनाऊं?
1: हाँ क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ।
0: तो आइए मैं एक छोटी सी ये कथा हनुमान जी की सुनाती हूँ। एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, तब तक हनुमान जी आज्ञा पाकर कक्ष में प्रवेश किए तो देखा माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। जिज्ञासा से श्री हनुमान ने माता सीता से पूछा, माते यह आप क्या लगा रही हैं? तो माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रभु श्री राम की दीर्घ आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। इसको लगाने से प्रभु दीर्घ आयु रहेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर वह नारंगी रंग का सिंदूर लगाकर सभा में प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गए और वहां प्रभु श्री राम जी के पूछने पर कहा, यदि माता सीता जी के एक चुटकी सिंदूर से आप दीर्घ आयु हो सकते हैं तो हमने तो पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया।
2: समता दी की कहानी सुनते सुनते कब हम लोग कनक भवन आ गए पता ही नहीं चला, और किरण दीदी कुछ गुनगुना रही हैं, तो चलिए किरण दी की स्वर में मीठा सा गीत सुन लेते हैं।

0: किरण दी अवध में आई हैं तो सारे गीत अवधि में ही सुना रही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किरण दी और श्वेता, एक छोटी सी एक और मुझे कहानी याद आ रही है, तो कहिए तो मैं छोटी सी कहानी और सुना दूं।
1: सुना दो, सुना दो।
0: कनक भवन जैसा कि देखने में इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, वह अंदर से भी अति सुंदर और मनमोहक छवियां हैं। और क्या आप सभी को पता है, यह भवन प्रभु श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी के द्वारा देवी सीता को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता जी व भगवान राम का महल भी है।
1: अच्छा, तो चलो अब हम लोग चलते हैं। और चलते चलते मुझे एक राम विवाह गीत भी याद आ रहा है, तो हम लोग गाते हुए चलते हैं।

0: आप कहाँ चलें?
1: चलिए चलिए, अब तुलसी उद्यान की तरफ चलते हैं। वही समता दीदी जो पूरी सब्जी लाई हैं, वो खाते हैं।
2: वाह क्या बात है, अरे वाह, लहसुन की चटनी किसने बनाई श्वेता? मम्मी ने या भाभी ने? और श्वेता बचना, बंदर।

0: ये तो पुरानी अयोध्या का वर्णन है। नया घाट लता मंगेशकर चौराहा, यह नई अयोध्या की पहचान है। समता, क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में?
1: हाँ किरण दी, थोड़ा बहुत जानकारी है जो मैं आपको बताती हूँ। जब हम यहाँ पढ़ते थे तब 14 कोसी मार्ग सब कच्चा था, पर अब कितना खूबसूरत बन गया है। ये लता मंगेशकर चौराहा नई अयोध्या की पहचान है। और किरण दी जानती हैं, इस चौराहे पर 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी वीणा को स्थापित किया गया है और इसके चारों तरफ 92 कमल के फूल भी लगाए गए हैं। तो किरण दी, आपसे ये गुजारिश है कि लता दीदी के गाए हुए गीतों में से कुछ 4 लाइन आप अपने स्वर में गुनगुना दीजिए।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं समता।

0: वाह वाह किरण दी, लता दी की तो बात ही कुछ और है। और आपने उनके जो गीत गाए हैं आज आपकी आवाज में सुन के बड़ा ही अच्छा लग रहा है।
1: और पता है तुम दोनों को कि छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं।
0: तो ठीक है किरण दी, अब की बार हम लोग दीपोत्सव देखने जरूर आएंगे।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का वादा। और पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12, आज दिन है शनिवार। और आप जैसा कि जानते हैं कि शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज शनिवार के दिन हम बात करते हैं आपके सेहत की। और आज का जो विषय है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट भी है। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस विषय को लेकर के लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियां हैं जो हम आज एक एक करके तोड़ेंगे, साथ ही साथ आपको इस विषय में सही जानकारी भी देंगे। तो मैं यही कोशिश करूंगी आपको कि बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा सकूं, साथ ही साथ आप ये करिए, आपका आज का ये काम है कि जल्दी से आपके घर में जो लेडीज अभी फिलहाल खाली बैठी हों या आप कोई काम कर रहे हों तो उनको भी आज ये जो शो है उसको जरूर सुनाएं और आप खुद भी बैठ के बहुत ही ध्यान से सुने। आज का हमारा विषय एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है, और वो है परिवार नियोजन। जी हाँ, फैमिली प्लानिंग। तो दोस्तों आराम से बैठिए और आज के इस सफर पर मेरे साथ चलिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता है बल्कि पूरे देश की तकदीर भी बदल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार नियोजन आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे कम पैदा करो, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत डेफिनेशन है। देखिए, परिवार नियोजन का असली मतलब यही होता है कि सोच समझकर सही समय पर सही तैयारी के साथ एक परिवार को आकार दिया जाए। इसका मतलब है ये तय करना कि कब बच्चा हो, कितने बच्चे हो और दो बच्चों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे और परिवार हमेशा हंसता खेलता खुशहाल रहे। अब भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये विषय और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों भारत आज दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं, हमारी आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। अब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर हम परिवार नियोजन पे ध्यान ना दें तो क्या होगा? संसाधन कम होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होंगी, शिक्षा का स्तर गिरता ही जाएगा और गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत तो 1952 में ही हो गई थी और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन को अपनाया है। लेकिन दोस्तों 70 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, हम अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि जागरूकता की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है, शिक्षा की कमी है और सबसे बड़ी बात, समाज में एक पुरानी सोच है कि भगवान दे तो ले लो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों अब वक्त बदल गया है, अब हमें ये सोच बदलनी चाहिए और परिवार नियोजन कोई सरकारी थोपा हुआ नियम नहीं है, ये हमारे परिवार की खुशहाली का एक रास्ता है। भारत में परिवार नियोजन के तहत सरकार कई साधन मुफ्त देती है, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्डम, कॉपर टी और नसबंदी की सुविधा। इसके अलावा हम दो हमारे दो जैसे अभियान भी लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे हैं। आशा वर्कर और एएनएम दीदियां भी गांव-गांव जाकर इसके बारे में जानकारियां दे रही हैं। तो दोस्तों परिवार नियोजन कोई बुरी बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति और अपने देश के प्रति। याद रखिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, और अगर परिवार सुखी होगा तो देश भी सुखी होगा। इसी सोच के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद समझेंगे परिवार नियोजन के फायदे और ना करने के नुकसान। देखिए, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं और हम इंडियंस हैं, हम फायदा ज्यादा देखते हैं नुकसान कम देखते हैं। लेकिन अगर हम बात परिवार नियोजन के कर रहे हैं तो हम सोचते हैं अरे यार, भगवान का फल है, आशीर्वाद है और लेते जाओ लेते जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं इसी सोच ने आज भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है और 70 साल से भी ज्यादा इस अभियान को शुरू हुए हो चुका है। 70 साल एक बहुत बड़ी समयावधि होती है जिसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन हम, क्योंकि हम चाहते नहीं है, जागरूक नहीं है, शिक्षा की कमी है और आने वाले भविष्य के बारे में सोच नहीं रहे हैं। आज सोचिए, आज का कार्यक्रम सुनिए और आज के बाद फैमिली को प्लान जरूर करिए। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: नमस्कार। स्वास्थ्य और जागरूकता के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी पर चर्चा करेंगे, जिसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। ये एक मच्छर से फैलने वाली लाइलाज बीमारी है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अपर निदेशक मलेरिया और VBD डॉक्टर AK चौधरी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आखिर ये फाइलेरिया बीमारी है क्या और ये शरीर में किस तरह प्रवेश करती है।
1: फाइलेरिया जो होता है, एक तरीके के कृमि होते हैं हमारे शरीर में, पैरासाइट होते हैं, जिनको हम नेमेटोड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। इसका नाम अगर जानना चाहते हैं तो बुचरेरिया ब्रोंकेप्टाई नाम के एक पैरासाइट के कारण होता है। और ये खासतौर से मच्छर के काटने से एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है।
0: डॉक्टर साहब, इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि भारत में फाइलेरिया की स्थिति चिंताजनक है। देश के 345 जिले इससे प्रभावित हैं और लगभग 74 करोड़ लोग इसके जोखिम में हैं। ये रोग मुख्यतः हाथ, पैर, पुरुषों के अंडकोश और महिलाओं के स्तनों में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, शरीर में इसके फैलने की प्रक्रिया क्या है?
1: तो जो हमारा क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसकी फीमेल जब हमें काटती है तब ये एक दूसरे से ट्रांसमिट करती है। स्टेजेस इसकी बात करें तो हमारे शरीर में जो भी निमेटोड्स इसके बुचरेरिया ब्रोंकेप्टाई के जो एडल्ट वर्म्स होते हैं, वो दिन में प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 50,000 अंडे देते हैं। और वे अंडे जो हैं हमारे शरीर के अंदर लार्वा के रूप में डेवलप होते हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं, लार्वा 1, 2, 3, ठीक है, जो हमारे शरीर में रहती हैं। लार्वा की स्टेज 3 ही मच्छर के लिए इन्फेक्टिव होती है। जब मच्छर काटता है हमको, तो अगर हमारे शरीर में लार्वा की थर्ड स्टेज अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो हमारे खून में दौड़ती रहती है, वही मच्छर जब कोई भी ब्लड मील लेता है तो उसके शरीर में जाता है और वहाँ डेवलप होता है। उसके बाद जब वो डेवलप होता है, वहाँ भी उसका जो लार्वा है स्टेज मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर वो नए आदमी के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए इन्फेक्टिव होता है। और जब वो मच्छर, इन्फेक्टिव मच्छर जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तब वो उसके अंदर लार्वा वो ट्रांसमिट करता है, फिर वही साइकिल शुरू होती है। वो लार्वा फिर डेवलप होगा एडल्ट वर्म में, और वो इसमें टोटल समय जो है, मैं बताया मैंने, काटने के बाद 5 से 15 साल का समय लगता है जब हमारे शरीर में फाइलेरिया के लक्षण, जिनको हम एलिफेंटेसिस या हाइड्रोसील या किसी भी अंग का अचानक सूज जाना, मोटा हो जाना, ये होता है। हाइड्रोसील और हाथी पांव मिल के दुनिया में सबसे अधिक विकलांगता पैदा करते हैं। विकलांगता मतलब लोको मोटर, आदमी चलने फिरने में एक तरीके से असहज होता है या एक तरीके से चलने फिरने उसका बंद हो जाता है। तो ये दूसरे नंबर की बीमारी है दुनिया में जो इस तरह की डिसेबिलिटी पैदा करती है, जिसमें लोग चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। दूसरी चीज़, उसके घर का भी लोग बहुत ही अफेक्टेड रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं। उसमें आर्थिक नुकसान भी होता है, और अगर वो कमाई करने वाला आदमी है, पुरुष है, तो एक आर्थिक नुकसान भी

0: जनपदों में या जिन प्रदेशों में या जिन कंट्रीज में, वहाँ के बच्चों की मानसिक स्थिति अन्य बच्चों की तुलना में अक्सर कम होती है।
1: यही सबसे डरावनी बात है कि एक बार यदि फाइलेरिया हो जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन बचाव पूरी तरह संभव है। और बचाव का सबसे बड़ा हथियार है सर्वजन दवा सेवन अभियान। डॉक्टर साहब, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
0: फाइलेरिया को ग्लोबली ख़त्म करने के लिए या उन्मूलन करने के लिए हमने 2030 का WHO की तरफ से 2030 का टारगेट रखा गया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी टारगेट को हम हिंदुस्तान से फाइलेरिया मिटाने के लिए 2027 रखा है, और हम लोग 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पब्लिक को, हम जो स्वस्थ पब्लिक है उसको कैसे इस बीमारी से बचाएं, उस बचाने के लिए जो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि अगर हम साल में एक बार फाइलेरिया रोधी दवाएं, जनरली इसमें तीन तरह की दवाएं यूज़ होती हैं, और उन सब दवाओं को साल भर में अगर एक बार सारी पब्लिक को खिला दिया जाए, तो ये एक तरीके से जिसको मास ड्रग एडमिशन MDA भी कहते हैं, इसमें दो तरह की मैंने रेजिम बताया, कुछ में तीन ड्रग्स यूज़ होती हैं, कहीं कहीं कहीं कहीं दो ड्रग्स यूज़ होती हैं। ड्रग्स के नाम भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो DEC हमारी पहली ड्रग है, एल्बेंडाजॉल दूसरी ड्रग है, और आइवरमेक्टिन तीसरी ड्रग है। तो कहीं कहीं तीन ड्रग हम लोग ये तीनों यूज़ करते हैं, कहीं कहीं किसी किसी जनपद में दो ड्रग यूज़ करते हैं जिसमें DEC और एल्बेंडाजॉल होती है, और इस को हम एक तरीके से कैंपेन के रूप में लेते हैं, और एक निश्चित दिवस को 10 दिन के अंदर सारे जनमानस को कवर करते हुए सभी स्वस्थ वयस्कों को दवाई खिलाने का काम करते हैं। दूसरा पिलर इसका ही वो है कि जिसपे जिन लोगों को फाइलेरिया ऑलरेडी हो चुका है या जो इसके रोगी हैं या भुक्तभोगी हैं, उन लोगों को हम एक तरीके से उस रोग से लड़ने के लिए कैसे बेहतर तरीके से वो तैयार रहें, जिससे कि समाज में और उनके घर में, आर्थिक स्थिति में और उनके लोकोमोटर जिसके जो डिसेबिलिटी वाली बात है वो कम से कम हो, उसके लिए उन्हें कम से कम अस्पताल जाना पड़े, कम से कम उनका समय नष्ट हो, इसके लिए अपने उस पैर की या अपने उस जो भी उनका जहाँ भी फाइलेरिया है उस पार्ट को बेहतर देखभाल करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं साल में एक बार, और उनको एक किट देते हैं जिसको हम लोग MMDP किट के नाम से जानते हैं। तीसरे पिलर के रूप में इसमें मेडिकल कॉलेज का एंगेजमेंट किया गया है। मेडिकल कॉलेज के एंगेजमेंट खास तौर से इसलिए किया गया है कि ये लोग अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस करेंगे, मतलब केसेस को हमें बिल्कुल शुरुआत स्टेज में बताएंगे या डायग्नोस करेंगे, जिससे कि फाइलेरिया उस रूप में ना पहुंच पाए कि लोगों को कोई भी डिसेबिलिटी डेवलप हो पाए। तीसरा काम मेडिकल कॉलेज को दिया गया है कि जो हम लोग MDA राउंड करते हैं, MDA का मतलब है जो हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का राउंड फरवरी और अगस्त के महीने में करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं कि वाकई में जो हमारा जनमानस है उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने दवाई खाई है। चौथे पिलर के रूप में हमने इसमें हाई लेवल एडवोकेसी को एक तरीके से इंक्लूड किया है। हाई लेवल एडवोकेसी में हमारे जितने भी मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हाई लेवल एडवोकेसी में जनप्रतिनिधियों से कहा जाता है, चाहे वो प्रधान लेवल से लेकर सांसद लेवल तक के सभी जनप्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित किया गया, सभी को हम लोग एजुकेट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अभियान में वो लोग अपना भरपूर सहयोग दें। चौथे पिलर के रूप में हमने अपने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रूप में लिया है, जिसमें हमने सारे डिपार्टमेंट्स को जो इस अभियान में एक तरीके से हमको कॉपरेट कर सकते हैं, इसको जन आंदोलन बनाने में हमें सहयोग कर सकते हैं, इसमें मुख्यतः दो तरह के डिपार्टमेंट हैं। एक तो जो वेक्टर कंट्रोल करते हैं, खासतौर से मच्छरों का कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा पंचायती राज और नगर निगम। दूसरा जो IEC का काम कर सकते हैं, जैसे शिक्षा विभाग। शिक्षा में हम तीनों प्रकार की शिक्षाएं, चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, तीनों शिक्षा के लोग हमको सहयोग करते हैं। बेसिक शिक्षा वाले बच्चे टीचर्स अपने बच्चों को प्रार्थना में डेली फाइलेरिया के बारे में बताते हैं, समय पर इनके इनसे रैली निकलवाते हैं, ठीक है, और दवाई खाने के लिए प्रेरित करते हैं। MDA मतलब होता है सर्वजन दवा सेवन अभियान। ये साल में एक निश्चित तिथि को होता है। हम अभी तक अपने प्रदेश में, जैसे हमारे प्रदेश में 75 में से 51 जनपद हमारे एंडेमिक हैं फाइलेरिया के लिए, जहाँ फाइलेरिया के रोगी अधिक रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है NBS होता है कि इसमें हम तय करते हैं कि दवाई खिलानी है या नहीं खिलानी है, खिलानी भी है तो कौन सी खिलानी है, टू ड्रग खिलानी है या थ्री ड्रग खिलानी है, ये हम डिपेंड करता है कि उसकी पॉजिटिविटी कितनी है।

0: पॉजिटिव, मतलब एक तरीके से कितने लोगों में अभी फाइलेरिया वहाँ पर एंडेमिक है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, इस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ इसमें एनबीएस के बाद जब ये तय हो जाता है कि इतने इन इन लोगों को दवाई खिलानी है, तो सबसे पहले काम होता है हमारा कि हम उसकी अच्छी तरीके से माइक्रो प्लानिंग करें। माइक्रो प्लानिंग के नाम पर बहुत सारे काम होते हैं इसमें। एक तो हम माइक्रो प्लान बनाते हैं अपना कि किन लोगों को दवाई खिलानी है, कौन दवाई खिलाएगा, कैसे खिलाई जाएगी, कब से कब तक खिलाई जाएगी। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि पब्लिक को हम अवेयर कैसे करें, उसके लिए आईसी करते हैं। आईसी बैनर, पोस्टर, रेडियो, टीवी, सारे माध्यमों का उपयोग करके हम लोगों को जागरूक करते हैं एक तरीके से। तीसरा पार्ट जो होता है इसमें, हम जन आंदोलन के रूप में बनाने के लिए जनता के, मतलब जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको शामिल करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो भी अपने अपने मंचों से अपने अपने इस तरह की अपील करें कि लोगों को अगर आपको फाइलेरिया से बचना है या फाइलेरिया अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से समाप्त करना है, तो सभी लोगों को निडर होकर दवाई खानी चाहिए। तीसरा, इसके अलावा हम जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, सभी डिपार्टमेंट्स मिल के एक तरीके से काम करते हैं। इसमें दो तरह के डिपार्टमेंट्स को हमने अगर बांटना चाहें तो दो ग्रुप में बांटते हैं। एक डिपार्टमेंट्स वो होते हैं, विभाग वो होते हैं जो हमको मच्छर कंट्रोल करने में एक तरीके से सहायता करते हैं। मच्छर कंट्रोल करने में जैसे गांव में हमारा पंचायती राज विभाग है, साफ़ सफाई करवाता है, मच्छरों के लिए स्प्रे करवाता है, और जैसे इसी के लिए शहर में हमारे पास नगर निगम और नगर पालिकाएँ होती हैं जो यही काम शहर के अंदर अर्बन एरिया में करती हैं। दूसरा डिपार्टमेंट लोगों को जागरूक करता है अपने अपने माध्यम से, जैसे किसान हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट है, तो ये सब हमारे जो हैं लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों के माध्यम से रैली निकालते हैं, किसानों के माध्यम से उनकी मीटिंग्स में उनको बताया जाता है कि फाइलेरिया कैसे फैलता है, तो अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए सभी लोगों को दवाई खानी है, तो सभी लोग सहयोग करते हैं।
1: बिल्कुल सही, और मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि इस दवा के सेवन से खून में मौजूद माइक्रोफाइलेरिया की संख्या घटती है और रोग का प्रसार रुक जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि यदि प्रभावित जिलों में 90% पात्र जनसंख्या लगातार 5 वर्षों तक डीए या 3 वर्षों तक आईडीए की खुराक ले ले, तो इस रोग को जड़ से मिटाया जा सकता है।
2: डॉक्टर साहब, अक्सर लोग दवा के साइड इफेक्ट से डरते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: जहाँ तक दवाई की सुरक्षा का प्रश्न है, दवाई कितनी कारगर है या कितनी सुरक्षित है, इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये तीनों दवाइयाँ, जैसे मैंने अभी अपने स्टार्टिंग में बताया था कि DEC, एल्बेंडाजॉल और आइवरमेक्टिन, तीनों दवाइयाँ 100% सुरक्षित हैं। इन दवाइयों से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता। जहाँ तक इसमें दवाई के लिए हम तीन तरह के लोगों को छोड़ते हैं खास तौर से। एक तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं देते हैं। दूसरा जो हमारे 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको हम ये फाइलेरिया रोधी दवाएं नहीं देते हैं। लेकिन 1 साल से 2 साल के बच्चे को हम सिर्फ एल्बेंडाजोल की दवाई जरूर देते हैं, पेट में कीड़े वाली दवाई देते हैं। तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ऐसे लोगों को हम ये दवाई नहीं खिलाते हैं। देखिए, अब मैंने जैसे बताया कि तीनों ड्रग्स बेहद सुरक्षित हैं, किसी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को दवाई खाने पर कुछ परेशानियां होती हैं। जैसे 8 गोली यदि कोई व्यक्ति एक बार में एक साथ खाता है और उसका पेट बिल्कुल खाली है, तो ये दवाएं पेट में इरिटेशन करती हैं एक तरीके से। इसलिए हम लोग इसको एक तरीके से सुविधा के तौर पर लोगों को बताते हैं कि कभी भी दवाई को खाली पेट ना खाएं, खाना खाने के बाद ही खाएं। तीसरे तरह के सिम्टम आते हैं कभी कभी ADR के नाम पर, कि उसको जब दवाई खाने के बाद शरीर में खुजली पड़ती है, खुजली होती है, चकत्ते पड़ते हैं या फफोले पड़ जाते हैं। ये तभी संभव है जब उसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया नाम की चीज़ पहले से रही हो, उसको फाइलेरिया का इन्फेक्शन पहले से हो। तो जब भी हम ये दवाई खाएंगे, वो माइक्रोफाइलेरिया और उसके एडल्ट वॉर्म एक निश्चित समय बाद, वो 1 दिन 2 दिन बाद मरना शुरू होते हैं। मरने पर हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को कभी कभी ADR के तौर पे मान लिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से खुजली और ये चकत्ते पड़ते हैं, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये शुभ संकेत है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन था, इन्फेस्टेशन था, हमने सही समय पर दवाई खा ली, एलिफेंटेसिस से हम बच गए। देखिए, जैसा कि आप जानते, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज मतलब न ठीक होने वाली बीमारी है, मच्छर से फैलती है। तो पहले तो ये जो भ्रांति है कि हम इस मरीज को, जो भी जिसको फाइलेरिया होता है, जिसको हाथी पांव होता है, उसके साथ भेदभाव दुर्व्यवहार करते हैं, ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक दूसरे को छूने से या उसका उसके साथ रहने से, उसके पास बैठने से ये बीमारी नहीं लगती है। तो ये भ्रांति जो है एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। आपके गांव लेवल पर एक आयुष्मान केंद्र स्थापित किया गया है, जिस पर एक CHO पोस्ट होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से इसकी पोस्ट है, पोस्टिंग है, और वो आपको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उसको भी हमने फाइलेरिया रोग के तहत इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, उसको ट्रेन किया है, उसको सब कुछ बताया उसके बारे में, वो आपको, और दवाएं भी उसके पास डिपो रहता है, ये दवाएं भी आपको कभी भी ज़रूरत है तो ये दवाएं भी उसके पास रहती हैं। सारे लोग जो इस फाइलेरिया प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनको इस आयुष्मान केंद्र के एक तरीके से सम्मिलित होकर, आयुष्मान केंद्र की सेवाओं में सम्मिलित होकर, चाहे वो आशा हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, टीचर हो, उस गांव के कोटेदार हो, ये सारे लोग जैसे हमको इसको सहयोग करते हैं, तो ये सब लोग मिलके आयुष्मान केंद्र के साथ काम करके जनता को जागरूक करें, उनको दवाई खिलाने में सहयोग करें, यही एक तरीके से हम लोगों ने इसमें प्लान किया है। देखिए, MDA अभियान हमारा, जैसे मैंने बताया कि निश्चित अवधि के लिए होता है, ये सिर्फ 10 वर्किंग डे में चलता है। कभी कभी जब ज़्यादा मतलब जनमानस ज़्यादा छूट जाता है दवाई खाने से, तो हम उसमें एक मॉपअप के लिए राउंड भी प्लान करते हैं, 2 दिन या 3 दिन का। तो मैक्सिमम 15 दिन मान के चलिए कि मैक्सिमम 15 दिन हम लोगों को ये दवाई खिलाते हैं। अब लेकिन समस्या ये आती है कि क्या लोगों को दवाई इसके बाद भी मिल सकती है? हाँ, हमारे प्रत्येक सरकारी अस्पताल में ये दवाई निःशुल्क हमेशा उपलब्ध रहती है, पूरी साल उपलब्ध रहती है। लेकिन समस्या यही है कि लोग स्वयं अपने आप आना नहीं चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो लोग वाकई में जिनके काम में, जिनके एरिया में, क्षेत्र में दवाई खिलाई जा चुकी है, उनका क्षेत्र फाइलेरिया के लिए एंडेमिक है, उन लोगों को अस्पताल जाके ये दवाई स्वयं खानी चाहिए। अब इसमें जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसमें दो तरह के लोग होते हैं। तो ब्लॉक लेवल स्ट्रेटजी होती है, इसमें ब्लॉक का मेडिकल अफसर इसमें सारी गतिविधि देखता है, उसको आशा, उसमें आशा और उसके साथ काम करने वाले लोग बेसिक पब्लिक के साथ इंटरेक्ट होके, उसको जुड़ के उसको दवाई खिलाते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा जिला मलेरिया अधिकारी इसके लिए खास तौर से रिस्पॉन्सिबल होता है, जिला मलेरिया अधिकारी और ACMO वेक्टर बॉर्ड। पब्लिक की भागीदारी अभी भी इसमें कम है। पब्लिक की भागीदारी मेरे हिसाब से तो इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप उसको ये पता है कि हमारे जनपद में फाइलेरिया रोग है या फाइलेरिया रोगी हमारे गांव में पाए जाते हैं, तो उस गांव के हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है या जिम्मेदारी होती है कि वो जाके अपनी दवाई स्वयं खाए, कहे भाई मुझे दवाई दे दो, मुझे दवाई खाने, मैं कल मेरे घर में कल टीम गई थी, मैं घर पर नहीं था, मुझे आज दवाई दे दो। तो इस तरह का एक तरीके, जब तक अभियान नहीं चलेगा तब तक लोग मतलब इस लेवल तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक अभियान की सफलता पर थोड़ा सा प्रश्न रहेगा या थोड़ा सा कठिन होता है इस तरह के अभियान को सफल करने में। तो किसी भी अभियान को सफल करने के लिए मतलब दो तरीके, एक तो पब्लिक की भागीदारी और दूसरा पब्लिक द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं अपने अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें, और जनप्रतिनिधि से कहूँगा कि भाई वो अपने अपनी जनता को इसके लिए जागरूक करें और उनको प्रेरित करें कि इस तरह की दवाई जो भी खिलाई जा रही है वो बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल एक तरीके से किसी भी दुष्परिणाम से रहित है, उसको जरूर खाएं।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। श्रोताओं, याद रखिए, फाइलेरिया का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। जब भी आपके घर पर टीम आए, दवा जरूर खाएं और भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आज की होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज दिन शनिवार है और शनिवार के दिन आरजे आयुषी आती हैं लेके कुछ स्वास्थ्य की बातें। और आज का जो विषय है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जी हाँ, क्योंकि इस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा गौर फरमाना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं गर्भावस्था की, छोटे बच्चों की, छोटे बच्चों के हेल्थ की, आपके हेल्थ की और आपके परिवार के सेहत की। लेकिन मैं अगर आपको सही बताऊं तो जब तक आप एक परिवार प्लान नहीं करेंगे, सही सदस्य, परिवार का सही आकार का चुनाव नहीं करेंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जी हाँ, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतना ही खर्चा भी बढ़ेगा और आज के युग में खर्चा चलाना क्या बात होती है, ये तो आप बहुत ही अच्छे से समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, पहले लिंक में हमने जाना कि परिवार नियोजन क्या है, अब बात करते हैं कि उससे होने वाले फायदों की। जी हाँ, और साथ में ये भी कि अगर हम परिवार नियोजन ना करें तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए भाई, जितने फायदे हैं ना उतने ही अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो इसके नुकसान भी हैं। नुकसान जानने से पहले हम चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, क्योंकि इंडियंस प्रॉफिट के पीछे बहुत ज्यादा पागल है। दोस्तों, परिवार नियोजन के फायदे अनगिनती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फायदा है माँ और बच्चे की सेहत। जब दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होता है तो माँ का शरीर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, वो अगले बच्चे के लिए तैयार होती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बच्चे को भी पूरा पोषण मिलता है, माँ का दूध मिलता है और माँ का पूरा ध्यान भी मिलता है। जब बच्चा एक छोटा होता है और एक ऐसी स्थिति में होता है जब वो पूरी तरीके से अपनी माँ पे और अपने घर वालों पे निर्भर होता है, तो उस बच्चे को 2 से 3 साल तक पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान और पूरा केयर चाहिए होता है। तो इसीलिए बच्चों में सही समय का गैप होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरे फायदे की अगर हम बात करें तो वो है आर्थिक मजबूती। दोस्तों, आज हम ये सोचते हैं और आपने अपने घर के कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि घर में जितने सदस्य होते हैं तो हमारा परिवार उतना ही स्ट्रांग होगा, लेकिन ये सरकार भी मानती है और कहीं ना कहीं आप भी अगर इसको गौर से सुनेंगे तो जितने सदस्य होते हैं उसमें हमारा लॉस भी काफी ज्यादा होता है। कैसे, मैं बताती हूँ, लेकिन पहले हम दूसरे फायदे की बात करते हैं। देखिए, दूसरा फायदा, जैसे कि मैंने बताया, आर्थिक मजबूती। दोस्तों, सोचिए अगर एक परिवार में 5 से 6 बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई, खाना, कपड़ा, दवाई, इन सब पर कितना खर्च होगा, और अगर 2 बच्चे हैं तो उन दोनों की अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना और अच्छा भविष्य दिया जा सकता है, यानी कि कम बच्चे और बेहतर जिंदगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि हमें क्वालिटी पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। जी हाँ, अगर आपके बच्चे कम होंगे तो उनका फ्यूचर भी उतना अच्छा होगा। उसके बाद अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो वो है महिलाओं का सशक्तिकरण। जब एक महिला ये तय कर सकती है कि उसे कब और कितने बच्चे चाहिए तो वो पढ़ सकती है, काम भी कर सकती है और सपने भी पूरे कर सकती है। परिवार नियोजन महिला को आजादी देता है, जिंदगी जीने की आजादी। जी हाँ, देखिए, हम सब ये जानते हैं और ये एक बहुत ही कड़वा सच है हमारे समाज का कि महिलाएं बहुत समय से प्रताड़ित होती आ रही, कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनको शिक्षा उनकी थोड़ी कम दी जाती है। काफी जगह ये भी देखा जाता है कि अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो पुरुषों की अपेक्षा उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज का भारत बदल चुका है, हम सब भाग रहे हैं मॉडर्निज्म के पीछे और परिवार नियोजन एक बहुत ही अच्छा जरिया बन चुका है महिला सशक्तिकरण का। अब बात करते हैं अगर हम परिवार नियोजन ना करें तो क्या होगा। दोस्तों आप सोचे होंगे कि क्या ही होगा, जनसंख्या बढ़ेगी और तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बताऊं भाई, ये तो सिर्फ एक चीज है, बाकी काफी सारी चीजें हैं जिसमें हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात, माँ की खराब सेहत। जी हाँ, बार बार गर्भधारण से माँ का शरीर कमजोर पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कई बार तो माँ की जान को भी खतरा बन जाता है। दूसरी बात ये दोस्तों कि बच्चों का विकास रुक जाता है। जब एक के बाद एक बच्चा पैदा होता है तो ना माँ के पास समय होता है, ना पैसे होते हैं और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। भारत में आज भी लाखों बच्चे कुपोषित हैं और इसकी एक बड़ी वजह है परिवार नियोजन की कमी। तीसरी बात पे अगर हम गौर करें तो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। जब परिवार बड़ा होता है और आमदनी कम होती है तो बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम सभी फंस के रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम चौथी बात करें तो घर में तनाव और झगड़े भी बढ़ जाते हैं। पैसे की तंगी, बच्चों की परेशानी, माँ की बीमारी, ये सब मिलकर परिवार में अशांति पैदा कर देती है। दोस्तों, एक सुखी परिवार के लिए जरूरी है सोच समझकर परिवार बनाना। और पांचवी और सबसे बड़ी बात ये है कि देश पर बोझ बढ़ता है। जब जनसंख्या बेकाबू हो जाती तो सरकार के लिए सबको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देने में मुश्किल हो जाता है। अस्पताल में जगह कम पड़ने लगती है, स्कूलों में शिक्षक की कमी होने लगती है और सड़कों पर भीड़ भी ज्यादा हो जाती है। ये कुछ ऐसे नुकसान हैं जो अभी मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान हैं जो हम बता नहीं सकते, जो हम सिर्फ फेस करते हैं। बच्चे अगर ज्यादा हो, जनसंख्या बढ़ जाए तो हमें काफी सारी दिक्कतों का और भी है जो सामना करना पड़ता है। हमारी मानसिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। ज्यादा जनसंख्या होती है, घर में तनाव रहता है, स्ट्रेस होता है और उनके बेटर फ्यूचर के लिए पेरेंट्स पे भी बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें नुकसानों की, तो सिर्फ मेंटल ही नहीं बल्कि आपका इकोनॉमिक फैक्टर और आपके घर में भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसका आपको सामना करना पड़ता है। ज्यादा बच्चे यानी खर्च ज्यादा, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा। और ये भी कह सकते हैं, आपने वो तो सुना होगा ना कि एक माँ के कई लाल होते थे पहले, कई सारे बच्चे होते थे, और आज क्या है? आप अगर अपनी एक दो पीढ़ी पीछे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक माँ के पांच पांच छह छह बच्चे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा परिवार बना। देखिए, पहले के लोग ये मानते थे और आज भी जो लोग उन रूढ़ीवादी सोच को मानते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर परिवार नहीं है तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है, परिवार ही असली धन है। बिल्कुल, देखिए परिवार ही असली धन है, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी हो वो उससे भी बड़ा धन है। अगर आपके परिवार में छह लोग हैं और छह के छह कुपोषित हैं, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बुरी दशा है। लेकिन अगर परिवार में लोग कम हैं और वो एक अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन में हैं, वो हेल्दी हैं, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिसमें उनका विकास हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट की बात है। फिलहाल ये था दूसरा लिंक जिसमें हमने बात की फायदे और नुकसान की। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि परिवार नियोजन में आखिर हम कर क्या सकते हैं। सिर्फ यही है कि हमें फैमिली को एक अच्छा शेप देना चाहिए, और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान? जी नहीं, काफी सारी चीजें हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए, क्या क्या है सब पे बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
9: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमरनिधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
10: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
9: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
10: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
9: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
10: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
9: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
10: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
9: जी, तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
10: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं। इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
9: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
10: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
11: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
10: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
9: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है, तो इसके बारे में।
10: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नजदीकी सब सेंटर PHC, CHC या जिला अस्पताल में जाएं तो वहां हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
9: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
10: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
11: मैम एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
10: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
9: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
10: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
9: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
10: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
9: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम।
10: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
12: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आयुषी लेके एक बहुत ही अच्छा विषय जिसके बारे में हमें ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने अच्छे भविष्य के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर बात होती है। और आज हम एक बहुत ही अच्छी विषय पर बात भी कर रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आप बहुत ही गौर से आज का शो सुन रहे होंगे, साथ ही साथ अब इस विषय पे चर्चा करेंगे और ध्यान से अपनी जिंदगी में इसको अपनाएंगे भी। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ ज्ञान को सुनना समझना ही काफी नहीं होता, उसको अपनी जिंदगी में लागू करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों, अब हम एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है हमारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी, यानी कि हमारे जीवन की धुरी, हमारी महिलाओं की सेहत पर परिवार नियोजन का असर। दोस्तों, भारत में आज भी एक महिला औसतन कई बार गर्भधारण करती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, और हर गर्भधारण उसके शरीर पर एक बड़ा असर भी डालता है। जब बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है और जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं तो महिलाओं का शरीर पर इसका भार बहुत ज्यादा होता है और वो झेला नहीं जाता है। ये महिलाएं काफी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रही होंगी। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि अगर दो प्रेगनेंसी के बीच कम से कम 2 से 3 साल का अंतर ना हो तो माँ के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि अनीमिया हो जाएगा आपको। और भारत में ये बहुत ही आम समस्या हो गई है। आम का मतलब ये नहीं है कि आप इसे नॉर्मल लेने लग जाए, बल्कि इसे आप गंभीरता से लें। अनीमिया से माँ थकी थकी रहती है, चक्कर आने लगते हैं और प्रसव के दौरान खून बहने का भी खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, भारत में मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टैलिटी रेट अभी भी चिंताजनक विषय है। हर साल हजारों माएं प्रसव के दौरान या उसके बाद अपनी जान गंवा देती हैं, और जिनमें से ज्यादातर मौतें रोकी जा सकती हैं अगर सही समय पर परिवार नियोजन अपनाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि परिवार नियोजन से सिर्फ परिवार का आकार ही नहीं होता, बल्कि जो सदस्य मौजूद हैं उनकी सेहत पर भी इसका बहुत अच्छा असर भी होता है। तो परिवार नियोजन को जरूर अपनाएं। इसके अलावा बार बार गर्भधारण से महिलाओं में गर्भाशय संबंधी बीमारी भी बढ़ती है। प्रसव के बाद डिप्रेशन, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ये एक गंभीर समस्या है जिस पर हमारे समाज ने कभी भी गौर नहीं फरमाया, कभी भी इस बात पे जोर नहीं डाला और कभी भी इस बात को हमने समझने की कोशिश नहीं की। जब एक के बाद एक बच्चा होता है तो माँ को ना तो आराम मिलता है, ना किसी का साथ मिलता है, और वो मानसिक रूप से टूट जाती हैं। अगर बच्चे में एक लंबा गैप होगा तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी उनको रिकवरी का टाइम मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा गैप नहीं होगा तो उन्हें बार बार डिप्रेशन फेस करना पड़ेगा और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म कंडीशन बन जाएगी जिसमें आपकी मानसिक अवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। अब जरा सोचिए, एक महिला जब शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होती है तो वो अपने बच्चे को क्या देगी, वो अपने सपने कैसे पूरे करेगी, वो अपने परिवार को कैसे संभालेगी। इसीलिए महिलाओं की सेहत का सीधा रिश्ता परिवार नियोजन से जुड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट का भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है, तो दोस्तों, जब आबादी बढ़ती है तो सबसे पहला दबाव पड़ता है हमारे अस्पतालों पे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कम है, नर्सें कम है, बेड भी कम है। एक डॉक्टर को एक दिन में सैकड़ों मरीज देखने पड़ते हैं, तो इलाज की भी गुणवत्ता पर इसका असर पड़ता है, और आप सोचिए कि तब इलाज की क्वालिटी कैसी होगी। ग्रामीण इलाके में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दवाइयाँ नहीं होती है और स्टाफ भी मौजूद नहीं होता है। एक गाँव की गर्भवती महिला को प्रसव के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और कई बार रास्ते में ही उनकी जान चली जाती है। इसके साथ ही कुपोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो बढ़ती जनसंख्या के साथ और भी गहरी होती जाती है। जब परिवार में बच्चे ज्यादा होते हैं और खाना कम होता है तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, और कुपोषित बच्चा बड़ा होकर एक कमजोर नागरिक बनता है। जो ना ठीक से पढ़ सकता है और ना ही ठीक से काम कर सकता है। तो दोस्तों आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें, देखिए ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि हम कहते हैं और हम हमेशा से ये समझते भी आ रहे हैं, अपने घर में देखते भी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भी अगर एक नॉर्मल लेवल पे देखें तो हमारी मम्मी हमारे पापा लोग की बात बहुत मानती हैं। आपने देखा होगा कि हर सलाह के लिए वो किसी से बात करें चाहे ना करें, वो अपने हस्बैंड से ज़रूर कंसल्ट करती हैं कि देखो आज ये सब्जी है, कौन सी सब्जी बनाए, कौन सी साड़ी पहने। तो बातें और चर्चा सिर्फ साड़ी और सब्जी तक ही क्यों सीमित रहे, परिवार नियोजन तक भी रहे। और आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है महिलाओं के स्वास्थ्य में। जी हाँ, उनको अगर समझ नहीं है, उनको अगर सही जानकारी नहीं है, तो आप उन्हें जानकार बनाएं, ना कि उसी रूढ़िवादिता का शिकार हो जाए और ये सोचें कि नहीं बच्चे तो होने ही चाहिए, परिवार को बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी घर में ऐसे भी लोग हैं, स्पेशली जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या अपने दादी बाबा की बातें ज़्यादा सुनते हैं। इन चीज़ों को हमें ज़रूर और गौर से समझना चाहिए। जनरेशनल गैप भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। दो जनरेशन में आज के दौर पर बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। आज जो जेन ज़ीज़ हैं, मिलेनियल्स हैं, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो सोचिए एक जेन ज़ी और मिलेनियल्स के भी माँ बाप के बीच में कितना बड़ा फर्क होगा। आज के ज़माने में जो बच्चे हैं, पहली बात तो वो शादी नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते लेकिन ज़बरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है, ये कह के कि अगर शादी नहीं करोगे तो परिवार कहाँ से बढ़ेगा। काफ़ी लोग आज भी ये सोचते हैं कि अगर कम उम्र में शादी हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 2-3 बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन दोस्तों मेरा और आजकल के डॉक्टर्स का, काउंसलर का, साइकोलॉजिस्ट का यही मानना है कि शादी तभी करें जब आप मानसिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि परिवार चलाना, परिवार बसाना और शादी करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। ये डायलॉग तो आपने बहुत सुना होगा फिल्मों में, लेकिन ये आपकी असल ज़िंदगी में भी लागू होता है। तो गौर से और बहुत ही ध्यान से शादी करें, और साथ ही साथ शादी के बाद जब बात फैमिली प्लानिंग की हो तो उसको थोड़ा और भी ध्यान से लें। जितना आप ध्यान अपने करियर पे देते हैं, पैसों को देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं कि हमारा एक रुपये भी इधर का उधर ना हो, हमारा रुपये बढ़ता जाए, लेकिन जब हम बात सेहत की करते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और अपनी ज़िंदगी में फैमिली प्लानिंग ज़रूर अपनाएं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और बात करेंगे और भी ज़्यादा ज़रूरी कि परिवार नियोजन के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए जाइए और पानी पी कर आइए, अपना फ्रिज खोलिए। भाई फ्रिज खोलने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहले तो फ्रिज में जो चीज़ रखी होगी ना, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज खोलने पे हमारी जो भूख होती है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। हमें बस यही देखना है कोई मिठाई मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए जो अच्छी हो, कोई चॉकलेट मिल जाए। और सबसे बड़ी बात को भाई, आजकल चल रही है गर्मियाँ, फ्रिज खोलते ही बड़ा ठंडा ठंडा सा एहसास होता है। तो जाएं फ्रिज खोलें, ठंडा सा एहसास लें, कुछ खाएं और पानी पीजिए, क्योंकि भाई पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में।
13: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
14: मतलब
13: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
14: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज दिन शनिवार है और शनिवार के दिन हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। और आज हम बात कर रहे हैं पूरे देश की सेहत की। तो आपको क्या लग रहा है, एक घंटे में क्या हम पूरे देश की सेहत को कवर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं अगर हमें सही जानकारी हो तो। फैमिली प्लान करिए, अपने घर की बहू बेटियां बहन के साथ साथ पूरे देश की भी रक्षा आपको करनी है। अभी तक दोस्तों हमने जाना कि परिवार नियोजन क्या है, इसके फायदे क्या है, इसे ना करने के नुकसान क्या है, और महिला और देश की सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं समाधान की। हम आखिर क्या कर सकते हैं कि अब हम कर क्या सकते हैं? देखिए, करना ये है कि सबसे पहले तो आपको इसको ध्यान से सुनना है, और अब इसे सुनना ही नहीं, इसे फॉलो भी करना है। सबसे पहला कदम ये है कि आपको जागरूकता फैलानी है। जी हाँ दोस्तों, परिवार नियोजन पर आज भी बहुत कम खुलकर बात होती है। इसे एक शर्म का विषय मान लिया जाता है, लेकिन ये शर्म की नहीं बल्कि समझदारी की बात है। अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों में इस विषय की बात जरूर करें, जानकारियां फैलाइए। जो नहीं जानते हैं उनको भी इसके बारे में सही से और पूरी जानकारी जरूर दें। उसके बाद दूसरा कदम है, लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करिए। ये सबसे कारगर उपाय है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो जल्दी शादी नहीं करती है। वो अपने अधिकार जानती है और वो सोच समझकर ही माँ बनती है। पढ़ी लिखी माँ, स्वस्थ परिवार। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों अपनी बेटियों को पढ़ाइए, ये देश का सबसे बड़ा परिवार नियोजन कार्यक्रम है। तीसरा कदम है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठाइए। भारत सरकार का राष्ट्र परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत सारी सुविधाओं को मुफ्त देता है। आपके नजदीकी PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आप जाकर परिवार नियोजन के समाधान के बारे में जान सकते हैं, और आशा कार्यकर्ताओं और ANM दीदियों को घर घर जाकर आपकी मदद भी करती हैं। उनसे मिलिए और उनसे इस विषय में जानकारी जरूर लीजिए। चौथा कदम है, पुरुषों की भागीदारी। जी हाँ, देखिए पुरुषों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये पति और पत्नी दोनों का निर्णय होना चाहिए। जब दोनों मिलकर फैसला लेंगे तभी असली बदलाव हो पाएगा, घर में भी और हमारे देश में भी। पांचवा कदम है, शादी की सही उम्र का पालन करना। कानूनन लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि 21 से 25 साल की उम्र में शादी और इसके बाद कम से कम 2 साल बाद ही पहला बच्चा प्लान करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। बाल विवाह ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये लड़कियों की जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर डालता है, उनकी सेहत और जिंदगी दोनों को बर्बाद कर देता है। उसके बाद छठा कदम, मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी ये करती हैं कि नहीं सोशल मीडिया बेकार है, अभी कहती है कि नहीं अच्छा है। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो चेहरे होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई और चीज। आपको क्या अपनाना है ये आपके हाथ में, लेकिन मैं थोड़ा सा सही यूज आपको बता देती हूँ कि आज का युग डिजिटल युग है। इंटरनेट पर परिवार नियोजन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर आप सारी जानकारी पा सकते हैं। और हाँ, जो सही जानकारी है उसे शेयर करिए, गलत जानकारी और अफवाहों से आपको बचना चाहिए। और आखिरी कदम वो है, अपनी मानसिकता बदलिए। दोस्तों, आज भी कुछ लोग मानते हैं कि ज्यादा बच्चे भगवान का वरदान होते हैं, या बेटा होने तक कोशिश करते रहो, ये सोच हमें बदलनी होगी। हर बच्चे

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बात करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी के सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है, कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं और कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी यानी कि हमारी टीकन भाभी जी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुँचने की कहानी। टीकन भाभी, उससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद आरजे, और मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा करें तो माँ बाप डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि गांव के लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इन सभी अफवाहों के बीच छिप गया है। आज हम उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
2: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलती हूँ आज मैं।
3: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
4: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस यह कागज मुझे पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।
3: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी, तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं हो पाती होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
4: अरे भाभी, ये एक HPV है या जो भी नाम है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन कर दिए हैं और कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं, कोई कह रहा है बांझ हो जाएगी बेटियां, किसकी सुने, या तो बहुत बड़ा निर्णय लेना है।
3: और तुमने वीडियो देखा?
4: देखो, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे मान लें कि क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े ही हैं।
2: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता है। हमारे पास अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है। ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और आखिर में क्या क्या चल रहा है।
4: टीकन भाभी, एक बात कहूँ, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर क्यों आजमाते हैं, यह भी मन में आता है। ऊपर से यह भी सुनने को मिलता है कि पहले 3 डोज लगी थी, अब बोल रहे हैं, कोई कह रहा है यह जल्दबाजी है।
3: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा, निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
4: पर हमें तो यही डर लगा रहता है कि कहीं आगे चलकर शादी ब्याह में बिटिया को या बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
3: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुँचाती। और फिर पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है।
2: यह बिंदु महत्वपूर्ण है, आज माँ है। ये वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाहों के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSL के यानी कि सेहत सही लाभ कई की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
4: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठी है, पर पीरियड्स के बारे में क्या? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
3: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और ये पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
4: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे ही समझ में आता है।
3: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है और सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: हाँ जी टीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
4: लेकिन एक बात और, अगर यह इतना अच्छा है तो खर्च कितना आएगा? सच कहूँ टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
3: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी भी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। और यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
4: मुफ्त? सच में मुफ्त है?
3: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल से पूछो, डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो, फॉरवर्ड भेजने वालों से क्या पूछना।
4: सुनने में आसान लगता है पर घर वाले भी तो माने, कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, और फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो, लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर ही आकर गिरती है।
3: इसलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो, ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं परिवार की समझ का भी फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी सब तो शोर है।
2: श्रोताओं जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना है और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे, इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
4: लो फिर मैसेज आया, पड़ोस वाली कमला लिख रही है मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था, यह बताओ क्या माने क्या ना माने।
3: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है।

0: पता है डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती हूँ।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं गलत फैसला न ले लूँ।
0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
2: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूर दृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों जानकारियों मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होता है। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, ना कि अफवाह। और सही जानकारी ही लाभकारी होती है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए।
1: टीकन भाभी, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। यह बात तो मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि अब बस बचना मुश्किल है।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
1: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK यानी कि सेहत सही लाभ कई का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं कि आखिर में सुनीता ने क्या फैसला लिया।
1: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहाँ डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना कहूँगी ना हाँ कहूँगी, लेकिन एक बात पक्की है, हाँ फॉरवर्ड मैसेज देखकर फैसला नहीं करूँगी।
0: बस यही जीत है, सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
1: और अगर डॉक्टर वही कहें जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कह दूंगी कि फालतू के इधर उधर के तथ्यों को न देखो और न उन पर ध्यान दो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहाँ। ये गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित ना रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों को होती है, पर जब घर में किसी को कुछ होता है तो समझ में आता है कि बीमारी जात, धन और जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुँच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
1: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो भी पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो, जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी तो उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, वैज्ञानिक यानी विज्ञान और प्रमाण से गाइडेंस होने के बाद ही होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वह तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुँचेगी।

0: सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोसी, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोलें।
2: अच्छा भाभी, अगर मेरी बेटी मुझसे पूछे कि अम्मा आप पहले डर क्यों गई थी, तो मैं क्या कहूँ उससे?
0: कहना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर बात कही आपने भाभी, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की भी बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती है हमें ये सब नहीं आता, वहाँ भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंच सकता है।
1: शुक्रिया टीकन भाभी, आपका और सुनीता जी का, आप दोनों का ही शुक्रिया। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातों को संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी बात, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी बात, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी बात, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठवीं बात, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से भी एक बात, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुँचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ में पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर सही फैसला करूंगी।
1: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही है, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक के लिए याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की सही जानकारी लें। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं है, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM के साथ सीधा संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे
4: साफ
3: सफाई और स्वच्छता का
4: साफ सफाई और स्वच्छता का
3: पालन करेंगे
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
4: सेहत सही तो लाभ कई।

0: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अरे सुना?
1: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका भाई। क्या बात है, आज का मौसम भी थोड़ा सा पहले से अच्छा हुआ है, मतलब कल से अच्छा हुआ है थोड़ा सा मौसम, क्योंकि आज कल नाइट में शायद बारिश हुई थी ना अंशिका
1: जी? मैम
0: हाँ, तो बारिश हुई थी और थोड़ी सी गर्माहट भी बाहर निकली, मतलब पृथ्वी को लगा कि हाँ कुछ बूंदें उस पे पड़ी हुई हैं। तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी, आज भी गर्मी उतनी ही है, लेकिन कल जब रात में बारिश हुई है अंशिका, तो जैसे लग रहा था कि फर्श से गरम गरम से बॉइल पानी हो, मतलब जैसे नहीं आग के बबूले होते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: वैसे हो रहा था। दो मिनट के लिए हम लोग बाहर गए तो जैसे लग रहा था कि कुछ देर अगर बारिश और होती तो आज मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन कोई नहीं, चलो थोड़ी देर हुई। तो चलिए भाई, आज के इस प्यारे से शो को हम लेकर के फिर से आ गए हैं। आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
1: सुन सहेली
0: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। भाई आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन हमारी बातें होती हैं कम एंड सॉन्ग्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने का मिलता है मौका। देखिए, इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा चलो एक तो गाना हम लोग सुनाते ही हैं, लेकिन एक गाना और सही। हर बार हर सैटरडे की तरह हम कितने गाने लेकर के आते हैं अंशिका?
1: हर बार हर सैटरडे की तरह दो सॉन्ग्स
0: हम लोग सुनाते हैं। ये शायद हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है लिसनर्स को सुना देते हैं, मतलब उनकी भी एक मन मर्जी है।
1: बिल्कुल,
0: कभी कभी सुनने का मन नहीं होता है, हम लोग घर में ही हैं तो कभी कभी अपने बच्चों को कह देते हैं ना, अपने घर के बड़ों को कह देते हैं ना कि मुझे बस अब शांति से बस सुनना है, बैठना है और कोई बकबक नहीं सुननी है। तो ऐसे सभी का मन करता है यार कि हम लोग भी कभी कभी उस मूड में जाएं कि केवल गाने सुने और अपने आप को एंजॉय करें, है ना?
1: और तो, फिर वीक में एक ही दिन तो मिलता है लिसनर्स को।
0: हाँ, एक ही दिन मिलता है लिसनर्स को प्रॉपर गाने सुनने का।
1: यस,
0: बाकी तो हम अपनी बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं और नहीं चाहते हुए भी उन्हें सुनना पड़ता है।
1: हाँ,
0: ये कह सकते हैं
1: कि मतलब बाकी दिन उन्हें लगता होगा कि अच्छा सैटरडे आएगा तो सॉन्ग मिलेंगे और मैम लोग थोड़ा सा कम अपनी बातें करेंगे,
0: अपनी बातें कम करेंगी और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनने का मौका मिलेगा। खैर चलिए, आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं दोनों लोग।
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहर लिसनर्स, और दोपहरिया जो है वो शुभ के साथ आज थोड़ी सी खिली खिली सी है, प्यारी प्यारी सी है, एनर्जी वाली है, क्योंकि आज सैटरडे है। सुपर से ऊपर और सुपर से ऊपर ले जाने का काम करेंगी आपकी अपनी आरजे समता, क्योंकि आज का दिन जो हम शुरुआत करते हैं ना वो प्यार से, और प्यार में होती है बहार, और
0: प्यार में होती है ताकत, प्यार में होती है बहार, प्यार में होता है पता नहीं क्या क्या,
1: प्यार में होती है टकरार, और कभी कभी प्यार में कुछ और भी होता है,
0: मारधाड़।
1: हाँ, ये भी हो सकती है, नो डाउट।
0: हाँ, होती है,
1: लेकिन और भी कुछ होता है, मतलब कुछ ऐसा भी होता है जो फिर लगता है कि अब ना होता तो ज्यादा अच्छा।
0: क्लास लगती है
1: कायदे से
0: क्लास लगती है।
1: कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि दूसरा कोई हॉस्पिटल में मिलता है और जब पूछा जाता है बेटा आपके साथ क्या, तो आपके साथ क्या हुआ, आप इस स्थिति में कैसे पहुंच गए, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता।
0: ये कहा जाता है कि भाई हमने धोखा देने की बात करी थी तो वो क्लास मेरी लग चुकी है। चलिए, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम यहाँ पर
1: आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
0: तो हम अपने शो को शुरू करते हैं क्योंकि मैक्स टू मैक्स एक घंटा हमारे पास होता है, और आज के दिन आपसे पहले कमिटमेंट कर चुके होते हैं कि हम गाने ज्यादा लेकर के आए हैं। तो लव से शुरू करते हैं, यानी कि लव पोयम एंड थॉट ऑफ द डे। मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं मॉर्निंग थोड़े बैठी हूँ। रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड उसके बाद लव राशिफल, OTT सीरियल्स एंड मूवीज के बारे में, एंड आपका सबसे ज्यादा वाला फेवरेट सेक्शन जो होता है गेम। तो
1: करते हैं तो चलिए करते हैं प्यार की बरसात की हम शुरुआत, और प्यारी सी एक कविता सुनाएंगे अपनी आरजे समता के साथ। सुनेंगे आरजे समता के साथ
0: जी। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। मुझे अपने हर दर्द का हमदर्द बना लो।
1: ओहो,
0: डेडिकेट टू माय समवन।
1: ओके,
0: हू इज स्पेशल, ठीक है। मुझे अपने हर दर्द का हमदर्द बना लो, दिल में नहीं तो ख्यालों में बैठा लो, सपनों में नहीं तो आंखों में सजा लो, अपना एक सच्चा एहसास बना लो। मुझे कुछ इस तरह से अपना लो, मुझे कुछ इस तरह से अपना लो कि अपने दिल की धड़कन बना लो, मुझे छुपा लो सारी दुनिया में ऐसे कि अपना एक गहरा राज बना लो। करो मुझसे मोहब्बत इतनी, करो मुझसे मोहब्बत इतनी, अपनी हर एक चाहत का अंजाम बना लो। ढक लो मुझे अपनी जुल्फों में कुछ इस तरह, ढक लो मुझे अपनी बाहों में कुछ इस तरह कि मुझे अपना संसार बना लो। आप फूल मत जाओ मुझे भवरा, आप फूल बन जाओ और मुझे भवरा बना लो। आप चांदनी बन जाओ और मुझे चांद बना लो। रख दो अपना हाथ मेरे हाथों में इस तरह, रख दो अपना हाथ मेरे हाथों में इस तरह कि मुझे अपने जीवन का हमसफर बना लो, कि मुझे अपने जीवन का हमसफर बना लो।
1: माय गॉड, मतलब सुन के कुछ ऐसे महसूस हो रहा था ना कि रोएं खड़े हो गए, और बहुत ही फीलिंगफुल तरीके से आपने,
0: और जैसे कहते हैं ना कि अंदर की फीलिंग
1: बिल्कुल
0: वो निकल के बाहर आने लगती है,
1: और जब वो बाहर आती है तो जो आपके आसपास होते हैं उन्हें महसूस होता है, और मुझे भी महसूस हो रहा था, और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई हूँ मैं क्योंकि वो चीज़ें फील हुई मुझे। यस ऑफकोर्स,
0: कि मैंने इतने प्यार से किसी को डेडिकेट किया,
1: बिल्कुल
0: काश उन तक पहुँच पाती।
1: दिल से निकली हुई आवाज़ हमेशा दिल तक पहुँचती है, और जब दिल से दिल की बात होती है तो उसमें शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपने जो दिल से कहा है वो यूनिवर्स तक गया है, तो आई एम श्योर कि वो पॉजिटिव एनर्जी उन तक भी ज़रूर जाएगी। और लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि शब्द कुछ नहीं होते, लेकिन शब्दों में जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो वो बहुत बेहतरीन बन जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा मैम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
0: अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया,
1: बयां
0: किया। चलिए थैंक यू सो मच अंशिका, एंड जो भी हमारी इस प्यारी सी लव पोएम को सुन चुके हैं अभी तक, एंड आइए अब फटाफट चलते हैं आगे, पढ़ते हैं जल्दी से जल्दी अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
1: आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, एतबार करो उन पर, एतबार करो उन पर जिन्होंने कभी किसी का दिल ना तोड़ा हो, और तुम साथ निभाना उनका जिन्होंने कभी तुमसे मुंह ना मोड़ा। कहने का मतलब ये है, आज मैं थोड़ा सा शायराना अंदाज में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हमारा प्यार वाला दिन है। कहने का सेंस ये है कि हम हमेशा कहते हैं ना कि मुझे उनसे बहुत प्यार है, या मुझे उस पर बहुत भरोसा है, और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो आज का कहना ये है मेरा कि किसी भी रिश्ते में जब आप बंधें, और जब दो लोग अपनी मर्जी से किसी भी रिश्ते की शुरुआत करें, स्पेशली प्यार में, तो उन्हें हमेशा ये होना चाहिए कि ये रिश्ता एंड ऑफ लाइफ तक हम निभा पाएंगे या नहीं,
0: फिर वो किसी भी कंडीशन में।
1: हाँ,
0: दूसरों पे ब्लेम करके और अपने आप को सेफली वहाँ से निकालना, ये एक इंसान अपने आप को सेफ तो कर पाता है कहीं हद तक, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि एक इंसान ऐसा है, एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा ऑनलाइन रहती है, वो है ईश्वर।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर किसी ने किसी को किसी का हाथ थामा है, प्यार किया, उन लम्हों को जिया, और उसके बाद से छोटी सी एक वजह से उसे मतलब हटा देना या फिर उस पर ब्लेम कर देना, दुनिया भर के ब्लेम कर देना, बट किसी भी चीज़ में एक चीज़ तो ऑनलाइन है ना, ईश्वर,
1: हमारे ईश्वर। बिल्कुल,
0: तो हमें उनका ध्यान रखना है कि वो ऑनलाइन है, वो देख रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रिश्तों को हमेशा, जैसे कि मैंने पहले भी अभी एक लाइन में आपसे कहा था कि एंड ऑफ लाइफ तक ले जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा रिश्ता कोई, देखिए हमेशा रिश्तों में ख़राब जब सिचुएशन आती है तभी हम छोड़ देते हैं कि अरे ख़राब है चलो हटाओ छोड़ दो, लेकिन किसी से आपने वादा किया है एंड ऑफ लाइफ तक निभाने का तो कोशिश करें और निभाएं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी आज प्यार वाला दिन है तो बताना चाहूँगी कि जब कोई रिश्ता दिल और दिल में बहुत ज़्यादा चुभन पैदा करता है, आपको परेशान करता है, या आप सोचते हो कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, मान लीजिए मैम कई बार रिश्तों में होता है कि दो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर होता है। एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते अपने दिल से, और उससे आपको कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये नहीं बने हैं और मैं इनसे अलग होकर आराम से खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, तो समझदारी से अलग हो जाएं। लेकिन अगर आपके रिश्ते में प्यार है, सब कुछ है, तो उसे टूटने भी ना दें, संभाल कर रखें।
0: तो आपका रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज का यही था कि अगर आपने प्यार किया है तो उसे निभाएं, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किया है तो उसे निभाएं, क्योंकि आज है प्यार का दिन। और ये प्यार की परिभाषा नहीं थी, ये बहुत ही प्यार से समझाने वाली एक कहते हैं ना कि एक प्यार से और दिल तक बात को पहुंचाने वाली बात थी। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए आइए चलते हैं इस प्यारे से लगमे को सुनाती हूँ, और उसके बाद आएंगे हम सीरे एंड सीरे ओटीटी सीरियल्स पे, जो कि कौन सी नई आज इस वीक में आने वाली है। चलिए अंशिका।
1: यस मैम।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। तो सबसे पहले अंशिका चलेंगे चैट बॉक्स में।
3: जी
2: आज है सैटरडे एंड आज के दिन ना सभी लिसनर्स आ जाते हैं और बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं कि आज गेम होगा, फन एंड मस्ती होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी का वेलकम कर लेते हैं, जिसमें है प्रीति जी। आज शुभ दोपहरिया। ओके, शुभ दोपहरिया आपको भी।
3: शुभ दोपहरिया प्रीति जी।
2: कमल नयन जी शुभ दोपहरिया। आशु जी शुभ दोपहरिया। एंड सुनील यादव जी लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली में अकेले रहता हूं और आपका प्रोग्राम सुनकर के मेरा अकेलापन दूर हो जाता है।
3: ओह थैंक यू सुनील जी।
2: एंड शुभ दोपहरिया सुनील जी। एंड सबलू जी शुभ दोपहरिया। एंड मुस्तफा सिद्दीकी जी भी गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। सुनील यादव जी गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। एंड अनुष्का
3: श्रावस्ती।
2: मैं सरस्वती बोलती मैं सरस्वती ही बोलूंगी। मैं आजीवन आपको सरस्वती ही बोलूंगी अनुष्का जी। इट्स ओके जी। इट्स कुमार जी वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए तो अंशिका चलो फटाफट शुरू कर देते हैं।
3: जी मैम।
2: बहुत ज्यादा वाली क्रेविंग हो रही है, पता है किस चीज की?
3: किस चीज की?
2: गेम की यार, जल्दी से बस गेम।
3: ओके ओके
2: बस।
3: तो बस कुछ लम्हों का इंतजार और फिर शुरू होगा गेम। तो चलिए चलते हैं आज पहली वाली जिस सीरीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो खुशी की बात है, और खुशी की बात यह है कि ये कॉमेडी ड्रामा है।
2: okay.
3: यानी कि आप मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि लाइफ में खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं और गम तो मिल ही जाते हैं। तो चलिए बताते हैं कि
2: तो हर एक स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाता है।
3: और
2: हर एक स्टेशनरी की शॉप पे।
3: यस मैम। और खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं।
2: खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं।
3: तो चलिए आप बताते हैं कि आज हमारी पहली सीरीज का नाम है परफेक्ट फैमिली। यस परफेक्ट फैमिली, जो कि बहुत ही अच्छी कॉमेडी ड्रामा है। और इसमें आप जिन स्टार्स को देखने वाले हैं उनमें से कुछ का नाम मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको जो एक्साइटमेंट है ना वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले होने वाले हैं गुलशन, उनके बाद नेहा धूफिया, मनोज और सीमा। भाई इनके साथ जो मज़े आप करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक खुशहाल परिवार जो होता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर फैमिली में 10 लोग हैं तो उनमें परफेक्शन नहीं हो सकता है। कोई अलग होगा, कोई किसी चीज़ में अलग होगा, लेकिन सबको एक साथ लेकर के कैसे चलते हैं ये थोड़े कॉमेडी वे में इसमें आपको दिखाया गया है।
2: okay.
3: तो देखिए समझिए और एंजॉय करिए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है बहुत ही एक प्यारी सी और कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी हमारे हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। और जिन्होंने इसका सीज़न 1 देखा है उन्हें सीज़न 2 देखने में बहुत मज़ा आएगा, जो कि नाम है ग्राम

0: होते हुए भी गांव वालों को उन्होंने अंधविश्वास के बीच से निकालकर ये भरोसा दिलाया कि मेडिकल भी कुछ होता है। हाँ। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि
1: हाँ
0: झाड़ फूक यही होती है। वहाँ पे गांव में बहुत सारा अंधविश्वास था कि अगर किसी को जैसे स्मृति वो मतलब जिसे कोई अपनी याददाश्त
1: भूल जाता
0: है तो ये होता था कि अरे उसके अंदर आत्मा का साया है ना, इसलिए वो अपनी याददाश्त भूल गए। लेकिन उन्होंने एहसास दिलाया कि नहीं, ये सब फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं और मेडिकल साइंस में इनका इलाज है। तो डॉक्टर प्रभात की कहानी हमारे लिए जितनी एंटरटेनमेंट देती है उतनी ज़्यादा मोटिवेशन भी देती है। तो ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। ये दोनों ही आपके वीक को शानदार बनाने के लिए हैं, तो देखें और बढ़िया से अपने वीक को शानदार बनाएं। और इसी के साथ एक छोटी सी लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली खबर है मेरे पास, जो कि उनके लिए बहुत धुआंधार होगी जिन्हें देखना पसंद होगा। जैसे कि भाई देखिए, नागिन तो वैसे मतलब अब क्या कहूँ, तो नागिन अपने नए सीजन के साथ कलश रिश्ते पे आने वाला है और इस बार आप नागिन का बदला जरूर देखेंगे, लेकिन इस बार नागिन की लड़ाई इंसानों से नहीं होने वाली है।
1: तो किससे होने वाली है?
0: इस बार ड्रैगन से होने वाली
1: है। ओह माय गॉड,
0: यस। यही सीजन का राज है जो इसे बहुत खूबसूरत बनाता है कि इस बार नागिन लड़ाई करेगी ड्रैगन से। और मतलब वो ड्रैगन भी कैसा होगा, जैसे इच्छाधारी नागिन होती है कि वो अपना रूप बदल सकती है, वैसे इस बार इस सीजन में आप इच्छाधारी ड्रैगन देख पाएंगे जो अपना रूप बदल सकता है। तो देखें, इंजॉय करें, और मुझे तो मतलब बहुत पसंद है तो मैं तो देखूंगी और जरूर इंजॉय करूंगी।
1: भाई देखो, जो भी है ना, ये पहले वाले जो सीरियल्स होते थे ना, आज मैं एक रील देख रही थी और उसमें ना बहुत सारे पुराने जो सीरियल्स होते थे,
0: अच्छा
1: पुराने वाले सीरियल्स में ना वो रस भी होता था।
0: हाँ।
1: जैसे आज की मूवीज, खैर मुझे तो नहीं समझ में आती है जो बात है भाई, अब आज की जनरेशन के हिसाब से वो वाली मूवीज है
0: उन्हें
1: पसंद आती है, लेकिन मुझे पुरानी वाली मूवीज में या फिर पुराने सीरियल्स में जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की कसम से,
0: हाँ।
1: और पवित्र रिश्ता एंड कहीं तो होगा, रामायण, ये सब ऐसे रील्स में बहुत सारे ये आ रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि मतलब वो दौर था एक जो हम लोग इसको बैठ के कैसे देखते थे और पूरे दिन की थकावट जो होती थी ना वो आधे घंटे में पूरा
0: मिट जाती थी।
1: 8 बजे से शुरू होता था रात को 12 बजे, लास्ट प्रोग्राम होता था 11:30 से 12 कहीं तो होगा, मुझे पूरा याद है।
0: yes.
1: और 8 बजे शुरू होता था कसम से, सबसे
0: oh
1: पहला।
0: my God. मतलब मैम को टाइमली पूरा याद है
1: क्योंकि मैंने अपने 8 से 10 साल मैंने टीवी को दिए हैं, मतलब हाँ। इतनी ज्यादा मैं शौकीन हुआ
0: करती थी। जी जी जी।
1: और उसके बाद 8:30 बजे आता था पवित्र रिश्ता, मुझे सबके टाइमिंग याद है। 9 बजे आता था उसमें जो 3 वैनों वाला कसम से। 9:30 बजे कुछ ऐसा होता था, और लेकिन 10 बजे, 9:30 से 10 का नहीं पता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन 10 बजे से 10 से 10:30 आता था कहानी घर घर की, और 10:30 से जो 11 बजे तक आता था अपना ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और 11 बजे से 11:30 बजे तक आता था कहीं तो होगा,
0: और
1: 11:30 बजे से फिर से ये प्रोग्राम्स पूरे रिपीट होते थे 1:30 बजे तक।
0: तो इसका मतलब आप 1:30 बजे तक जागती थी?
1: नहीं, अगर कभी हमारा छूट जाता था ना 8 बजे से प्रोग्राम, तो मैं ये पूरे प्रोग्राम फिर 1:30 बजे तक रात में आवाज को बिल्कुल कम करके, क्योंकि एक ही टीवी हुआ करती थी
0: जी,
1: और
0: जी,
1: वो हमारी जैसे ड्राइंग रूम में हुआ करती थी, सभी लोग वहीं रहते थे, दादा दादी सब लोग, तो मैं आवाज को बिल्कुल कम करके और आराम से पूरे मतलब मैं सीन भी देख लेती थी ना, तो मुझे लगता था मैंने सीरियल देख लिया, मैंने देख लिया।
0: मुझे तो पता ही नहीं था कि मैम टीवी की इतनी शौकीन।
1: मैं कीड़ा थी, कीड़ा टीवी की कीड़ा थी। अब मुझे उतनी टीवी मुझे नहीं पसंद आती, मतलब लगता है कि यार टाइम वेस्ट है, छोड़ो इसको टाइम, अब मुझे नहीं पसंद है। और हाँ, कभी कभी कोई सीरियल्स आ जाते हैं जो मतलब एक कंटिन्यूसली वाला नहीं है मेरा अब,
0: कभी कभी
1: अब ऐसा हो गया है कि हाँ मतलब अगर कभी देख लिया तो देख लिया, पहले तो धरती आसमान एक हो जाए
0: देखना है,
1: मतलब 8:30 बजे बैठ जाना है टीवी पे, खाना वाना पूरा निपटा करके तो बैठ जाना है, तो बैठ जाना है। तो उससे पता है, उससे एक चीज और होती थी अंशिका, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हुआ करते थे।
0: हाँ।
1: क्योंकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ इसलिए हुआ करते थे कि हमारा पूरा मन चित क्या होता था, टीवी में लगा रहता
0: था, टीवी में लगा रहता
1: था। तो मैं कुछ अब भी ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि ऐसा हम लोग आज अभी भी हम लोग शुरू कर सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: ताकि अपने आप को स्वस्थ रखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी भी जो डेली सोप वाले सीरियल्स होते हैं ना, उसमें आप अपने अपने आप को मन को अगर आप लगा सकते हैं, मोबाइल से कहीं बेटर ऑप्शन टीवी होता है, मतलब मुझे लगता है।
0: ऐसा ही होता है मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे तो
1: मोबाइल में ना हम

0: मन की देखते हैं, पर टीवी में अपने मन की नहीं देखते हैं।
1: जो आएगा वो
0: जो आएगा वही हमको देखना पड़ता है। और ये एक अच्छी आदत होती है कि हम दूसरे पे, सामने वाले पे डिपेंड। अपने पे डिपेंड तो हम कभी मोबाइल को फेंक देंगे, गुस्सा आ जाएगा, कभी ऐसी रील्स देख लेंगे कि कहीं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे। पर टीवी में ऐसे ऐसे बीच में जो कि गैप भी होते हैं, जो ब्रेक्स होते हैं ना, वो भी फनी वाले होते हैं।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो मैं कुछ सोच रही हूँ फिर से कि इसको फिर से रीस्टार्ट करूँ।
1: अगर मैम की तरह आप भी सोच रहे हैं अपनी टीवी को रीस्टार्ट करना, तो कुछ मैं ऐसे आपको शोज़ बता देती हूँ जो देखने से आपकी जो मेंटल कंडीशन है ना, वो बहुत बेटर हो जाती है। तो सबसे पहला नाम आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
0: ओह माय गॉड,
1: जो मैं बहुत देखती हूँ। मतलब मुझे ऑन एयर ये कहने में कोई हिचक नहीं है।
0: और सबसे ज्यादा एक अंदर के जो हार्मोन्स, खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं ना, वो इंक्रीज होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। अगर आप जैसे इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन मेंटल पीस के लिए देखना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा आता है। और दूसरा अगर आप देखना चाहते हैं तो भाभी जी घर पे हैं।
0: अब आते हैं फिर से।
1: यस मैम, एन टीवी, भाभी जी घर पे हैं। और तीसरा सबसे जबरदस्त नाम बताती हूँ, मतलब अगर किसी को हंसी नहीं भी आती होगी, हाँ कपिल शर्मा शो भी हो सकता है, लेकिन एक और है जो अभी न्यू स्टार्ट हुआ है जल्दी में, कि अगर कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना, ये बहुत शांत है, ये हंसते नहीं है, वो भी हंस देगा इंसान।
0: कौन सा?
1: हप्पू की उल्टन पलटन।
0: हप्पू की उल्टन पलटन
1: बहुत मजेदार, एन टीवी पे, बहुत मजेदार। मतलब वो आठ बच्चों की कहानी है, उनके आठ बच्चे होते हैं, और मतलब क्या वो कॉमेडी है कि मजा आ जाता है।
0: चलो तो भैया अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि इस चीज़ को किया जाए, क्योंकि वाकई में अगर आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से दूर होकर के आप टीवी से जुड़ें।
1: बिल्कुल,
0: वाकई में अपने आप को एक स्वस्थ और अच्छा बनाने के लिए, मतलब मेरे तरफ से तो ये एक एडवाइस है, एक पॉजिटिव सोच है ये। तो चलिए अंशिका
1: जी, मैम
0: अब ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम आएंगे लव राशिफल की ओर बढ़ेंगे, एंड देन आपका फेवरेट सेक्शन गेम।
1: तो चलिए चलते हैं इस प्यारे सॉन्ग को सुनते हैं, और कोशिश करिए समझने की कि आपके दिल ने आपसे क्या कहा है।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: बिल्कुल, दिल ने ये कहा है दिल से और मोहब्बत हो गई है तुमसे, लेकिन हो गई है फिर क्या किया जाए? क्योंकि कहते हैं ना कि हम इश्क ने गालिम निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी काम के थे। तो अब ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, मतलब इश्क होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप निकम्मे हो जाएं, ऐसा होना चाहिए कि आप और बेहतर हो जाएं। क्योंकि जो सेकंड वाला ऑप्शन है मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों मैम, आप क्या सोचती?
5: बिल्कुल 100% 100 नहीं 200%
4: मैम कैसे कह रही हैं?
5: और क्या, चलिए भैया लव राशिफल हमारा इंतजार कर रहा है, तो लव राशिफल की ओर चले।
4: जी मैम,
5: चलिए
4: तो गुलसी की पेटी बांधते हैं और चलते हैं और जानते हैं कि आज हमारी पहली राशि में जो पहले हमारे मतलब जिनकी भी ये राशि है क्या होने वाला है आज उनकी लव लाइफ में।
5: ओके,
4: तो आज जो सबसे पहले राशि की हम बात करें तो मेष राशि आती है सबसे पहले, और मेष राशि वालों के लिए है कि आज का दिन आपके प्यार के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखें अपने पार्टनर से बात करते वक्त। मतलब पहले ही चेतावनी मिल गई है कि अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ी बात करते वक्त सावधानी रखें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा दिन
5: पता लगा पैसा वैसा मांग लिया तो गए काम से,
4: परिवर्तित हो जाए फिर
5: लड़ाई झगड़े
4: में, है ना। और साथ ही साथ है कि भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना करें और प्यार से बात करें।
5: और रिश्तों में आज भावनाएं पहले से ज्यादा मजबूत भी इसमें दिखा रहे हैं।
4: तो ये तो अच्छी बात है कि रिश्तों में भावनाएं मजबूत, क्योंकि जब भावनाएं मजबूत होंगी तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे।
5: बिल्कुल।
4: वृष राशि वालों के लिए है कि प्रेम जीवन में खुशहाली और गहरा ठहराव लाएगा, यानी कि आपका प्यार आपकी लाइफ में खुशी भी लाएगा और ठहराव भी लाएगा, और साथ ही साथ में आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी दोस्ती और बातचीत दोनों बढ़ेगी और रिश्ते में मजबूती आएगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते पे ज़्यादा अधिकार नहीं जताना है। मिथुन राशि वालों के लिए है कि दो लोगों में चल रही पुरानी जो नोकझोंक है वो दूर होगी और आपके रिश्ते में हंसी मजाक और प्यार दिखेगा। रिश्ते में दिखावे से बचें और हमेशा अपनी बात को बिना किसी झिझक के कहें। कर्क राशि वालों के लिए है कि आज का दिन आपके प्यार के लिए बहुत ही अच्छा है, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे रोमांटिक पल बिताएंगे, लेकिन आप दोनों के बीच कुछ बातें अटपटी भी हो सकती हैं, उससे बचना है। और अगर आप सिंगल हैं, कर्क राशि वालों के लिए है कि अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है जिसके प्रति आप अट्रैक्शन महसूस करेंगे।
5: ओके,
4: तो कर्क राशि मैम कौन कौन से वर्ड्स होते हैं तो उनमें कर्क राशि होती है?
5: कर्क राशि में
4: आई थिंक जिनका नाम र से होता है उनकी कर्क राशि होती है।
5: नहीं,
4: मेरा नहीं है। ऐसे मैं सोच रही थी, मेरे मन में सवाल आया। तो चलिए अब मुझे लगता है गेम शुरू कर देते हैं।
5: अभी ना मैं सोच रही हूँ कि चार राशियों के बारे में मैं भी बता दूँ, मेरा भी मन कर रहा है। एंड हम लोग पहले वर्ड भी दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी चार राशियों के बारे में। एंड देन उसके बाद आप जब तक सॉन्ग लिखेंगे और हमें एक सॉन्ग मिल जाएगा, हम आपके साथ गेम भी पार्टिसिपेट करेंगे और फिर हम आएंगे लौटेंगे अपनी बाकी राशियों के बारे में। तो आज हम वर्ड टू वर्ड खेलें, ठीक है? तो पहला वर्ड मैं आपको देना चाहती हूँ चांदनी।
4: चांदनी, और बिल्कुल चांदनी आपका पहला वर्ड है। तो फटाफट से आपको इस पे बढ़िया सा सॉन्ग लिख के भेजना है, और जिनका भी सॉन्ग पहले आ जाएगा हम उनका सॉन्ग लेंगे।
5: अच्छा, बजाना है क्या?
4: यस मैम।
5: अच्छा, हमें लगा कि नहीं बजाना है।
4: नहीं नहीं बजाना है।
5: तो क्या वर्ड था पहला?
4: पहला था चांदनी।
5: चांदनी,
4: चांदनी, ओ मेरी चांदनी।
5: तुमने गाना ही बोल दिया, तुमने गाना ही बोल दिया।
4: क्या करूं मैम, वर्ड से वही याद आया तो मुंह से निकल गया।
5: कोई बात नहीं।
4: नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
5: फर्स्ट वर्ड इज चांदनी।
4: मैंने कुछ नहीं कहा।
5: फटाफट चांदनी वर्ड से जल्दी से गाना लिख करके भेजे, एंड मैं बाकी बताती हूँ आपको चार राशियों के बारे में।
4: लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। मैम की पहली राशि आप देखिए कितनी अच्छी आई है मैम आपके।
5: लव राशि फल में आया है सबसे पहला सिंह राशि वाला।
4: इसीलिए मैंने कहा
5: सिंह, इसीलिए क्योंकि ना शेर वाले लोग, शेर दिल वाले लोग बहुत पसंद है, इसीलिए। तो सिंगल पर किसी की नजरें टिक सकती हैं, सिंगल पर किसी की नजरें टिक सकती हैं आज। प्रेम संबंधों में आकर्षण और उत्साह बना रहने वाला है। पार्टनर के साथ में रिश्तों में नजदीकियां पहले से ज्यादा बढ़ सकती हैं आज, सिंह राशि वालों के लिए।
4: अच्छा,
5: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन है कि कपल्स खुलकर बातचीत करेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी। आज आपका व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तुला राशि वालों के लिए है कि किसी खास व्यक्ति के साथ घूमने की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांटिक माहौल बना रहने वाला है आज। सिंगल लोगों को अचानक किसी खास से बात करने का अवसर मिल सकता है आज। वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि प्रेम संबंधों में थोड़ी उदासी रह सकती है। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात रोमांचक रहने वाली है। पुराने रिश्तों को लेकर मन में कई विचार आ सकते हैं आज। तो ये थी चार राशियां।
4: तो सभी राशियों में मुझे लगता है कि आज का जो लव राशि फल है वो काफी अच्छा आया है। तो आप सभी जो जो सुधार करने हैं वो सुधार करें, और जिनमें अच्छा है वो एंजॉय करें अपनी राशि के हिसाब से।
5: और अभी जो सॉन्ग भेजा है वो आशु जी ने और प्रीति जी ने एक ही सॉन्ग भेजा है, जो कि है चांदनी और चांदनी, जो कि अभी अंशिका ने लिख दिया, बोल दिया था। और वैसे भी चांदनी वर्ड से यही गाना आएगा भाई, यही
4: मुझे यही सबसे पहला याद आया। और ऐसा नहीं था कि मेरा बोलने का,
5: ये बहुत प्यारा गाना है भी,
4: बस मुंह से निकल गया।
5: ठीक है, इट्स ओके, मतलब क्या है। तो ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है वैसे। तो चलिए फटाफट हम सुनते हैं इस गाने को, और उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट चार राशियों को सुनाएंगे। एंड सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड और दूंगी, यानी दो गाने हम आपको सुनाएंगे, यानी दो लिसनर्स के गाने हम आपको प्ले करेंगे, सुनाएंगे, और उसके बाद में एंड उसके बाद में हम आएंगे आपको फिर से राशिफल सुनाने के लिए, ठीक है?
4: लेकिन सॉन्ग सुनते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, लेकिन इस मूवी के मुझे तो सारे ही सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मूवी भी बहुत प्यारी है। तो चलिए सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं।

बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया,

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली।
6: तो चलिए अंशिका, फटाफट जल्दी से बाकी बची राशियों के बारे में आप बता दें, क्योंकि बची हैं धनु, मकर, कुंभ और
5: मीन। तो सबसे पहले बताते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए है कि प्यार और दोस्ती दोनों ही आपकी लाइफ में आने वाली है, और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। आज के दिन आप ये सारी ही कोशिशें कर सकते हैं।
6: ओके।
5: मकर राशि वालों के लिए है कि आज का दिन आपके रिश्ते में नई एनर्जी लाएगा। नई एनर्जी का मतलब पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। दूरियां कम होंगी और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्लान बना सकते हैं।
6: वाह।
5: अब आते हैं कुंभ राशि।
6: हाँ भाई, जल्दी से बताओ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कुंभ राशि जानने के लिए, तो फटाफट जल्दी से बताएं।
5: तो कुंभ राशि वालों के लिए है बहुत ही पॉजिटिव।
6: अच्छा सा है।
5: हाँ,
6: पॉजिटिव है। चलो तब बताएं।
5: पॉजिटिव ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है।
6: ओके।
5: और आपका पार्टनर आपका सबसे विश्वसनीय साथी बनकर उभरेगा।
6: Okay.
5: और अपनी भावनाओं को खुलकर अगर आप उसे बताएंगे बिना संकोच किए, तो ये आपके रिश्ते को पूरा समय देने का समय है और आपका पार्टनर आपको समझेगा भी।
6: जी। देखते हैं।
5: अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए है कि प्यार के मामले में आप कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ ये है कि आप अपनी फैमिली के लिए फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। और आपके रिश्ते में अभी तक आप सिंगल हैं, लेकिन जल्दी ही आपकी सगाई या शादी दोनों में से एक हो सकती है। और ये दिन आपके लिए, आज का दिन बहुत ही अच्छा है।
6: ओके। तो राशिफल हो चुका है, यानी लव राशिफल हो गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि अभी गेम पे। तो नागेश्वर जी आपका सॉन्ग प्ले हो चुका है, आशु जी आपका हो चुका है, एंड एक स्टार्टिंग में ही आशु जी और प्रीति जी ने एक साथ सॉन्ग लिख भेजा था। तो अब मैं प्ले करूंगी अनुष्का जी का, एंड उसके बाद जिनके भी बचेंगे, जैसे प्रीति जी हैं एंड गीता जी हैं और भी जो क्या कहते हैं लिसनर्स जो हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अब हम सीधे सीधे प्योर गेम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं बनाने वाली हूँ वो है दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, जो कि है अनुष्का जी का। तो फटाफट बिना देर लगाए आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग है कि छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा है, तो इसको हम अभी चलने देते हैं। आज अच्छा तो हम नहीं कहते हैं बजाएंगे, इसी गाने के साथ हम आपसे टाटा बाय बाय करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे सीधे मंडे को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: तो बारी आ गई है आज के उस दिन की, जिसका बेसब्री से इंतजार हमें होता है और आपको भी होता है। कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं हम दोनों एक दूसरे से और फिर हम आपकी डिमांड्स को लेते हैं। डिमांड्स लेने के लिए तो भाई आपको ट्यून करना होगा ना, वैसे भी आपने ट्यून करके रखा हुआ, जिसने नहीं रखा हुआ उसको बता देते हैं आपने ट्यून करके रखा हुआ है। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और शो है आपका फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। चलिए भाई, आज की पहली डिमांड हम पहुंचाते हैं आप तक अपनी पसंद की। तब तक हम फोन की सेटिंग को सेट कर लेते हैं। आप कॉल लगाते रहिए जो आप लगातार तभी से लगाए भाई हैं। हाँ, तो वो आप जारी रखिए भैया, सैटरडे है, थोड़ा स्ट्रेंथ आपको इनहेंस करना होगा, आपकी कलाइयों को मजबूत करना होगा, लगातार फोन मिलाते रहना होगा और आज के शो को फिर से सुपर डुपर हिट बनाना होगा। उससे पहले मेरी पसंद का आप तक पहुंचता है ये प्यारा सा नगमा, इसको एंजॉय करिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट आज की पहली वाली डिमांड लेके और देखते हैं कि आज का हमारा लकी कॉलर कौन बनता है। कॉल्स काफी सारी आ रही है, लेकिन उससे पहले हमें सेटिंग भी तो करनी पड़ती है, वो करते हैं। तब तक आप आनंद उठाइए 90s हिट्स में से इस खूबसूरत से नगमे का। भाई हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है प्यार मोहब्बत इश्क में, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या है, इस नगमे के माध्यम से जानिए। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में है तो आपको सबसे जरूरी, सबसे अहम चीज क्या मांगनी होती है। आइए सुनते हैं इस गाने के माध्यम से।

फूल मांगू ना बाहर मांगू, भाई कुछ और मांगना ही नहीं चाहिए। गिफ्ट वगैरह बहुत छोटा होता है, प्यार में बस केवल प्यार मांगना चाहिए और प्यार देना चाहिए, उसी से रिश्ता पनपता है, बनता है। देखिए अगर लाइफ में चारों तरफ केवल और केवल प्रेम प्यार हो तो फिर जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है ना। आप यकीन मानिए, आपके सामने मतलब 56 भोग रखा होगा, आपके सामने आपका सबसे मन पसंदीदा सामान रखा होगा, सब कुछ रखा होगा, लेकिन अगर कोई एक चेहरा है ना जिसे आप सुकून पाते हैं, सब आप भूल जाएंगे, उसको केवल ताड़ते रह जाएंगे और कितने घंटे आप बिता देंगे आपको वक्त का पता नहीं चलेगा। फिलहाल ये हमारा तजुर्बा था जो हमने आपसे साझा किया, लेकिन उससे पहले कि कोई हमारे पास में जुड़ा है, देखते हैं आज के हमारे फर्स्ट लकी कॉलर कौन है। हेलो, हाँ भाई, इतना धीमे से आवाज किधर से आई है, किसकी आई है, जरा नाम बताएंगी आप अपना? जी थोड़ा करीब आके प्लीज बोले, बहुत दूर से आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई इसी गाने को दोबारा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉल किसकी आती है हम तक, लेकिन उससे पहले हमारे पास में एक और डिमांड आई हुई थी, चलिए उसको ट्यून कर देते हैं। भाई किसी की खास डिमांड आई हुई है, चलिए आप भी सुनिए हम भी सुनते हैं और देखते हैं कॉल किसकी लगती है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हमें लग रहा है, सेट करते हैं, तब तक आप एंजॉय करिए इस प्यारे से गाने।

0: प्रिया श्रोताओं, तो ये दबंग देसी वाली डिमांड थी हमारे एक प्यारे लिसनर की, वो आप गेस करिए प्लीज चैट बॉक्स वासियों। हम चाहते हैं कि आप बताएं कि ये गाना किसकी डिमांड पे रहा होगा, देसी दबंग कौन हो सकता है आपके बीच में। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे पहले लकी कॉलर कौन बनते हैं। वैसे तुम्हारी साक्षी मिश्रा जी ने चौपाल सागर से कॉल किया था, उसके उपरांत हमने प्रदीप जी की भी कॉल उठाई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई। अभी देखते हैं आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: सांता क्रूज से सब लोग सावंत बोल रहे
0: हैं। ओह माय गॉड, सांता क्रूज से, सांता क्रूज में सांता क्लास मिलता है क्या? सब लोग जी प्लीज बताएं।
1: नहीं नहीं, सांता क्रूज से जो एक जगह का नाम ही है।
0: ओह, वैसे मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा कि मतलब हो सकता है मिल जाए, तो मैंने आपसे पूछ लिया। क्या सुनना चाहेंगे आज हमारे सांवरे बलम जी?
1: सॉन्ग की डिमांड किया जाए।
0: कौन सी सॉन्ग?
1: सॉन्ग है ए दिलासी गाना से।
0: हाँ।
1: है मेरी कॉलेज की लड़की हो, ये मोहब्बत से देखा लड़का।
0: अभी आप कॉलेज जाते हैं?
1: सब समय की बात है, कॉलेज कब का छूट चुका है, 2016 में ही छूटा हुआ है।
0: ओहो, तब से आज तक याद है कि मतलब मोहब्बत से कॉलेज की लड़कियाँ देखती थी आपको?
1: जब घर के तरफ जाते हैं तो याद आ जाता है।
0: हाँ, ये तो है, यादें हैं जो ताजा हो जाया करती। वैसे मेरे से आपसे एक सवाल था।
1: बोला जा।
0: जी, एक अभी जो हमने गाना बजाया था देसी देसी ना बोला कर छोरी है, तो मतलब ये गाने की डिमांड किसकी रही होगी आपके हिसाब से? कोई देसी दबंग है आपके चैट बॉक्स का, आप नाम गेस कर सकते हैं?
1: हमें तो लग रहा है कि नागेश्वर जी ही थे।
0: अच्छा, वो देसी दबंग कब से हो गया? अभी वो बेचारे हंस हंस के गिर जाएंगे, दुबले पतले इंसान है।
1: ओके, तो परवल जी थे क्या?
0: हाँ जी, बड़ा देर लगा दिया गेस के लिए आपको, हमको हिंट देना पड़ा। कोई बात नहीं, चलिए आप अपने गाने को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।

नागेश्वर जी थोड़ा संभल के बोलिएगा, वरना अगर आपको पड़ा तो आप कहाँ जाएंगे मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल मेरे साथ में जुड़े बहुत सारे लिसनर और डिमांड चली हमारे सबलू सावन जी की। प्रबल जी हैं, नीना जी हैं, नेहा जी हैं, नागेश्वर ढाकर जी हैं, कमल नैन जी हैं, RCM से बबलू पांडे जी भटपी से बने हुए हैं, और इसके अलावा आप सभी की लगातार कॉल्स भी आ रही। के गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, और मुस्तफा जी हैं सऊदी अरेबिया से, और इनको पहला गाना काफी पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी पसंद आपको पसंद आई, इसके लिए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: जी दोस्तों, और इसके अलावा सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, और गीता श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में चैट बॉक्स में बनी हुई है। और अब देखते हैं नेक्स्ट लकी कॉलर हमारे बीच में कौन जुड़ गए हैं, गई हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्कार अनुष्का जी, श्रावस्ती का क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है, बारिश वारिश हुई रात में या नहीं?
1: बहुत थोड़ी सी
0: बारिश, मेरे को भी ऐसा ही लगा। पता है, मैं सोची कि चलो नहाते हैं, बारिश में भीगते हैं, जब तक वहाँ गए पता चला छत से गरम गरम भाप निकल रहा है, हम भाग आए नीचे और तब तक बारिश भी बंद हो गई, नीचे आके हमको सुकून मिला। मतलब समझ रही ना क्या कैसी फीलिंग रही होगी?
1: यस मैम, वैसे एक बार तुरंत बारिश आई फिर तुरंत चली।
0: हाँ, और गाँव वाँव में होते तो थोड़ा अच्छा भी लगता, मतलब हवा हवा चलती तो अच्छी वाली फीलिंग आती, यहाँ पे तो तपिश का पूरे पत्थरों ने सोख रखा था गर्मी को, तो वो गर्मी बाहर निकल रही थी, ठंडा कुछ लग ही नहीं रहा था, हवा भी नहीं चल रही थी। बड़ा दुख हुआ कल मुझे, पहली दफा बारिश ने मुझे थोड़ा सा मतलब बुरा फील करा दिया। क्या सुनना,
1: बारिश हुई थी
0: ना, क्या सुनना चाहेंगी?
1: नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान।
0: कै किलो, कै रुपया किलो बिका था गुलाब, तो नहीं बता दिया जब मैं
1: जी हमका तो पता नहीं।
0: अगली दफा जब डिमांड करिएगा पता करके करिएगा, ठीक है?
1: ओके
0: टेक केयर डियर, थैंक यू सो मच भाई। हमारी चीची जी की डिमांड है भाई, हमारी फेवरेट सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग, आइए एंजॉय करते हैं अनुष्का जी की इस डिमांड को। 3 से 4 के सफर में आप सुनने आपके अपनी होस्ट चंदू सार आकांक्षा के साथ में आपका फेवरेट शो कॉलर ट्यून गोंडा। जी इस गाने से पहले हम देखते हैं हमारे पास में फिर से साक्षी जी जुड़ गई, अपनी डिमांड बताएं जल्दी से साक्षी जी।
2: जी मैम, मेरी डिमांड है आज सॉन्ग सुना दीजिए, यार मेरा घोड़ी करके, यार मेरा दूल्हा बने जा, ऐसा कुछ सॉन्ग है, क्योंकि कल मेरी फ्रेंड डॉक्टर से हम साल की शादी है।
0: यार मेरा दूल्हा बन गया, ओके थैंक यू।

फूलों की दुकान पे भाई फूल मिलते हैं 150 रुपए किलो गौरा चौकी में, ऐसा कहना है सुरेंद्र यादव जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। और नीना जी, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था और प्रबल जी ने हमको कॉल किया था। सबसे पहले कॉल उन्हीं की आई हुई थी, उसके बाद में हमने कॉल को कनेक्ट किया, फिर प्रदीप जी की कॉल ली, नहीं आवाज आई, साक्षी जी की कॉल ली, नहीं आवाज आई, दोबारा उन्होंने कॉल किया। अभी चलते साक्षी जी की डिमांड की जो मैं सुनती है चौपाल सागर से, और इनके मित्र की है शादी, इसलिए सुनना चाहती है ये बर्बादी वाला, नहीं शादी वाला सॉन्ग। आई एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

गाना आप एंजॉय कर रहे हैं हमारी साक्षी मिश्रा जी की डिमांड पे। 3 से 4 के सफर में मैं आपके होस्ट चंदू साजी आकांक्षा और शो चला है आपका फोन ही फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा।

0: भाई भाभी के आने की खुशी में पूरा खानदान नाचेगा ऐसा कहना है साक्षी जी का। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ में। हेलो
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताए।
1: नमस्कार मैम, मैं काशी वाले 9 से बात कर रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है, क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: मैम मैं सॉन्ग सुनना चाह रहा हूँ, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: सावन आएगा क्या लगता है आपको? हमको अफसोस हो रहा है सावन क्यों नहीं आ रहा है।
1: आएगा।
0: पता है आपको, हमने सावन के उपलक्ष्य में 3 से 4 एपिसोड बना लिए, पहली किरण के आज तक प्ले नहीं किया। सावन कब आएगा बताइए विकास जी?
1: बहुत जल्दी आएगा, इस महीने के बाद ही आएगा।
0: ऐसा क्या
1: जी?
0: ओके, देखते हैं आप मतलब झूला कब डालते हैं, सावन के महीने में या फिर सावन के बाद?
1: नहीं झूला तो चाहे जब डाल लूं।
0: अच्छा ऐसा भी?
1: अभी तो गाने से सुन के मन को बहलाते हैं और क्या।
0: ओके चलिए फिर आपकी डिमांड को हम कंप्लीट करते हैं। जी
1: एक बात बताए ना।
0: जी जी कहिए।
1: आप जब सोने आती है बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बस आपकी दुआ है, बाकी तो हम दर्द से करा रहे हैं आज पिछले 10-15 दिन से, फिर भी आ रहे हैं, सोच लीजिए आप लोग के लिए आ रहे हैं खाली।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि कल आप नहीं थी, सो तो अच्छा लगा लेकिन वो मजा नहीं आया।
0: ओके आपका बस प्यार है और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आइए एंजॉय करते हैं आपकी डिमांड को, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं फिर हम भी सावन की झूलों की ओर, भाई पेंगी मारेंगे और हम भी झूला डालेंगे इस बार, चाहे खटिया टूट के गिर ही ना जाए। अच्छा पहले जमाने में पूरे गांव की स्त्रियां झूले पे बैठती थी जब गुड़िया का वक्त होता था और झूले टूट जाया करते थे, उसका जो शोरगुल होता था वो याद आ गया मुझे। आइए आप भी उस दौर में चलिए।

भाई विकास जी ने पूछा है, हेलो आकांक्षा मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? और गोंडा में गर्मी का क्या हाल है? भाई हाल बड़ा बेहाल है, मैंने बता ही दिया कि रात का वक्त था, बारिश हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे भट्टी में से आग के गोले निकल रहे हो। जो बारिश हुई थोड़ी बहुत, तो मतलब थोड़ा वक्त लगा ठंडा होने में छत का माहौल, लेकिन हवा भी ना के बराबर ही चल रही थी। धूप तो इतनी तेज है कि मतलब अंडा अगर आपने रख दिया है तो फिर वो ऑमलेट बन के आपके हाथ में होगा। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं और इंतजार करते हैं सावन का।

0: भाई बड़े दिन बाद इस गाने का आनंद उठाया हमने विकास जी की डिमांड पे, और अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, और अगर हम गलत नहीं महाराष्ट्र से आप बात कर रहे हैं। अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: रमेश कुमार महाराष्ट्र।
0: जी रमेश कुमार जी क्या सुनना चाहेंगे?
1: सपने साजन का मूवी से मेरे प्यार में कभी भूला कभी याद किया।
0: ओहो कभी भूला कभी याद किया। वैसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस गर्मी का माहौल आपके उधर कैसा है?
1: गर्मी वैसे गर्मी ज्यादा ही।
0: ओहो आपने भी मतलब बारिश को कभी भूला कभी याद किया?
1: हाँ वैसे ही।
0: या फिर ये बोलेंगे मौसम को कभी कूल कभी हॉट किया, ऐसा है?
1: ऐसा ही है।
0: ओके आइए आपकी डिमांड को एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: ओके थैंक यू।
0: थैंक यू।

0: नहीं नागेश्वर जी, बिल्कुल नहीं फेंका है, यकीन मानिए हाथ के कड़े और ब्रेसलेट तक गर्म हो रहे हैं, इतना अधिक मतलब तेज धूप हो रही है और बारिश के बाद की धूप काफी तगड़ी लगती है, अगर आपने अनुभव किया होगा। सन्नो जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, हमारे साथ में कॉल पे बड़ी देर से, भाई आप सभी की कॉल आ रही है, देख लेते हैं कौन कॉलर है, क्या डिमांड है उनकी। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: जी, नमस्कार, अपना नाम जल्दी से बताएं और जल्दी से अपनी डिमांड बताएं।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं, मयर एमपी से, और गाने के बोल है मस्ती मस्ती।
0: ओके, थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: दोस्तों अलका याग्निक जी और मुकुल अग्रवाल जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड अभी आपने एंजॉय किया भाई। गाना ये मुझे बहुत पसंद है और इसके अलावा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो भी काफी ज्यादा पसंद है और इसकी डिमांड की गई है सुनील कुशवाहा जी के द्वारा। चलिए आप एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, नीना जी ने भाई काले मेघा को समझ लिया है कालम मेढक। मान लिया कि अवधि में मेघा माने मेढक होता है, लेकिन मेढक से नहीं बोलना है, मेघा माने बादल, काले बादलों से बोलना है। काले मेघा पानी तो बरसाओ, फिलहाल वो पानी बरसाते हैं नहीं वो देखने की बात, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय करिए इस गाने को।
1: ओ मेरी जाने मन सुनो दीवानी, बोले ये मेरा मन,
0: क्या गाना है।

है क्या गाना, हर एक गाना ऑसम होता है और क्या वाइब्स क्रिएट करता है भाई। बड़ा ही मजेदार नगमा आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे सुनील कुशवाहा जी की डिमांड पे, मैहर एमपी से। और इसके अलावा शिवाजी है विद्यानगर मोतीगंज से जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और मनी जी है भटपुरवा से, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आरसीएम बबलू पांडे जी भटपी से लिखते हैं, मुझे मालूम है कि कुछ रास्ते कभी मेरी मंजिल तक नहीं जाते हैं, फिर भी मैं चलता हूँ क्योंकि उस राह में कुछ अपनों के घर भी आते। ओहो, क्या मारा है, मजा आ गया।

0: हाँ जी विकास जी, ये गाना बहुत प्यारा है और आकांक्षा मैम को गोविंदा जी के सॉन्ग ही नहीं बल्कि गोविंदा जी ही पसंद है। थैंक यू सो मच। और अभी देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़ गए हैं। टंटनाइन, हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: नमस्कार, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी हाँ अमित जी, क्या सुनना चाहेंगे? हमें लग रहा है कि आज आप कुछ अच्छा ही सुनेंगे क्योंकि कुछ दिनों से आप सैड सैड सॉन्ग सुन रहे थे। कारण हम आपसे नहीं पूछेंगे, बस हम आपसे चाहेंगे कि कुछ अच्छा सा सुनवा दें। कट्टो की लहरी सुनेंगे? अरे बाप रे, अच्छा बोलो तो आप हमें कट्टो की लहरी सुनाएंगे। मतलब नहीं, एक सवाल था इस गाने के को लेकर के, क्या गिलहरियां काटती हैं? अगर काटती नहीं तो कट्टू गिलहरी नाम क्यों पड़ा है?
1: पता नहीं काटती हैं कि नहीं काटती हैं, हमको तो जरूर काटती हैं।
0: ओहो, कब काटा था, कितनी गहराई तक काटा था ये भी बताइए।
1: मेरे दरवाजे पे दो पेड़ लगा है, उससे रहती हैं।
0: ओके, मैंने तो एक दफा जब उनको पकड़ने की कोशिश की थी उनका पूंछ ही निकल गया था। फिर हमसे कहा गया सोने का पूंछ बनवाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन पीछे जब मैंने हाथ में लिया और उसको देखा तो उसके दूसरा पूंछ पहले से ही था। मैं बनवा के क्या करती। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा याद आ गया हमको जी हमारा बचपन। और चलते हैं अब अमित कुमार जी की इस प्यारी सी डिमांड की ओर।

0: दोस्तों, तो ये प्यारी सी डिमांड थी हमारे अमित कुमार जी की, और थोड़ा बहुत मजाक करने की मेरी आदत हमेशा से रही है। मैं हंसती खेलती बच्ची हूँ, चाहती हूँ आप सभी भी हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। सुनते रहे रेडियो 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन। लेकिन उससे पहले सुनते हैं नेक्स्ट लिसनर की कॉल। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून डियर, अपना नाम बताएं प्लीज।
1: जिक्रा।
0: जिक्रा जी हमारे साथ में बनी हुई है, कहाँ से सुनती हैं आप हमें जिक्रा जी?
1: कटारिया मोहल्ले।
0: ओके, क्या सुनना चाहेंगी आज?
1: इश्का वे
0: छटिया। इश्का वे छटिया, ऐसे?
1: यस मैम।
0: ओके, थैंक यू सो मच। बस बस ऐसे ही हैं। पता नहीं क्यों, हम पता है जब शो करने आते हैं हमारी सारी बीमारी, सारा दर्द, सारा दुख दूर हो जाता है, हम बड़ा खुश फील करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आई एंजॉय करते हैं आपकी डिमांड को। थैंक यू। चलिए चलते हैं जिक्रा जी की इस प्यारी सी डिमांड की ओर।

0: हाँ जी, और जिक्रा जी के बाद में अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलर की ओर, लेकिन उससे पहले बता दे कि कॉल पे कौन है।
1: हेलो
0: हेलो हेलो हेलो
1: जी, नमस्कार, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी।
0: जी नमस्कार, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी वाले क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैडम लिंक भेज दिया तुम्हारी नजरों में हमने देखा
0: जी। वैसे कितनी दूर से देखा था, 2-4 इंची दूर से या 2 गज दूरी से? कितनी दूरी से देखा था?
1: कम से कम 5 मीटर की दूरी से मैडम।
0: दिख गया था
1: जी।
0: आपके चश्मे में कौन सा लेंस है? मैं वही लगवाऊंगी अपने चश्मे।
1: चश्मा नहीं लगाते मैडम, चश्मा नहीं लगाते हैं।
0: ओह माय गॉड, क्या खाते हैं आप? मतलब गाजर खाते, टमाटर खाते, चुकंदर खाते, आंख की रोशनी कैसे है इतनी अच्छी?
1: तो शाकाहारी है।
0: अच्छा, शुद्ध शाकाहारी है तो क्या खाते हैं जनाब? वही तो जानना चाहते भाई, रोशनी इतनी अच्छी कैसे है?
1: शाकाहारी भोजन खाते हैं
0: जी,
1: गाजर मूली चुकंदर इसमें है सब।
0: ठीक है, अब हम भी यही खाएंगे, गाजर मूली चुकंदर। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए श्रोताओं, चलते हैं सुरेंद्र यादव जी की स्पाइसी डिमांड की ओर।

0: हाँ जी, और देखते हैं लगातार काफी कॉल्स आ रही हैं, तो ले लेते हैं कौन हमारे साथ है कॉल पे। हेलो,
1: नमस्कार मैडम
0: जी, क्या सुनेंगे रही साहब?
1: मुझे सुनना है, मुझे तो मेरी लत लग गई
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अभी बजाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं। हेलो,
2: आवाज़ नहीं आ रहा नाम।

जी हाँ, बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया 90s हिट्स में से एक हमारे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड पे गौरा चौकी से। गौरा चौकी सुनने वाले सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आसिफ खान जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं मुंबई से, और इनको भी ये नगमा काफी पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक के लिए। और अब चलेंगे हम अपने रई साहब की डिमांड की ओर, लेकिन ये गाना मुझे याद आया कि हमारी कभी मंगू जी ने हमको डेडिकेट किया था। आहा, चलिए चंगू मंगू की जोड़ी को डेडिकेट करते हैं प्यारा सा नगमा, और फिर आते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ।

0: नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, जल्दी से अपना नाम बताएं, अपनी डिमांड बताएं।
1: जी मनी शर्मा बोल रहे हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या सुनेंगे?
1: आते आते आते तेरी याद आ गई।
0: ओहो, जाते जाते जाते
1: मुझे नेहा याद आ गई।
0: अरे चलिए, आप मिल लीजिए चैट बॉक्स में जाके, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: लत बहुत प्यारी होती है, अगर खास करके वो दोस्ती वाली लत तो लगवा लीजिएगा भाई। हर एक गलत समय पर हर आप जब भी इधर उधर लड़खड़ा रहे होंगे, बिगड़ रहे होंगे, गिर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, पड़ रहे होंगे, तब आपके दोस्त आपको संभालने को खड़े होंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। डिमांड हमारे पास में आई हुई है मनीष शर्मा जी की भटपुरा से, और उससे पहले हम लेंगे एक और कॉल। भाई काफी देर से इनकी कॉल आ रही है, देख लेते हैं कि ये कॉल पे हमसे कहता क्या चाहती है, क्या चाहते हैं। हेलो
1: Hello.
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम जल्दी से बताएं। जी गुड आफ्टरनून, अपना नाम जल्दी से बताएं, अपनी डिमांड भी प्लीज।
1: मेरा नाम समरीन।
0: जी समरीन जी, क्या सुनना चाहेंगी?
1: तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी।
0: तेरी मेरी कहानी बारिशों का पानी, नाव खेंगे हम बैठ के ऐसे करके कुछ। ओके आप एंजॉय करिए, मेरी आदत है मजाक करने की। थैंक यू सो मच।

हाँ जी श्रोताओं, घड़ी में हो गए हैं 3:47 और अब हम चलेंगे समरीन जी की डिमांड की ओर। अभी भी हम एक दो कॉल लेंगे, तो अगर आपको कॉल करना हो तो कॉल कर लीजिए 6933316429 पर। तब तक सुनते हैं समरीन जी की प्यारी सी डिमांड को ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आपका ये प्यारा सा नगमा आप एंजॉय कर रहे हैं आपके अपने शो कॉलर इन गोंडा के साथ में। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं, अपनी डिमांड बताएं।
1: हाँ मैम, गाना सुनना राज फिल्म का, आपके प्यार में हम संवरने लगे।
0: अपना नाम बता दे सर।
1: आरसीएम बबलू पांडे भट्टी से।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।

शर्मा जी फ्रॉम सैदापुर, सैदापुर से मंगाया, डीजे नहीं मंगाया था, गाना मंगाया था, याद आया मुझे, एक दफा इन्होंने प्यारा सा गाना बजवाया था। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये आई हुई हमारे पास में बबलू जी की ओर से फ्रॉम बटपी। चलिए सुनते इस प्यारी सी डिमांड को। और भाई इनका नाम प्रदीप कुमार लिख के आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि बबलू जी हैं। ओके, इसलिए मैंने एक दफा ना थोड़े से सदमे में चल गई, वाकई बबलू जी हैं। हाँ, बबलू जी ही थे। चलिए एंजॉय करते हैं इनकी इस प्यारी सी डिमांड को, और इसके बाद अगर किसी की कॉल आई तो मैं रिसीव करूंगी, अदरवाइज मैं एक डिमांड लूंगी मुस्तफा जी की सऊदी अरेबिया से, और उसके बाद में देखते हैं किसकी कॉल आती है। 6393316429 नंबर, वही आपका अपना स्टूडियो वाला।

वैसे ही गाना सुन के हमें अजय मिश्रा जी की याद आ गई भाई, वो अक्सर इस डिमांड को करते हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और एक कॉल आई थी हम तक और जनाब ने डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। और उससे पहले लवकुश जी शायद थे कोई, उन्होंने भी कॉल किया था, और अगर आप कॉल करेंगे तो मैं लास्ट डिमांड ज़रूर लूँगी किसी ना किसी की, वो आप के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल हम लेते हैं नेक्स्ट डिमांड हमारे मुस्तफ़ा जी की फ्रॉम सऊदी अरेबिया। गाना बड़ा ही प्यारा है, वैसे मुझे भी याद आता है कभी कभी कि कोई कंडा ले आए तो हम भौरी बना ले, कोई बात नहीं।

0: जी हाँ श्रोताओं, और देखते हैं अनिल वर्मा जी की कॉल आ गई है हमारे पास में, इनकी डिमांड क्या है। हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार
0: नमस्कार, क्या सुनना चाहेंगे अनिल वर्मा जी?
1: एक गाना दिलवाले मूवी का है।
0: कौन सा?
1: कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँख।
0: ओहो, थैंक यू सो मच।

0: क्या? क्या बोलती तू?
1: भाई इस गाने के आगे तो हम अनिल जी का सॉन्ग ही भूल गए. अनिल जी प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में ताकि हम प्ले कर सके आपकी डिमांड को पुनः से. वैसे प्यारा चेहरा इतना याद है लेकिन किसका चेहरा क्या था मैं भूल गई. गाना बड़ा अच्छा है. और चलिए फिलहाल खंडाला से कंडा लाने की कोशिश करेंगे. उपले बनाएंगे भौरी के लिए. नहीं नहीं उपले नहीं बनाएंगे भाई, उपले में आग लगाएंगे, आग तैयार करेंगे तब भौरी बनती है. दिमाग खराब हो गया मेरा भौरी के नाम से. हाँ जी अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी डिमांड को आप चैट बॉक्स तक पहुंचाएं.

मेरे भी बोलने का वक्त हो रहा है समाप्त। समय समाप्ति की घोषणा करते हैं हम आपके अपने शो से, यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा से। आप शो सुन रहे थे कॉलर ट्यून गोंडा और कमल नयन जी ने भाई बता दिया दिलवाले मूवी का कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता जाम कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत में मेरे यार। और इस यार वाले सॉन्ग को हम प्ले करके जा रहे हैं आप सभी के बीच में। आज का शो काफी अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छे अच्छे प्यार प्यार डिमांड्स थे और लास्ट डिमांड तो भाई क्या ही कहना। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और चलते हैं अब आज के शो से, लेते हैं विदा आप सभी से। मिलते हैं कल आपके शो अपने हम्टी डम्टी विद गीता दीदी में। जी हाँ, कल हम रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो गाना सिटी 91.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर डियर लिसनर्स, अपना अपना बहुत ज्यादा वाला ख्याल रखिएगा। बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चे

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपके होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। भाई शाम का वक्त है और आपका अपना पसंदीदा शो गोधुली स्टार्ट हो गया है। हम सभी को पता है कि गोधुली में हर रोज इस FM पर आखिर कोई ना कोई नए मेहमान इंटरव्यू में मौजूद होते हैं। सो आज किन के साथ गुफ्तगू है, आज किन से हमें बात करनी है, वो तो हम बताने वाले, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि शायद आज सारे ही विषयों में से सबसे अहम विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। विषय भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने एक्सपर्ट का परिचय तो आपसे करा दें। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप पांडे, नोडल ऑफिसर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेडिकल कॉलेज गोंडा। स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं।
2: सबसे पहले नमस्कार गोंडा वासियों के लिए, और पिछले 3 सालों में जो अतुलनीय योगदान और अतुलनीय सम्मान और मुझे कार्य करने का जो मौका दिया गोंडा में, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ सभी गोंडावासियों का और शासन का भी।
1: एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। और चूंकि अपने श्रोताओं से हम बता दें कि आज का विषय क्या है, विषय सुन के हो सकता है कि थोड़ा सा चौंक जाएंगे सर लोग, क्योंकि मैंने बताया कि भाई आप नोडल ऑफिसर हैं एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट है मेडिकल कॉलेज गोंडा के, लेकिन हमारा विषय आज जो है वो है एडुकेशन, वो भी बेसिक वाली। वजह हम कैसे बताएं, वजह हमारे एक्सपर्ट खुद बताने वाले हैं कि आखिर वो इतना क्यों इंटरेस्टेड हुए इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो आज हमने जो विषय लिया है वो है बेसिक एजुकेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे एक्सपर्ट अपना परिचय दे दे, अपने परिचय में बता दे कि कहां से ताल्लुक रखते हैं, उनकी फैमिली कहां पे है, और यहां तक का उनका सफर कैसा रहा है, छोटे से ब्रीफ में।
2: मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं प्रोफेशन वाइज एक डॉक्टर हूं, और मैंने MBBS, MD फिजिशियन और MD फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ाई कर रखी है, और पढ़ाई करने के बाद मुझे पढ़ना पढ़ाना ये मेरे सबसे रुचिकर सब्जेक्ट में से है, और आज मैं मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पहले भी पढ़ाता रहा हूँ, और गोंडा में भी मुझे पढ़ाने का अवसर सरकार ने प्रदान किया है, और आज हमारे गोंडा मेडिकल कॉलेज में, जो कि ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गोंडा है, वहाँ गोंडा और आसपास के और पूरे भारत से आए हुए चुने हुए मेधावी 100 छात्र जो हमारे यहाँ MBBS में पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने का हमें मौका मिला है। मेरा परिचय यही है कि मैंने एक आम परिवार से पढ़ाई लिखाई, GIC गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके, और एक सोच बनाई थी मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा प्रशस्तीय मार्ग दिया था कि मैं MBBS करूं, डॉक्टर बनूं, और MBBS के बाद मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था कि MD हो जाएगा, MD के बाद मैं फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी का एक्सपर्ट बनूंगा, और मुझे इस उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टरों को पढ़ाने का मौका मिलेगा और मुझे एक मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सब मुझे मौका दिया हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, और मैंने बखूबी जो भी मैं गोंडा में आके कर सकता था मैंने पूरा योगदान दिया, और अपने सभी साथियों के साथ जो मेरे मेडिकल कॉलेज में मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सहभागी हैं, सभी के साथ काम करके आज हमारा गोंडा मेडिकल कॉलेज आज एक NMC रिकॉग्नाइज परमिटेड मेडिकल कॉलेज बन के उभरा, और 100 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत ही शानदार सलीके से आपने अपना परिचय दिया, साथ ही बताया कि आप एक साधारण फैमिली से निकले और उसके बाद आज इस मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की जो जिम्मेवारी है वो आपके कंधों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सौंपी, जिसको आप बखूबी यहाँ पे पिछले 3 साल से कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई सभी की अपनी सरजमी होती है, आपकी जन्मभूमि कौन सी है?
2: जन्मभूमि के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरी जन्मभूमि भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में आता है
1: जी।
2: मैं चित्रकूट में मऊ कस्बा है उसके पास भिटारी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री अल्प नारायण पांडे, जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत थे, और हमेशा उन्होंने मुझे जो भी बेहतर व्यवस्था दे सकते थे, अपने से भी बेहतर, जो उन्होंने भी नहीं पाया वो मुझे दिया। एक श्रेष्ठ पिता की जो भूमिकाएं होती हैं वो सारी उन्होंने मुझे दी। कहना चाहूंगा कि मेरी माँ ने अपना पूरा जीवन केवल, आज भी वो मार्केट में जाने में सक्षम नहीं है अकेले, इस 21वीं सदी में भी उस माँ ने अपने तीनों बच्चों को, दो बच्चों को डॉक्टर बनाया, एक बच्चे को प्रोफेसर बनाया। तो इस तरह से मेरी माँ राममणि पांडे, जो कि इलाहाबाद में समय रहती हैं और मेरे पास भी आती रहती हैं, तो इस तरह से तीन भाई हैं हम लोग। माता पिता, पिता का इंतकाल अभी 2022 में हो गया है
1: जी।
2: और दो मेरे बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। पत्नी मेरी डेंटल सर्जन है। और मेरे अगर ससुराल पर से कहूँ तो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर हैं। उनसे भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने का मौका मिला, और वो भी मेरे एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा एक पिता तुल्य भूमिकाएं उन्होंने मेरे जीवन में अदा की।
1: क्या बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि भाई आपके ससुर यानी कि आपके फादर इन लॉ जो है, उन्होंने एक पिता की भूमिका हमेशा आपकी जिंदगी में निभाई है, और आपके प्रोफेशन में भी आपको उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा चूंकि आपके इस परिचय को जान करके। आज दोस्तों हमने जो विषय लिया है वो लिया है बेसिक एजुकेशन, और ये विषय लेने के पीछे आपके आरजे अतनार की कोई मर्जी नहीं थी, बल्कि हमारे एक्सपर्ट ने इस बात को सजेस्ट किया कि क्यों ना शुरुआत बातचीत की एक ऐसी बात से, एक ऐसे मुद्दे से उठाई जाए जो सभी समस्याओं का निवारण बन सकता है, जहां अगर काम किया जाए तो सूरत और समाज दोनों बदल सकता है। तो आइए उस अहम विषय को लेकर के चलते हैं, अपने एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। सो चुकी आपने ही हमको सजेस्ट किया था कि इस बात को उठाया जाए कि किस तरह से एजुकेशन, जो एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है हर किसी की जिंदगी में, उस पे बातचीत किया जाए। उसमें भी आपने ये बताया कि कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन सबसे पहले आती है, क्योंकि बच्चा वहीं से शुरुआत करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम बेसिक एजुकेशन से क्या मायने निकालें और किस तरह से आप बेसिक एजुकेशन को देखते हैं।
2: अगर हम किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी विद्यार्थी के शिक्षा एजुकेशन के शुरुआत के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है सरकार ने जो भी एजुकेशन का क्राइटेरिया बनाया है और जो भी सब्जेक्ट्स की बुक्स और जो भी एजुकेशन शिक्षा सामग्री, जिसको कहेंगे स्कूल की भाषा में, बेसिक्स में विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में खासकर अगर हम बात करेंगे, तो उसमें कहीं भी क्वालिटी में कमी मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। अगर जहाँ पे और उसको इम्प्रूव्ड करने की बात अगर कहेंगे, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन और इम्प्रूव्ड हो और बढ़िया हो, तो उसमें एक ही चीज़ पे जोर देना है, चाहे वो बेसिक हो या फिर सरकार के केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो या किसी भी सरकारी सैनिक स्कूल संस्थान की बात करेंगे, प्राइवेट की भी बात करेंगे, उसमें जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे टीचर हैं, वो उन कच्चे घड़ों को पकाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा राइटिंग और वोकल, लिखवाने पे और बुलवाने पे स्कूलों में ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, जैसा पहले होता था। केवल सिटिंग कम्प्रिहेंशन इज नॉट द क्वालिटी एजुकेशन। बच्चे गए स्कूल में, बैठे रहे, थोड़ा बहुत लिख लिया, उसके बाद इंटरवल हो गया और छुट्टी का इंतजार। मैं ये नहीं करता कि हर जगह पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं कहूँगा कि हर जगह अगर 30 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, तो उसमें बच्चों से अधिक क्लास में ही लिखवाया जाए, उनकी कॉपियाँ क्लास में ही चेक की जाएं, जिन बच्चों के हाथ नहीं चलते उनको हाथ पकड़ के लिखवाया जाए, जिन बच्चों के मुंह से आवाज नहीं आती उनसे क्लास में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बुलवाया जाए, ए फॉर एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, एनीथिंग फ्रॉम बेसिक टू हायर। क्लास से ही बच्चा बोलना सीखेगा, क्लास से ही बच्चा लिखना सीखेगा। वाई ट्यूशन क्लासेस, वाई आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ स्कूल? अगर हम पढ़ाने आए हैं तो बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चे पढ़ने आए हैं तो वो पढ़ें। Exactly. दो चीजों पे केवल मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कि हाँ भाई लिखवाइए और क्लास में बुलवाइए।
1: ओके, तो आपने दो चीज अहम बताई है, एक तो लिखवाना है, एक वोकल यानी पढ़ाना है। इसके पीछे आपका कोई रीजन होगा ये कहने का, तो मैं चाहूंगा कि श्रोताओं तक आप बताइए कि इसकी क्यों इतने ज्यादा आपने जोर देकर इन दो पॉइंट्स पे बात कही।
2: मैंने जब अपने शिक्षा जगत में पढ़ने की शुरुआत की तो मुझे बचपन के दिन याद आते हैं कि जब मैं पहली बार स्कूल गया तो स्कूल में एक हमारे सीनियर थे जो 6th-7th क्लास में पढ़ते थे, वो प्रेयर में आके बोलते थे बॉडी पार्ट्स, फ्रूट्स नेम, हमारे जनरल नॉलेज की बातें
1: जी जी,
2: कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हमारे बॉडी पार्ट्स। अगर जिस दिन प्रेयर में बुलवाया जा रहा है तो वो बोलता था हेड माने स्कल, बेहेड माने सिर, स्कल माने खोपड़ी, आई माने आंख, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा मतलब है कि उस समय जब मैंने ये देखा ना, रोज में जब प्रेयर में आधा घंटा वहां खड़ा रहता, सबसे पहले तो खड़ा होने के बाद पैर मजबूत हो जाते थे, दूसरा जब बोलता था हेयर माने बाल, स्कल माने खोपड़ी, आई माने ई बाई ई आई, आई माने आंख, तो सभी बच्चे बोलते थे। देखते देखते मुझे पता ही नहीं लगा कब मुझे बॉडी पार्ट्स आने लगे। और जब 8th क्लास के बाद 9th, 10th, 11th, 12th सब हो गया और जब मैं MBBS के पायदान में आया तो मुझे ध्यान आया यार प्राइमरी में जब पढ़ते थे तो वहां पे इसी तरह बॉडी पार्ट्स बुलवाते थे। आज वो एब्डोमेन माने पेट, स्टोमक माने पेट, बेली माने क्या था, चेस्ट माने क्या था, वो मुझे उस समय का बिना जो मेहनत की है मुझे आ गया था, वो मुझे याद आता था
1: जी।
2: तो मेरा कहने का मतलब है अगर वो क्लास में बुलवाया नहीं जाता तो घर पे मुझे रट्टे मरवाते। तो इसलिए वो खेल खेल में कुछ चीजें बोलने से लिखने से अपने आप आ जाती। तो इसलिए क्लासों में स्कूलों में बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्यूशन के भरोसे बच्चे सीखेंगे। चलिए जिनके पास पैसे हैं वो ट्यूशन में चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास कम पैसे हैं, जिनके माता पिता कम कमाते हैं, उनको भी तो हमें वही क्वालिटी एजुकेशन देने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो नैतिक जिम्मेदारी एक धनाढ्य वर्ग के बच्चों को ट्यूशन में अलग से सीखने में मिलती है
1: जी।
2: तो मुझे लगता है अगर खाने का पायदान एक है और भगवान ने सबको रोटी दाल सब्जी दिया है तो ये पढ़ने का पायदान भी एक ही होना चाहिए।
1: क्या बात है,
2: हमें सभी को एक भाव में पढ़ाना चाहिए
1: जी।
2: बच्चों के अंदर कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं अमीर घर से हूँ, मैं गरीब घर से हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद सब एक भाव में होने चाहिए कि पढ़ेंगे हम सब एक।
1: मुझे लगता है ये ड्रेस कल्चर यही बताता है, ड्रेस इसीलिए कॉमन रखा जाता है स्कूल का कि हर बच्चा एक जैसा महसूस करे।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: एग्जैक्टली। हालांकि अभी आपने बताया कि बच्चों को पढ़ाया जाए, आपने एग्जाम्पल दिया एप्पल, बॉय, कैट का। कई बार कई लोग सवाल उठाते हैं, हमने कई बॉलीवुड मूवीज देखी है जिसमें बताया जाता है कि बच्चे जो हैं वो इमेजिनेशन बहुत करते हैं, तो उनको उनकी इमेजिनेशन को जितना पंख लगाया जाए वो उतना आगे जाते हैं। एक कहते हैं रटाने वाला, एक होता है कि नहीं बच्चा खुद से सोचे। इनोवेशन की बात की जाती है।

0: और जब MBBS में गया, फर्स्ट क्लास में सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा था और इंग्लिश में आधी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, उस समय मैंने शाम को फादर को फ़ोन किया, पापा को कहा, पापा यार फंस गए हैं यार, यहाँ तो बड़ा कठिन है, कैसे होगा?
1: एग्जैक्टली
0: पापा ने दर्द भरी आवाज़, बेटा डिग्री लेके आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नींद नहीं आई, लगा कि पापा को काफ़ी कष्ट है। किताबें उठाई, टेबल वेबल छोड़ी और बेड पे ही रख ली। ठंड के दिन थे
1: जी,
0: और एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता था, पढ़ने लगा, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपको बताऊं, अगले दिन मुझे फेशियल मसल के बारे में बताना था
1: जी
0: क्लास में। उस दिन मैंने जितने फेशियल मसल थे हनुमान चालीसा की तरह सब रट डाले।
1: ओके।
0: और जब मैं क्लास में पहुंचा तो हमारे प्रोफेसर ने कहा, ओके डॉक्टर कुलदीप, टुडे यू आर द वॉलंटियर, यू विल टेल मी फर्स्ट। और मैंने जब बोलना शुरू किया तो चूंकि मैं रट के आया था
1: जी,
0: तो मुझे डर था कहीं बीच से पूछ लिया तो कहीं सब गायब ना हो जाए।
1: गायब ना हो जाए, एग्जैक्टली।
0: और मैंने उस हनुमान चालीसा की तरह फेशियल मसल बोलना शुरू किए और बोलता गया बोलता गया बोलता गया। उन्होंने कहा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
1: ओके।
0: अब आपको बताऊं, मुझे एक आइडिया मिल गया कि यार अगले सब बच्चों ने भी बड़ा क्लैपिंग किया और मुझे लगा कि मैं आज क्लास में सबसे जीनियस स्टूडेंट हूँ।
1: एग्जैक्टली।
0: धीरे धीरे मैं रटने लगा और रटते रटते मुझे आने लगा, समझ में भी आने लगा।
1: ओके।
0: तो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, समझना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब आदमी रटने लगता है, जब स्टूडेंट रटने लगता है तो उसको आने भी लगता है और वो चीजें समझ में भी आने लगती हैं। यह हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है कि गांव में बहुत सारे लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और धीरे धीरे उनको उसका पूरा संवाद आने लगता है, उसका अर्थ भी आने लगता है। यहाँ तक कि हमारे जो बूढ़ी माताएं हैं आपको अच्छी तरह से उन चीजों का मतलब काफी बेहतर तरीके से बता सकती हैं। संस्कृत जिनको नहीं आती है वो भी उसका अर्थ बताने लगते। तो रटना और समझना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मेरी भाषा में। अगर कोई रटने लगता है तो धीरे धीरे वो समझ में भी आने लगता।
1: तो आपके कहने का सेंस ये है कि इसको ऐसे बोला जाए कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान,
0: रसरी आवत जाते सिल पे पड़त।
1: क्या बात है, बस वही बात है कि आपके कहने का सेंस ये है कि अगर बार बार बच्चे को प्रैक्टिस कराया जाएगा तो वो रटने के साथ साथ उसको समझ भी आने लग जाता है। अच्छा, एक चीज देखा है डॉक्टर साहब की साइकोलॉजी ही होती है, हमको भी ये बताया जाता है कि जब आप कोई नई आदत डाल रहे होते हैं तो दिमाग पहले तो मना करता है क्योंकि आपने अभी तक उसको किया ही नहीं है, वो पाथ आपके जहन में क्रिएट ही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी क्या सेम साइकोलॉजी काम करती है कि बच्चों को जब कोई नई चीज देते हैं तो वो डर जाते हैं और इसीलिए आपका शायद मानना है कि जितनी बार उनको दिया जाएगा वो डर निकलेगा, वो चीज उनके फिर दिमाग में बैठेगी।
0: मुझे लगता है ये जो डर देना ये सब विषय एजुकेशन में होने ही नहीं चाहिए, शिक्षा में डर
1: जी
0: नहीं। शिक्षा तो एक हिस्टोरी है, बस उसको समझना है और उसको अपने रग रग में उतारना है। हर लेसन को एक कहानी की तरह आप पढ़ाइए। मेरे प्रिय बंधुओं, अध्यापक बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हर चैप्टर को एक कहानी बना डालिए, बच्चों को ऐसे सुनाइए कि वो एक कहानी सुन रहे हैं, उसके बाद उसमें रस डालिए। ये भी एक कला है शिक्षा की। और जैसे जैसे उसमें रस डालते जाएंगे बच्चे मदहोश होते जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे अचानक घर पे जाके पूछेंगे कि हाँ वो मुथुलाल के सपने जो कहानी सुनाई थी मुझे मेरे टीचर ने, उसमें मुथु पेड़ के नीचे बैठ के सपने मम्मी देख रहा था, पापा देख रहा था, और अचानक से उसके सारे आंसर उसको आने लगेंगे। क्यों? उसको एक स्टोरी की तरह सुनाया जाए। मुझे फिर मैं अपनी लाइफ पे आ जाता हूँ, सॉरी फॉर ऑडियंस, मैं बोर कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन फिर आता हूँ। मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, केमिस्ट्री की क्लासेस थी, पीएन वाजपेयी साहब प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल, केमिस्ट्री के टीचर थे, घर पे पढ़ने जाते थे, पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और वो हमेशा कहते थे कि यू विल सिट इन माई क्लास एंड स्टिल वन वर्ड यू विल नॉट राइट इन योर बुक और कॉपी, यू विल राइट इन योर माइंड। और हमको लिखने नहीं देते थे शुरू में, हमको बड़ा खराब लगता था, घर पे जाके हम पढ़ेंगे क्या?
1: एग्जैक्टली।
0: और जब हम घर जाते थे ना तो हमको सब कुछ याद होता था जितना वो पढ़ाते थे, लाइक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉन एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद आता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय।

0: अभिक्रिया वगैरह वगैरह। तो जो भी मुझे पढ़ाते थे, जो पढ़ाते थे वो याद रहता था। वो इस तरह से पढ़ाते थे क्लास में कि आज भी मैं उनको याद करता हूँ। ईश्वर उनको दीर्घायु करे। मुझे नहीं मालूम वो इलाहाबाद में इस समय महाकुंभ में हैं या नहीं हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर महाकुंभ के बाद उनसे मिलने जाऊँगा। आज मुझे उनकी याद आई। तो पढ़ना जो है वो एक पढ़ना भी कला है और पढ़ाना भी कला है। और इसको बढ़िया बढ़िया कलाकृतियों से, बढ़िया बढ़िया विचारों से, आइडियों से टीचर को पढ़ाना आना चाहिए, सीखना चाहिए और पढ़ाना चाहिए।
1: एग्जैक्टली सही कहा आपने कि पढ़ना भी एक कला और पढ़ाना भी एक कला है। फिलहाल चूंकि बड़े ही अहम मोड़ पर पहुंची है हमारी बातचीत, आने के बाद हम ये सोचेंगे, क्योंकि भाई आपने पहले ही हमारे एक्सपर्ट ने बोला कि सरकारी स्कूल के अकॉर्डिंग यानी वो जो कुछ भी बनाते हैं करिकुलम वो परफेक्ट होता है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि लोग सरकारी स्कूल से दूर भागते हैं? क्या अजम्पशन है? कहाँ पे गैप है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आ पा रही है? इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लेंगे छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए गोंडावाला एफएम रेडियो 11.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: एक बार वापस से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने स्पेशल शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ, हमने जैसा कि बताया, बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। भाई हमारे मेडिकल कॉलेज गोंडा के नोडल ऑफिसर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर कुलदीप पांडे, एक बार वापस से आपका हम स्वागत करते हैं। और चूंकि श्रोताओं, हमने जाने से पहले आपसे कहा था कि आने के बाद डॉक्टर साहब से हम ये प्रश्न करने वाले हैं कि आखिर हम जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा अहम है, और आपने पहले ही बताया कि भाई सरकारी स्कूल्स में जो भी करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही सोच समझ करके बनाए गए हैं और बहुत ही बड़े विद्वानों के जरिए बनाए गए हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी इमेज क्यों है कि हम प्राइवेट की तरफ जाते हैं? हमको आखिर ऐसे कौन से गैप्स मिलते हैं जो समुदाय और सरकारी स्कूलों के बीच में हैं? सर,
0: इसके बारे में एक ही चीज कहना चाहेंगे कि यह जो प्राइवेट और सरकारी का जो एक डिफरेंस है, यह कहीं ना कहीं हमें एक कॉलोनी को दर्शाता है। कॉलोनी जैसे ब्रिटिश कॉलोनी। यस,
1: ये कैसी कॉलोनी है?
0: अंग्रेजों के जमाने में जब बोलते थे अरे ब्रिटिश आ रहे हैं, तो लोगों के दिमागों में आ जाता था कि कुछ बढ़िया आ रहा है।
1: ओके।
0: भले हम उनके गुलाम थे, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि अरे यार, अंग्रेज, इंग्लैंड। मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस जमाने में इंग्लैंड पढ़ने भी जाते थे।
1: जी, बेशक।
0: हमारी बेहतर संस्कृति, बेहतर व्यवस्था, बेहतर हमारे वेद शास्त्र होने के बावजूद भी उस पर जैसे विमानों की हम खोज करने वाले लोग, लेकिन हमारे दिमाग में बिठाल दिया गया था कि कॉलोनी। तो मुझे लगता है कि सरकारी शिक्षा या फिर प्राइवेट शिक्षा इसको कहीं ना कहीं हमारे अंदर घर कर गया है कि हम सरकारी शिक्षा में हैं तो हमारा बच्चा एक बेहतर माहौल में नहीं जाएगा, प्राइवेट शिक्षा में है तो एक बेहतर माहौल में जाएगा
1: जी।
0: एक विषय, एक व्यक्ति विशेष सोच बन गई है, मेरा बेटा सेंट जेवियर मुंबई में पढ़ेगा तो वहां पे बहुत बढ़िया माहौल होगा, सेंट फ्रांसिस में पढ़े, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है नाम लेना, मेरा बेटा भी कहीं अच्छी जगह पढ़ता, सेंट फ्रांसिस में भी पढ़ता था, आज मैं गोंडा में हूँ तो गोंडा में मेरा बेटा पढ़ता है। लेकिन मैंने ये सोच को एज ए गार्जियन महसूस किया है कि माओं की भी इच्छा होती है कि हमारा बेटा किसी बेहतर कॉलोनी के स्कूल में ही पढ़े
1: जी।
0: कॉलोनी मतलब एक वर्ग। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें इस सोच को बदला जाए कि लोगों के दिमाग में आए कि नहीं, सरकारी संस्थानों में मेरा बच्चा जाएगा तो बेहतर पढ़ेगा। आप देख लीजिए हायर एजुकेशन पे जब आते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो सरकारी में ही एडमिशन चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए तो एमबीबीएस की सरकारी सीट चाहिए।
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
0: फिर नहीं कहते हैं हाँ मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, मजबूरी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाते हैं।
1: और नौकरी भी चाहिए तो सरकारी चाहिए।
0: और नौकरी भी चाहिए तो सरकारी चाहिए लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो उसमें कॉलोनी बांट दी जाती है कि अमीरों के बच्चे फलाना स्कूल में, बढ़िया वाला जो एकदम गेट जिसका बिल्कुल चमचमाता हुआ हो, जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा
1: इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत
0: धनाढ्य बच्चे पढ़ते हों, खुल के बोलता हूँ
1: जी,
0: है ना। क्यों शिक्षा में बच्चों के साथ मतभेद क्यों, गरीबी अमीरी क्यों, दोनों बच्चे साथ में पढ़ने चाहिए, दोनों बच्चों को साथ में एक जैसी शिक्षा प्रणाली में पढ़ाना चाहिए। और आने के बाद जब हायर एजुकेशन में आपको सरकारी संस्थान अच्छे लगते हैं तो लोअर एजुकेशन में बेहतर से बेहतर जब कोर्स दिया गया है उसमें और सुविधाएं और व्यवस्थाएं जो मैंने बीच बीच में बोली उनको बढ़ाया जाए, एक्सपर्ट ऐसे रखे जाएं जिनको एक्सपर्टीज देने में अच्छा लगता हो, एंजॉय मोमेंट उनके लिए हो, ऐसे लोगों को ना रखा जाएगी नौकरी में। अगर मान लीजिए मीटिंग बुला ली गई तो उनके लिए सर दर्द हो गया, उसी सरकारी नौकरी के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, जब सरकारी नौकरी करने का समय आता है तो उसमें भगोड़ा घोषित होते हैं।
1: हाँ, मतलब ये एक सही आपने कहा कि एक अलग सी चीज देखने को आती है कि हम बहुत परेशान होते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं और जब हम सच में सर्व करने का मौका आता है, सेवा करने का, तो वहां पे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो जॉब लग गई।
0: देश के लिए कार्य करना है तो सरकारी नौकरी में आ जाए।
1: वाह।
0: और देश के अर्थ जगत में और अपने अर्थ जगत में अगर विस्तार करना है तो प्राइवेट जगत में आ जाइए। मना थोड़ी कर रखा है, किसी भी सरकार ने मना नहीं कर रखा है
1: जी। एग्जैक्टली।
0: बस यही कहना चाहूंगा, ज्यादा कहूंगा तो अच्छा नहीं होगा, मेरी भी कुछ औपचारिकताएं हैं, मर्यादाएं हैं
1: जी।
0: मैं सरकारी सेवक हूं और बस मैं अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, अपने भारत देश के नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जितना मौका मुझे भगवान दे उतना मैं प्रयास करता रहूंगा।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात को रखा। और ये मुझे एक बात ये भी समझनी थी कि भाई हम अक्सर देखते हैं ड्रॉप आउट पे बहुत ज्यादा बेसिक पे काम किया जाता है, सो ड्रॉप आउट हो गया है या फिर देखते हैं कि एनरोलमेंट नहीं होते हैं बच्चों के, एडमिशंस नहीं होते हैं, क्या कुछ तंत्र में भी अभी इस वक्त जरूरत है बदलाव करने की कि कहीं पेरेंट्स समुदाय को हम ये एक बार इन्फ्लुएंस कर ले जाए कि उनके लिए बहुत आसान है चीजें स्कूल्स में आना और सारी फैसिलिटी हम इंश्योर करें।
0: मुझे लगता है प्राइमरी से लेके 8 तक, आगे भी, लेकिन इनिशियल हम बेसिक एजुकेशन की आज बात कर रहे हैं
1: जी,
0: तो हम उसी के बारे में बोलेंगे। प्राइमरी से लेके 8 तक जब जब प्राइमरी में, एक में, फर्स्ट में, सेकंड में जो भी एडमिशन प्रक्रियाएं चालू होती हैं तो उनमें एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होना चाहिए सरकारी संस्थानों में, जैसा कि मुझे लगता है होता भी है, और नहीं होता है तो होना चाहिए। हमारे संस्थानों में जितने बेसिक हैं, हमारे स्कूल जूनियर हाई स्कूल हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर हम इतने इंजीनियर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालयों की भी संख्या बढ़ानी चाहिए, नवोदय विद्यालयों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, सैनिक स्कूलों की भी संख्या बढ़ानी चाहिए, और हमें उस पे भी एक डाटा तैयार करना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ 10,000 एडमिशन विद्यार्थी हर जिले में अप्रोक्सीमेट अगर होते हैं एडमिशन प्राइमरी सेक्शन में, तो उन 10,000 विद्यार्थियों के लिए 1,000 सीट के अच्छे विद्यालय। आपने बात की ना कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे, प्राइवेट कॉलेजों में जो मतभेद आता है कि नहीं हमारा बच्चा एक सेंट जेवियर बड़े स्कूलों में पढ़ेगा, तो वो मतभेद खत्म करने के लिए लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ एडमिशन प्रक्रिया बड़ी ईजी है। भारत में रहते हैं, भारत में टैक्स देते हैं, भारत में जीते हैं, भारत की नौकरी करते हैं, तो भारत में हर विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करना
1: जी, क्वालिटी एजुकेशन, एग्जैक्टली,
0: ये कहीं ना कहीं हमारा हक होना चाहिए।
1: वाह, बहुत सही बात है। लेकिन आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, नवोदय का एग्जाम्पल दिया, केंद्रीय विद्यालय का दिया, सैनिक स्कूलों का दिया, मुझे ये जानना कि आखिर इनमें कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम कहीं ना कहीं अपर प्राइमरी या हम अगर डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं उस तरह से बाकी आम स्कूलों में नहीं मिल पाती है, ऐसा क्या इन्होंने, इनके अंदर फर्क होता है?
0: देखिए, मैं अगर इन जो स्कूलों का आपने नाम लिया, मैंने नाम लिया, मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है वो काफी अच्छा होता है
1: जी।
0: वहाँ पे प्राइमरी में पढ़ाने वाला टीचर भी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अध्यापक होते हैं और उनको एक अच्छी सैलरी मिलती है, और अच्छी सैलरी मिलने के बाद वो मुझे, आज तक मैं जिस केंद्रीय विद्यालय में गया हूँ या नवोदय में गया हूँ या सैनिक स्कूलों में गया हूँ, वहाँ मुझे एक बड़ा बढ़िया शिक्षा का वातावरण दिखा है, माहौल दिखा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की अच्छी पहल है, और जब मैं छोटा था तब भी बढ़िया थे, आज भी बढ़िया है। उसमें आज भी अमीर वर्ग भी एडमिशन के लिए लालायित रहता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो।
1: एग्जैक्टली,
0: है ना। तो ऐसी ही सुविधा सभी जगह हो
1: जी,
0: और सभी जगह इसी तरह से पढ़ाया जाए, इसी तरह से अच्छे अध्यापक सभी अच्छे होते हैं, बस उनको समय समय पे ट्रेनिंग देने की हमें भी जरूरत होती है, समय समय पे ट्रेनिंग की। हम मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए तो हमें सब आ गया, हम भी रात को पावर पॉइंट कभी कभी बनाते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: हम भी सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमें भी डर लगता है कि कल को बच्चे ने कुछ पूछा तो हमें आना चाहिए।
1: एग्जैक्टली, प्रिपरेशन होनी जरूरी है।
0: तो अगर बेसिक में भी ऐसा ही होगा, और मुझे लगता है पुराने समय में जब सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूल होते थे
1: जी,
0: आज भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ प्रेयर भी अच्छी तरह से होती है, सब कुछ उस वहाँ कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस जो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए प्रेयर में वो भी अच्छे से होता है, और उसके बाद क्लासेस भी बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं बच्चे, उनको घर आके ज़्यादा कुछ जद्दोजहद माता पिता को नहीं करनी पड़ती। पढ़ाना कार्य जब 8 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चा स्कूल में है तो मेरा मानना है कि 7 घंटे स्कूल में है, और बच्चे की दिनचर्या और सोने को छोड़ के एक बड़े समय को वो स्कूल में दे रहा है, तो स्कूल की पहली प्राथमिकता होती है कि वो बच्चे में उतने परसेंट जो 24 घंटे के निकल रहे हैं उतना ज्ञान उस बच्चे के दिमाग में डाले, और अगर ऐसा सोचेंगे सभी अध्यापक तो मुझे लगता है एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा, बेहतर चीज़ों का भारत में फिर से एक सोने की चुड़िया बनने का रास्ता प्रशस्त होगा।
1: क्या बात है। मैं बस इतना जानना चाहूँगा कि अपने करियर के दौरान आपने, चूंकि आप डॉक्टरी लाइन में हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, लेकिन आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल्स विजिट किए हैं, कभी कोई ऐसा है कोई स्कूल आपने देखा जो आपको एक मॉडल स्कूल लगा हो कि हाँ ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ बढ़िया प्रैक्टिसेस हो रही है, जहाँ कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा, और मेन चीज़ आपने वहाँ की फैकल्टी देखा हो, टीचिंग स्टाइल देखा हो, मेथड देखा हो, आपको लगा हो कि बहुत अच्छा तरीका, इनोवेटिव तरीका अपना रहे हैं?
0: ये अगर बोलूँगा तो मुझे लगता है कि किसी के साथ तो बहुत बढ़िया होगा और बहुत लोगों के साथ अन्याय होगा, लेकिन मेरे इस पूरे बातचीत के दौरान शायद लोग समझ गए होंगे कि जिन स्कूलों का मैंने नाम लिया वो मोड़ा में भी बेहतर है।
1: एग्जैक्टली,
0: और बाहर भी बेहतर है। मैंने देखे हैं वो स्कूल, मैं गया हूँ, कभी कभी तो मैं चॉकलेट बांटने के बहाने ही पहुंच जाता हूँ,
1: मतलब,
0: और कभी कभी कुछ डिक्शनरियाँ लेता हूँ और वहाँ के टीचर से पूछता हूँ कि भाई एक फर्स्ट से लेकर 12th तक कौन कौन बच्चे फर्स्ट आए हैं, तो अचानक पहुंच जाता हूँ और 12th तक के बच्चों को एक एक गिफ्ट दे आता हूँ। तो खुले रूप में कहना चाहूंगा केंद्रीय विद्यालय काफी मेहनत करते हैं
1: जी।
0: लखनऊ केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर वाला जो है वो एक बहुत अच्छी भूमिका में है
1: जी,
0: और हमारा गुंडा का जो केंद्रीय विद्यालय है वो भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा दे रहा है। सभी अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि मैंने कहाँ देखा,
1: एग्जैक्टली हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि हाँ, बाकी लोग समझ सके उसको कि क्या प्रैक्टिसेस हैं कि वो अपने साथ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो हमने एक चीज तो जाना कि सेम एजुकेशन सेम प्लेटफॉर्म पे आपने बात की, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे फर्क नहीं होना चाहिए। आपने कहा पढ़ाई में बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए कि कौन कहाँ से आता है, इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि मैंने ये जानना चाहती थी कि क्या अभी कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लगता है कि उसको और इजी किया जा सकता है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, क्या एडमिशन प्रोसेस को और भी इजी बनाया जा सकता है?
0: एडमिशन प्रोसेस को एकदम फ्री स्टाइल में रखना चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो भी बच्चा पढ़ने आना चाहता है उसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। बेसिक स्कूलों में जैसा कि है, जितने भी हमारे बेसिक के स्कूल हैं, कोई भी बच्चा गांव का आता है तो उसको एडमिशन दिया जाता है। सराहनीय कार्य है
1: जी,
0: जो भी चीज़ें हैं लुभावनीय चीज़ें, मिड डे मील वगैरह, ये सब ठीक है, लेकिन शिक्षा मील, एजुकेशन मील प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है।
0: और इसी तरह इन बड़े संस्थानों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बेसिक अच्छा होगा तो अपने आप हायर अच्छा हो जाएगा। बच्चा अगर बेसिक से बहुत कुछ सीख के आता है, जहाँ बेसिक स्कूलों की संख्या है वहाँ केवी, नवोदय, सैनिक स्कूल, इनमें शिक्षा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इजी प्रोसेस रखना चाहिए एडमिशन का। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब का बेटा है तो हो जाएगा, आईएएस का बेटा है तो हो जाएगा, बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तो हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें भी मापदंड बनाए गए हैं और उन मापदंडों को भी किनारे रखते हुए सभी को मौका मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। अगर भारत एक बड़ा देश है तो हम बड़ी व्यवस्था में रहते हैं, और बड़ी व्यवस्था में सब कुछ व्यवस्थित करना ये हमारे शासन और हमारे राजा हैं, उनको आता है और वो बेहतर तरीके से करेंगे मुझे लगता है।
1: बेशक, बिल्कुल सही आपने कहा। इसके अलावा चूंकि देखिए हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, हम बहुत सारे मुद्दों को देखते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं तो कई ऐसे मामले हम अक्सर अपने समाज में देखते हैं जहां जेंडर बेसिस उन पे कहीं ना कहीं हैरेसमेंट उनके साथ में होता है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। इसको रोकने के लिए क्या सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम बेसिक एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं?
0: इसको रोकने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कि हायर एजुकेशन में और बेसिक से बाद जब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या फिर किसी भी डिग्री कॉलेज या बड़े संस्थान में एक जेंडर हरासमेंट कमेटी होती है, तो ये वहीं पे ना हो और नाम के लिए ना हो। यह हमारे शुरू से बच्चों में सबसे पहले कोएड शिक्षा होनी चाहिए। अलग अलग शिक्षा का मतलब ही हो जाता है कि लड़का अलग लड़की अलग, क्यों भाई, सब एक है। आज बेटियां हमारी बेटे से ज्यादा सक्षम है
1: जी,
0: तो सभी को एक समान भाव से शिक्षा देनी चाहिए, कोएड शिक्षा में रखना चाहिए। अलग अलग शिक्षा का मेरी भाषा में कोई प्रावधान मुझे नहीं लगता, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है वहीं पे पहला फर्क आ जाता है जब बच्चा अलग अलग पढ़ता है। पता लगा किसी गर्ल्स स्कूल में 1 से लेकर 12 तक पढ़ा, अचानक से पहुँचा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या फिर कुछ बनने, तो उसको ने देखा कि अरे यार मैंने 12 साल तो ऐसे जिंदगी जी थी जहाँ केवल लड़कियाँ ही लड़कियाँ थीं, या 12 साल मैंने ऐसे जिंदगी जी थी जहाँ लड़के ही लड़के थे, तो थोड़ा सा समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। और बहन भाई की तरह, सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूलों की तरह अगर शुरू से बच्चे खेलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म होगी।
1: मतलब आपने कहा कि कहीं ना कहीं कोविड पे ज्यादा फोकस होना चाहिए,
0: कोविड पे ही फोकस होना चाहिए।
1: ओके, तो आपका मानना यह है कि अगर कोएड नहीं होता है, अपने श्रोताओं को बता दें यहाँ कोएड का मतलब यह है कि लड़का और लड़की दोनों एक साथ पढ़ रहे हो, यानी कंबाइंड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उससे आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो समन्वय स्थापित होता है, वो पहले से जो झिझक होती है वो खत्म हो जाती है। और डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है कि एक जेंडर को आप जान जाते हैं, अगर माननीय हम मेल,
0: बिल्कुल,
1: तो फीमेल कैसी होती है, कैसा रिएक्शन करती है, फीमेल्स को पता हो जाता है कि मेल्स कैसे होते हैं, सो बाद में अचानक से मिलने पे जो एक बड़े मुद्दे खड़े होते हैं उन सारी चीजों से हम बच जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और शायद इसीलिए हम ज्यादा सम्मान भी कर पाते हैं।
0: जब हम मंदिर में माता पार्वती, भोलेनाथ को साथ में रखते हैं, सरस्वती, ब्रह्मा जी को साथ में रखते हैं, जब सभी देवी देवताओं को हम देवी देवता जैसा पूजते हैं, तो स्कूलों में भी हमें अपने सारे मेल और फीमेल को साथ में ही रखना चाहिए।
1: एग्जैक्टली, बहुत ही लाजवाब आपने एग्जाम्पल दिया है। और एग्जाम्पल बल्कि अभी क्या, आप तो सारी बातों का बड़ा ही लाजवाब एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप जब भी निकलते हैं फील्ड में तो सिर्फ आपका दौरा नहीं होता बल्कि आप जी कर आते हैं, क्योंकि जिस तरह आपके बताने का तरीका है वो मुझे लगता है कि हाँ, आपने उन चीजों को जिया है, देखा है, तभी उस अंदाज में आप बता पा रहे हैं। क्योंकि हमने बात की एजुकेशन पे, कंबाइंड एजुकेशन पे, जेंडर पर, और ऑफ कोर्स क्वालिटी एजुकेशन को किस तरह से इंश्योर किया जाए, सारी चीजों पर। अब चूंकि एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बच्चों के लिए जवाबदेह कौन कौन है, क्योंकि हमेशा से एक लड़ाई हमने देखी है कि भाई स्कूल की जिम्मेदारी है बच्चा, उसका डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्कूल कहता है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। तो क्या या तो स्कूल की जिम्मेदारी है या तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, या दोनों की है? और अगर दोनों की है तो उनका अपना क्या क्या रोल है? ये बहुत अहम सवाल है, इसका हम जवाब जानेंगे। लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के उस पार आइए, वापस से हाजिर होंगे और अपने एक्सपर्ट से इस अहम सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। सुनते रहिए गोंडावाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
10: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने शाम के स्पेशल शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेसिक एजुकेशन जैसे अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुलदीप पांडे, नोडल ऑफिसर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेडिकल कॉलेज गोंडा। एक बार वापस से आपका हम स्वागत करते हैं सर। और जाने से पहले हमने कहा था कि एक बहुत अहम सवाल है और सच में हमारे श्रोताओं के मन में भी ये है कि भाई बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ज्यादा, टीचर या फिर पेरेंट्स। हमेशा से न जाने कब से ये मुद्दा चलता चला आ रहा है, इस पे मैं आपसे राय जानना चाहूंगा आपकी।
1: बड़ा गंभीर विषय है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल,
0: एग्जैक्टली,
1: टीचर या फिर
0: पेरेंट्स।
1: पेरेंट्स तो इसमें 70% मैं रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल पेरेंट्स को ही कहूंगा। आज मैं भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स हूँ
0: जी।
1: बच्चों को किताबी भाषा में भी लिखा हुआ है, प्रथम पाठशाला माता
0: जी बिल्कुल
1: पिता ही होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरा कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लाइन में बोलूं तो इसलिए 70% रिस्पॉन्सिबल माता पिता पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को, मैं आज देख रहा हूं कि एक ही चीज कहते हैं कि बेटा बस पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसे कमाओ। बस बेटा पढ़ लो, आईएएस बन गए ना तो बहुत पैसे कमाओगे, बस बेटा इंजीनियर बन गए ना तो बहुत पैसे कमाओगे। ये जो विचारधारा दिमाग में डाली जा रही है बिल्कुल गलत है।
0: ओके।
1: पढ़ने का अभिप्राय पैसे कमाने से नहीं होना चाहिए, पढ़ने का अभिप्राय ज्ञानी बनने से होना चाहिए। हमारे बाबूजी हमसे कहा करते थे बेटा पढ़ लो, खूब आने लगेगा ना तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी हमारे बाबूजी ने हमसे ये नहीं कहा। और अब मैं देखता हूं कि जिस घर में जाता हूं कहते हैं अरे देखो डॉक्टर अंकल है ना, ऐसे ही पढ़ोगे खूब पैसे कमाओगे।
0: मतलब आपको एग्जांपल देख करके
1: या मैं, काफी मेरे मित्र हैं जुडिशरी में हैं, काफी मेरे मित्र प्रशासनिक सेवाओं से हैं, तो वो लोग भी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि बच्चों के दिमाग में कहीं ये घर नहीं कर देना चाहिए कि पढ़ने का अभिप्राय पैसा है, पढ़ने का अभिप्राय ज्ञानी बनना है, पढ़ने का अभिप्राय नॉलेजफुल होना है। और मुझे लगता है हमें हर पेरेंट्स को यही कहना चाहिए, स्कूल जा रहे हो, आज क्या पढ़ा और तुम्हें क्या क्या आया और अब तुम्हें घर पे क्या क्या और पढ़ना है
0: जी।
1: ये तीन विषय हर माता पिता को, हर गार्जियन को रखने चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि 30% जिम्मेदारी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी होती
0: जी,
1: जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में केवल टीचर नहीं आते, उसमें एक बच्चा कहाँ घूमता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं अच्छे विद्यालय, क्या करूं बोलने को मजबूर हो जाता हूं, अच्छे विद्यालय मतलब सभी अच्छे विद्यालय होने चाहिए। मेरी भाषा में वो खराब विद्यालय और वो अच्छा विद्यालय ये होना ही नहीं चाहिए। कॉलोनाइज मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हर स्कूल अच्छा है, और इसके लिए अवेयरनेस करनी चाहिए। ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें जनता को किस तरह से अवेयरनेस कर सकते हैं। रोज गार्जियन बन के आप स्कूल जाइए, अध्यापकों से बात कीजिए कि हाँ भाई 7-8 घंटे बच्चा आपके पास रहता है, हमारे पास तो 4 घंटे रहता है, बचे हुए 8-10 घंटे सो जाता है, भैया उसको क्यों नहीं आता।
0: एग्जैक्टली।
1: उससे कहिए कि क्लास में लिखवाएं, उससे कहिए क्लास में बच्चे से बुलवाएं। हम मेडिकल कॉलेज में हिला हिला के बच्चे को, जो एक आम बच्चा होता है कोचिंग और किसी तरह एग्जाम पास करके आया होता है, उसको एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं ना।
0: एग्जैक्टली।
1: जनता 5 साल बाद उसी बच्चे को डॉक्टर बन के दिखाने जाती है ना,
0: काफी इज्जत के साथ जाते हैं लोग, काफी रिस्पेक्ट।
1: और हायर से लोअर से लेके हायर वर्ग तक,
0: एग्जैक्टली,
1: उस डॉक्टर को उसको ये नहीं मालूम होता है कौन है डॉक्टर, भैया बहुत दिक्कत है मुझे दिखाने आना है। तो यही स्तर होना चाहिए लोअर एजुकेशन में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सभी में। अस्पतालों के बाहर अगर कोई व्यवस्था खराब है तो उसको सुधरवाना प्रशासन की और हम लोगों की जिम्मेदारी होती। इसी तरह स्कूलों के आसपास अगर गलत दुकानें हैं, गलत माहौल है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, तो उसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए कि अस्पतालों, स्कूलों के बाहर आसपास मंदिर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए।
0: वाह क्या बात है, मतलब माहौल को आपने बताया कि बड़ा ही असरकारक होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, 100% असरदायक होता है।
0: क्या
1: और वही करना चाहिए।
0: बेशक आपने सही कहा कि माहौल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बात और आती है कि बच्चों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी हमको इतना समझना होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लर्न कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईजी भी होता है उनको कोई भी चीज़ सिखाना पढ़ाना, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को ग्रैप करते हैं। इसको लेकर के आपका क्या मानना है कि साइकोलॉजी को समझा जाना बच्चों को पढ़ाने से पहले, ट्रीट किए जाने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे वो शिक्षक हो या फिर गार्जियन पेरेंट्स हो?
1: यह एक बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है। अगर हम साइकोलॉजी पे आएंगे और कंसल्टेशन, काउंसलर, इन सब पे, तो ये बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग कर चुके हैं
0: जी,
1: मैं इन सब पे नहीं आना चाहता हूँ। ये सब बड़े बड़े भर्ड साइकोलॉजी काउंसलर वगैरह वगैरह बड़े लोगों के लिए, आज हम लोग बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा जो अंकल आंटी पापा मम्मी दादा दादी या फिर बाबा दादी नाना नानी, इनमें अंतर जल्दी महसूस नहीं कर पाता, वो इन साइकोलॉजी में क्या अंतर महसूस करेगा? तो यहाँ पे काउंसलर ज्यादा काम नहीं आते। मेरी भाषा में बच्चों के काउंसलिंग के लिए बस बच्चों के जीवन में कुछ ही चीजें होती हैं, एक खाना पीना खेलना, दूसरा पढ़ना लिखना याद करना
0: जी,
1: और तीसरा मस्त होके सोना।
0: वाह, तभी तो कहते हैं कि बचपन की लाइफ इतनी बढ़िया है।
1: इसी को बच्चा कहते हैं, इसी को बेसिक कहते हैं, इसी को छोटा पेड़ कैसे बड़ा होता है। तो बच्चों की लाइफ में बस तीन चीजें होनी चाहिए जो मैंने बताई
0: जी,
1: इससे ज्यादा कोई काउंसलिंग की आवश्यकता बच्चों की लाइफ में नहीं है।
0: बहुत खूब, लेकिन इसी से जुड़ा फिर एक और प्रश्न आता है। प्रश्न ये है कि बच्चे कहते हैं कि भाई बचपना होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: तभी तो मैंने कहा खेलना कूदना खाना पीना।
0: एग्जैक्टली, तो ये खेल कूद से जुड़ा मेरा प्रश्न आपसे है कि आखिर खेल कूद कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो देखा जाता है पेरेंट्स घर पे आने के बाद बच्चों को कहते हैं नहीं पढ़ो पढ़ो, और महज आधा घंटा तुम्हें देंगे, एक घंटा तुम्हें देंगे, इससे ज्यादा नहीं खेलना है, ये इसको कैसे देखते हैं आप, कितना जरूरी है?
1: इसको तो बस यही कहेंगे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: क्या बात है,
1: वो पुराने पुराने फील्ड जिसमें बैट बॉल लेके खेलते थे, वो पार्क, आज पार्कों की संख्या है तो, लेकिन उसमें खेलते हुए बच्चे, वो जो मैंने कहा ना खाना पीना खेलना, वो कहीं कम हो गया है। आज जो माहौल हो गया है ना कि बच्चा गया पढ़ने, घर आया घर में बंद हो गया, आज मोहल्ले के 100 बच्चे 10 बच्चे साथ में नहीं मिल पाते।
0: Exactly.
1: हाँ, मिलते कितने हैं, जैसे ही बच्चा 6th 7th 8th 9th, आज मुझे बड़ा देखने में दर्द होता है कि मिलते कितने हैं, पान की दुकान में मिलते हैं साहब। कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ रहा है ना कोई, मैं नहीं जानता कौन बिगाड़ रहा है, लेकिन उसको सुधारने की जरूरत है। कहाँ मिलते हैं, चाय की दुकान पे मिलते हैं साहब
0: जी,
1: कहाँ मिलते हैं, पहले हम लोग फील्ड में मिला करते थे, कभी कभी खेलते खेलते टीचर, मम्मी कहती थी वो फील्ड में खेल रहा होगा, टीचर आता था पीछे शुरू हो जाता, 2-4 डंडे पड़ जाते थे, बैट आगे बैट से खेल रहे होते थे, पीछे डंडे पड़ते थे, भागते भागते ट्यूशन पढ़ने घर आते थे, तो वो माहौल खत्म हो गया। कहीं ना कहीं बच्चों को इन, हम कभी दुकानों पे चाय की दुकान पे नहीं जाते थे
0: जी।
1: और मुझे लगता है मेरी उम्र के सारे लोग उस समय, हर एक इलाहाबाद में रहता था, अगर कभी पूरी सब्जी भी बाहर खा लिया तो घर पे खबर पहुंच जाती थी, घर पे खाना नहीं बना क्या।
0: इतना तगड़ा सुपरविजन होता था। एग्जैक्टली
1: तो आज जो माहौल में बदलाव आया है, ये पता नहीं कहां बॉलीवुड से आया, ये हॉलीवुड से आया।
0: सर डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी हमने देखी, बचपन में हमारे पड़ोसी जो होते थे, मतलब उनसे भी हम डरते थे कि पता था कि ये घर जाके बता देंगे, आज लोग खुद बोलते हुए सुने जाते हैं कि मुझसे क्या फर्क पड़ता, मुझे क्या, जो कर रहा कर रहे हैं। तो
1: मैंने कहा ना, कॉलोनी की सोच बदली है, और उस सोच को बदलने में कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? आज बच्चे वो छोटे आजादी से क्यों नहीं घूम पाते, हम क्यों ऐसे जेंडर हैरासमेंट और ऐसे वर्डों का यूज करते हैं?
0: सही बात,
1: शिक्षा में मतभेद क्यों है, हायर क्लास लोअर क्लास कहां से आया? ये सब जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस, बहुत सारे अवेयरनेस हो रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पे जो अवेयरनेस होने चाहिए ना, उनको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: मॉल तो बन रहे हैं लेकिन दुकानों जैसा प्रेम खत्म हो रहा है।
0: बेशक,
1: स्कूल की बिल्डिंगें बढ़ रही हैं लेकिन खेलने कूदने की व्यवस्थाएं, बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं, लेकिन वो जो लकड़ी के बैट में जो मजा था वो बच्चों को अब मिलता नहीं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही।
1: गहराई से सोचने की आवश्यकता है, जिससे कि और निचला स्तर ये ठीक हो जाएगा ना तो अपने आप इंजीनियर अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टर अच्छे हो जाएंगे, हमारे शासकीय अफसर अच्छे हो जाएंगे, ये सोच खत्म हो जाएगी पैसा कमाना है। अरे जो काम भी करते हैं ना उसमें भी लोगों को लगता है कि नहीं पैसा कमा रहे हैं।
0: एग्जैक्टली, सही बात है।
1: तो हमें रूट सही करना है, रूट बिगड़ चुका है, जड़ बिगड़ चुकी है, और जो सही है उसी की वजह से देश चल रहा है।
0: ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जड़ जो है वो बिगड़ रही है और जड़ ही से सब कुछ है। ऑफ कोर्स जड़ हमको सुधारना होगा, सवारना होगा, सजाना होगा, ताकि हम एक खिले हुए पेड़ की तरह इस पूरी दुनिया में अपने आने वाले पीढ़ियों का भविष्य देख सकते हैं। बेशक सही बात है। और ऑफ कोर्स अब चूंकि हमारे चलने का भी वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोई एक मैसेज, कोई एक अपील जो बेसिक एजुकेशन को लेकर के हमारे अभिभावकों को भी हो और साथ ही हमारे शिक्षक गणों को भी हो।
1: अगर संदेश की बात करूं तो यही कहना चाहूंगा कि कठिन है करना, हमारे नारे तो हैं सबको शिक्षा सबको अधिकार, लेकिन मुझे लगता है कि सबको शिक्षा समान शिक्षा एक प्लेटफॉर्म, ये जिद की तरह करने की जरूरत है। ठान लीजिए, मान लीजिए कि अब देश में जो हमारा डेवलप्ड कंट्री का सपना है विकसित भारत का, वो विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने रूट को, मतलब हमारे जो पौध हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वहां से हम शुरुआत करें। और एक बार अगर ये सही हो गया ना तो फिर से हम वही संगीत, वही आवाज आएगी सारे जहां से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी,
0: ये गुलसिता हमारा,
1: गुलसिता।
0: क्या बात है, बड़े ही प्यारे अंदाज में आपने अपनी अपील की, अपना मैसेज दिया अभिभावकों को, शिक्षकों को, हम सभी लोगों को। और सच में ये हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारा भविष्य है, हमारे आने वाले बच्चे, और हम जिस तरह इनमें इन्वेस्ट करके जाएंगे, जिस तरह इनकी देखभाल करके जाएंगे, पूरी तरह उस पर निर्भर करेगा कि कैसा होने वाला है भविष्य। और आज का इस शो का लास्ट आखिर प्रश्न जो हम अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे कि रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM इस पूरे मंडल यानी देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जहां पर हर वर्ग, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन भी होती है और एंटरटेनमेंट भी होता है। आपको क्या लगता है कि गोंडा में आने के बाद गोंडा जैसे शहर के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए ये कम्युनिटी रेडियो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है?
1: सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा अपने साथी जो मेरे सामने बैठे हैं,
0: आरजे अरनान
1: साहब, जिनकी इतनी अच्छी आवाज है, और इस आवाज से हमारे गोंडा और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऑडियंस इनकी आवाज से ही इनको पहचानती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मुझे इतना कुछ कहने का अवसर दिया। और जहाँ तक इस FM रेडियो गोंडा और अदनान साहब की बात करूँगा, ये अवेयरनेस फैलाने का, एक अच्छी पहल शुरू करने का एक बहुत बढ़िया संस्थान है, एक बहुत बढ़िया ऑडियंस प्लेटफॉर्म है। और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना अपनी आवाज़ के माध्यम से हम सबको अपनी ओर आकर्षित किया है, तो हम सब इनको हमेशा इनके आभारी रहेंगे और गोंडा में अच्छी अच्छी चीजें करते रहेंगे।
0: थैंक यू सो मच सर, और मैं खुद आभारी हूँ कि हमारे गोंडा में ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो बाहर के होकर के यहाँ आए हैं और पूरी तरह से गोंडा के हालात को और बेहतर करना चाहते हैं, एक नए गोंडा को बनाना चाहते हैं, यानी गोंडा 2.0 का विजन लेकर के चल रहे हैं, मिशन है, जिसमें हमारे डॉक्टर कुलदीप पांडे सर भी हैं, जो कि नोडल ऑफिसर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं मेडिकल कॉलेज गोंडा से। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए कहा, और हम चाहेंगे, और साथ ही हम अपने बाकी लिसनर्स की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं कि आप वापस से आइए और किसी अलग मुद्दे पर हम ऐसे ही आपसे चर्चा करेंगे जो लोगों तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं शायद जगाने का प्रयास करेगा।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने श्रोताओं से हम कहेंगे कि भाई आपने आज के इस टॉक शो को सुना और कैसे लगे हमारे डॉक्टर कुलदीप पांडे सर, नोडल ऑफिसर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेडिकल कॉलेज कोटा, जरूर बताइएगा। साथ ही चैट बॉक्स पे अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि आज का टॉक शो आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद रहा। सुनते रहिए अपना गोंडा वाला एफएम रेडियो 89.6 एफएम, क्योंकि ये है आपके गोंडा शहर की धड़कन।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

दिन सारी बगिया खिली। कल की बारिश ने कुछ ऐसी फीलिंग दिला दी ना रात में। हाँ, सभी का स्वागत है। गोंडा वालों जाग जाओ, वेरी गुड इवनिंग। आपके साथ लाइव है आपकी अपनी आरजे बीना। तो जैसे कि गाना कह रहा है, एक तुझो मिला सारी दुनिया मिली, एंड ये फीलिंग हमें हमेशा किसी नए से मिलके आती है। वैसे आपको मुझसे रोज़ मिलके आती होगी शाम को 6 बजे, और मुझे भी ये फीलिंग रोज़ हर शाम नए जैसी लगती है। पहली बार वाली फीलिंग लगती है। तो मैं आप सभी को पहले याद दिला दूं कि आज है सैटरडे, डॉक्टर लव वाला दिन है, और डॉक्टर लव वाला दिन यानी कि एक त्यौहार जैसा होता है, क्योंकि उस दिन आपकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, यानी कि वो सवाल जिसका इंतज़ार आप पूरे हफ्ते के लिए करते हैं कि आज आने दो शनिवार डॉक्टर लव से बात करेंगे। कुछ तो ऐसे भी जो कहते हैं कि हर दिन डॉक्टर लव को बुला लिया करिए, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आजकल न्यूज़ ने भी आप लोग का दिमाग ख़राब कर रखा है। ख़ास तौर पर रिलेशनशिप को लेकर आप लोग के मन में बड़े सवाल हैं, तो सवालों को बरकरार रखिए। थोड़ी देर में आपके साथ हम और आपके डॉक्टर लव लाइव होंगे। और कहते हैं ना कि जहां दिल की बातें होती हैं, जहां हंसी ठहाके होते हैं, वहां आरजे बीना एंड डॉक्टर लव होते हैं ऑफकोर्स। और आपको बता दूं कि आज का जो मेन जो मुद्दा है मेरे, जहां तक कि मैंने अपने सवालों को मतलब देखा है ना, एनालाइज़ किया है, बहुत सारे मेरे ऐसे लिसनर्स हैं जिन्होंने मुझे पूरे हफ्ते बहुत सारे सवाल किए। सवालों की अगर मैं बात करूं तो उन सवालों में कुछ सवाल बड़े मतलब दिलचस्प थे, उनको तो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, उन सवालों को एनालाइज़ करके मुझे ये समझ में आया कि लड़के अपने आप को थोड़ा बेचारा समझने लगे हैं। तो आज हम बात करेंगे बेचारे लड़कों के बारे में, क्योंकि सवाल ऐसे थे कि मुझे थोड़ा सा मतलब दिल मेरा भर आया कुछ लड़कों के सवाल सुन के। हाँ, कुछ के तो फ़नी भी थे, लेकिन फ़नी होने के साथ उनका कंसर्न सीरियस ही था। मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन उनका जो कंसर्न था वो टोटली सीरियस था। और अब मैं लड़कों से बस यही कहूँगी, आप बेचारे हो सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज आपकी शिकायत नहीं, आपकी दर्द दास्तां सुनी जाएगी। और लड़कियों को मैं बताऊँ, मुस्कुराइए मत, हाँ, आप लोग की वजह से ही ये बेचारे हुए हैं। तो फिलहाल आज लड़कों को थोड़ा मुस्कुराने देंगे, क्योंकि आज इनके दर्द दिल की दास्तां सुनेंगे। तो ये मनोरंजन जारी रहेगा, म्यूजिकल जर्नी भी चलेगी साथ साथ, लेकिन सवाल प्रायोरिटी पे रहेंगे। तो ठीक है, आपके सवालों के साथ आज हम थोड़ी देर में आपसे करेंगे बहुत बहुत सारी बातें, और बातों के साथ आपकी जो कहते हैं ना कि जज्बातों को भी समझेंगे। नॉट ओनली मतलब हमारे साथ हंसी मजाक होगा, लेकिन कुछ ऐसे सीरियस कंसर्न पे बात होगी, जिसको लेके मेरे कुछ ऐसे लिसनर हैं जिन्होंने मुझे, कोई मेरा ऐसा मतलब क्या सोशल हैंडल नहीं होगा जहाँ पे मुझे मैसेज ना किया, आरजे बीना मेरी ये सवाल है, मेरा ये मदद कर देना आप, आरजे बीना ये वाला सवाल ज़रूर ले लेना, क्या करूँ मैं, ये सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो ऐसे वैसे सारे सवालों का जवाब आज मिलेगा आपको। फिलहाल के लिए चलिए सुनते हैं वही गाना जिसकी शुरुआत ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, और जानते हैं ना कि लता जी का गाना सुनने के बाद मेरी जो कहते हैं ना गायकी अपने आप निकल ही जाती है। एंड यस, ये गाना मैंने बहुत ढूंढ के निकाला है, और आज मुझे लगा कि आपको सुना देती हूँ, मजा आएगा। एंड यस, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा सुरीला सुन रहे हैं, एंटरटेनिंग सुन रहे हैं, और आपको सुनने के बाद बहुत हंसी आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 89.6 FM सुन रहे हैं। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह पूर्धा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि आज आरजू बीना ने कौन सा मोड ऑन कर दिया है, इवनिंग के टाइम अल्लाता जी के इतने सुरेले गाने सुनाए जा रहे हैं, आज क्या चल रहा है आरजू बीना के दिमाग में? ऐसा चल रहा है ना आपके दिमाग में? मुझे पता है। एक मेरे लिसनर ने मुझसे सवाल किया कि आरजू बीना, ये लड़कियाँ जो हैं शुरुआत में लता जी की आवाज़ में एकदम सुरीली बातें करती हैं, फिर ज़िंदगी में तहलका जब मचाती हैं तो बिल्कुल शुभनखा बन जाती हैं, और वही मैं आपको फीलिंग दिला रही हूँ कि पहले लता जी की आवाज़ के गानों को सुन के आप अपने प्रेम के प्रारंभिक स्तर को याद करिए, और फिर उसके बाद क्या होता है वो इस गाने से फील करिए।

तहलका तो कुछ ऐसे ही मच जाता है ना आप लोग की लाइफ में, जिसको आप लोग फील कर पाते हैं ना कि हाँ कि शुरुआत होती है एकदम सुरीले गाने से और फिर आपकी लाइफ में इतना हाइप होता है, इतनी एनर्जी बढ़ती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो बिल्कुल घबराइए मत, आपकी समझ को आपके समझ तक पहुंचाने के लिए दोबारा जो मैंने आपके साथ आई है। फिलहाल आपको पता है ना कि हमारी ज़िंदगी में मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है ना वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बुद्धि होती है, और इन दोनों पर अगर हमने अपना कंट्रोल बना लिया तो भाई साहब हमारी ज़िंदगी एकदम झिंगा लाला। फिलहाल आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा ना कि वैसे ये बुद्धि और पर्सनैलिटी ये तो चीज़ें मतलब आज तक समझ ही नहीं आई कि एक्चुअली में पर्सनैलिटी हमारी क्या।

समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली पर्सनैलिटी हमारी है क्या। और एक लड़के ने मुझसे सवाल भी किया कि मैम मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ऐसा मेरी क्लास की एक लड़की ने मुझे कहा और मुझे रिजेक्ट कर दिया। और वहीं मेरे क्लास के एक दूसरे लड़के ने जो मुझसे पढ़ने में काम अच्छा भी है उसको पसंद कर लिया। मेरी पर्सनैलिटी में क्या दिक्कत है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या दिक्कत है। फिलहाल ये गाना सुनिए, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी की बात करते हैं।

यस, और ये गाना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिसनर्स के लिए। सो वेलकम बैक, आरजे बीना आपके साथ है और आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला आपके आरजे बीना वाले अंदाज में। गुड इवनिंग सविता, गुड इवनिंग अनिल जी, गुड इवनिंग तीरथ प्रसाद जी, सबका स्वागत है और बाकियों का भी। और आपको बता दूं कि आपका नंबर 6393 31 64 29 लाइव है, आपके इंतज़ार में, आपके डायल करने के इंतज़ार में। 6393316429 आप डायल करके अपने सवालों के जवाब डॉक्टर लव से पा सकते हैं। और बिल्कुल जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि पर्सनालिटी को लेके यार बड़ा सबको ये नहीं समझ में आता कि पर्सनालिटी आखिर होती क्या है, क्यों। मतलब उस लड़के ने जैसे कि सिचुएशन दी मुझे, सिचुएशन ये दी कि मैं क्लास में पढ़ने में भी अच्छा हूँ, साफ सुथरा भी रहता हूँ, हाइजीनिक भी रहता हूँ, उसके बाद भी जिस लड़की को मैंने चाहा उसने किसी और को चाहा, वाई, जबकि वो लड़का इतना मतलब वो नहीं है। क्या रीज़न था? उसको पर्सनैलिटी जाननी है कि मैडम मुझे पर्सनैलिटी बता दीजिए। मैंने कहा पहले सवाल यही ले लेती हूँ क्योंकि पर्सनैलिटी के बारे में तो हमारे डॉक्टर लव ने मुझे बहुत कुछ पढ़ा सिखा रखा है। हमारे यहाँ एक सर डॉक्टर लव की एक शिष्या हैं, वो बहुत सारे ऐसे प्रेमी पेशेंट्स को लव थेरेपी भी देती हैं। तो बता दूँ कि अगर देखें तो ये साइकोलॉजी से जुड़ा एक टर्म है जिसे पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व बोलते हैं। इसमें जो इंसान होता है उसके विचार, उसकी भावनाएँ, उसके व्यवहार यानी कि उसका जो बिहेवियर है और आसपास का जो जो मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उसके साथ जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, जो एडजस्टमेंट है, वो पूरा मतलब पर्सनैलिटी होता है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी का मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। कोई तो कहता मुखौटा भी होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो शब्द है ना परसोना से बना। आज आपने बचपन में परसोना की वो लगाई होगी ना, फेस पाउडर। हम लोग की मम्मियाँ जो होती थी ना वो परसोना और ये दो तीन कंपनियाँ तब चलती थी। अब तो मतलब ये लैकमे शैकमे बहुत बचपन में मैंने नहीं देखा। हाँ लैकमे तो था, फिर अभी जो प्लेक्स और ये सब पता नहीं क्या क्या कंपनियाँ ये सब नहीं थी। परसोना मैंने देखा था कि मतलब बचपन में एक परसोना का कुछ आता था पाउडर टाइप का, वो लगाते थे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग शादी वादी में। तो परसोना का मतलब मुझे उस समय नहीं पता था। हाँ जब मैंने पर्सनैलिटी को समझा तब समझ में आया कि परसोना का मतलब होता है मुखौटा, मास्क, एक तरह से चेहरे पे मास्क लगा लेना पाउडर वगैरह का। फिलहाल ये पर्सनैलिटी से जुड़ा शब्द है, परसोना एक मुखौटा होता है कुछ लोग, और इसी शब्द से ये बना है, लैटिन भाषा का शब्द है परसोना और उसी से हमने बना दिया पर्सनैलिटी। और ये बेसिकली अंदर और बाहर दिखने वाले गुणों को समायोजित करके ऐसे मतलब बनाते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा बता देगा, लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत मालूम है वही मैं बता देती हूँ। और ये जो होता है ना इसका मेजरमेंट भी किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, कितनी अच्छी है। फिलहाल आपके आसपास वाले लोग आपकी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट तो नहीं कर पाएंगे, कोई बड़ा मतलब जो होगा कहते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक टाइप का इंसान, वो ही कर पाएगा। तो ये तो बात हो गई यार पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी में आप अपने पर्सनैलिटी को तभी निखार सकते हैं जब आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहेंगे। और जब आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी को ढाल लेते हैं उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। अक्सर हम लोग एडजस्टमेंट और पर्सनैलिटी दोनों शब्द का यूज़ तो करते हैं पर एक्चुअली में इसके बीच में क्या तालमेल है वो हम समझ नहीं पाते। फॉर एग्जांपल आपके आसपास भाई ठंड बहुत पड़ रही है और आपको लग रहा है कि ये ठंड जाएगी नहीं, और फिर आपको पता चल गया अरे यार मैं तो शिमला में हूँ, यहाँ तो साल भर ठंड रहती है। फिर आपको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा। ठीक है, आपको आपको बॉडी भी आपको मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। या तो आप चिल्लाओगे यार मुझे यहाँ से जाना है, या फिर आप खुशी खुशी उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लो, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। भाई आप चीख रहे हो चिल्ला रहे हो तो सामने वाला तो सोचेगा ना कि बड़ा चिड़चिड़ा इंसान है, पर आप मुस्कुरा रहे हो ठंडी में भी मुस्कुरा रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव आसपास के लोगों पर तो पड़ ही जाएगा ना। मज़ा आया कि नहीं जान के ये बताओ, मज़ा आया कि नहीं। और पर्सनैलिटी जो बेसिकली आपके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करती है। मतलब अगर देखें तो जब कोई आदमी या कोई औरत या जो भी समझो वो अपने एनवायरनमेंट में किसी तरह का टेंशन या फिर अपनी जो इंटरनल जो विशेज हैं जो इच्छाएं होती हैं वो जब पूरी नहीं होती हैं, अक्सर हम लोग की लाइफ में ये तो है यार, इच्छा तो इच्छा ही होती है। चाहे हम मोबाइल ख़रीदने जाएँ तो हमारे दिमाग में एक थोड़ा सा होता है, चाहे हम सब्जी खरीदने जाएं तो हमारे दिमाग में होता है यार आज तो मैं लेके आऊँगा बैगन, नहीं मैं आज तो भिंडी लेके आऊँगी, भिंडी की सब्जी बना के मस्त खाऊंगी, भरवा भिंडी बनाऊंगी और साथ में रायता बनाऊंगी या कुछ अच्छा सा फिर मैं खाऊंगी। लेकिन आपको इत्तेफाक से अच्छी भिंडी ना मिले या भिंडी मिले ही ना, फिर आप थोड़ा तो डिसअपॉइंट होंगे।
ठीक है, तो आपके दिमाग का जो डिफेंस मैकेनिज्म है या तो आप पे हावी हो जाए या तो आप एडजस्टमेंट बना लें कि यार भिंडी से बैठे तो मैं दाल मखनी बना लेती हूँ, मैं दाल मखनी बनाऊंगी और खाऊंगी। सो दिस इज द पर्सनैलिटी और ये क्या कहते हैं आपका एडजस्टमेंट का तालमेल है। तो ये तो बात होगी थोड़ी ज्ञान वाली। तो ये समझिए कि आप कितना अपने, हो सकता है कि मैं उस लड़के का नाम तो नहीं लूँगी जिसने मुझसे ये सवाल किया था, सवाल बड़ा मस्त लगा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोग से डिस्कस करूँ। हो सकता है आप क्लास के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट ना करते हो, आप लोगों से आइसोलेट होके रहते हो और वो जो लड़का है वो सबसे हिलजुल के मिलजुल के बात करता है। तो इन्होंने अपनी फिर मतलब मुझे इन्होंने अपने बारे में जो चीज़ें बताई उसको मैंने एनालाइज करके बताया, तो ये लड़का थोड़ा सा आइसोलेट टाइप का, मतलब थोड़ा साफ सफाई ये सब वाला ज़्यादा है, तो इसलिए उसको वो लड़की ने इसको पसंद नहीं किया कि ये तो मुझे भी ऐसे ही कहेगा कि जाओ ये करो वो करो पढ़ो ये वो। तो वो इस प्रेशर में ना आने के बजाय उसने उस लड़के को पसंद किया जो बहुत खुला मिजाज का था, बहुत हंसमुख टाइप का था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हमारे जो लिसनर हैं मिस्टर पर्सनैलिटी वो समझ गए होंगे, नाम नहीं लूँगी, नहीं बेचारा शर्मा आ जाएगा, उसने कहा था कि मैं सैटरडे को लाइव होकर सुनूंगा, तो ऑब्वियसली सुन ही रहा होगा। तो चलिए हम और एक गाना सुनते हैं और इसी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को निखारते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 98 38 288 386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में, क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

वैसे ये गाना काफ़ी सिचुएशन के हिसाब से है, क्योंकि रिस्क की बात तो मुझे दिख ही रही है। और आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या लड़कों के साथ यही है कि मेरे साथ वाली जो मेरी बंदी है वो मेरे लिए लॉयल है कि नहीं, क्योंकि कुछ केसेस ने लोगों की धड़कनें उड़ा नहीं ली, चुरा ली हैं। कुछ लोग तो मतलब डर के मारे अपना बीपी बढ़वाए बैठे पड़े हैं। मतलब एक लड़की तो ऐसे ही मतलब आ गई डॉक्टर साहब के पास कि सर ये मैं और मेरे बॉयफ्रेंड आए थे मोमोज खाने, लेकिन अचानक से इनको बहुत पसीना आने लगा, ये वो, और ये देखिए इनका बीपी बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, डॉक्टर लव ने, कि भाई क्या हो गया, तुम इतना मतलब पसीने में क्यों दिख रहे हो, क्या परेशानी है? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब अकेले में बात करनी है। तो बताया कि वो जो केतन वाला मैटर सुना हूँ, तब से मैं इसके साथ जब भी चलता हूँ तो मुझे डर ही लगता रहता है, ऐसा ना हो कि कहीं मोमोज में जहर मिला के खिला दे। तो इसलिए मुझे बहुत प्रेशर करके खिला रही थी, तो डर लग रहा था ऐसा ना हो कि कुछ मिला हो मोमोज में। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या कहें, अरे आपकी प्रेमिका आपसे प्यार करती है, आप उसका पहला प्यार हैं या दूसरा प्यार, ऐसे कई सवाल किए और उनकी समस्या का फिलहाल समाधान दे दिया। और मतलब क्या कहूँ, आजकल तो हालत ख़राब हो जा रही है। और ऐसे में मतलब, पर यार ये बताओ यार, आप लोग इतना डर रहे हो, मैंने तो पहले ही कहा था कि यार ये सब होता रहता है, बस ये है कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई भी मैरिज करो, सब में डर तो बना ही रहेगा, रिस्क तो रहेगा, क्योंकि इश्क है तो रिस्क है। तो फिलहाल इस रिस्क को एंजॉय करिए, फिर हम डॉक्टर लव से कुछ सवालों को डिस्कस करके आपके साथ ऑन एयर होते हैं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
4: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
5: छूने दो बच्चों।

0: सो डॉक्टर लव, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपके क्लिनिक पे आज मरीजों का तांता लगा था, तो कितने मरीजों को उड़ा के आए, मतलब निपटा के आए आप?
1: बहुत सारे मरीजों का तांता नहीं बल्कि ताती लगी हुई थी उसमें।
0: मतलब ताती लड़कियां भी थी ज्यादा क्या?
1: हाँ, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। हाँ, तो ताती लगी हुई थी।
0: मैंने तो जहाँ तक अनुभव किया आपके, मतलब आपके क्लिनिक में बैठने के बाद, हमको तो इधर जब से ये जो केतन वाला मामला हुआ तब से लड़कों का लाइन लग रहा है ज्यादा, लड़कियाँ कहाँ से आ गई?
1: मैं यही तो आश्चर्य का विषय है कि आज
0: ऐसा तो नहीं है कि लड़के डर के मारे ब्रेकअप कर लिए वो लोग परेशान हो गई होंगी? हाँ, यही मामला,
1: यही मामला, कुछ मामला गंभीर है।
0: लड़कों के अंदर एक डर और दहशत बैठ चुकी है। देखिए, आइडिया बहुत बड़ी चीज है।
1: हाँ,
0: और जैसे कोई भी लड़की इनसिक्योर, या आजकल देखिए आजकल दिल बड़ा वो हो गया है, बेचारा टाइप हो गया,
1: बेचारा टाइप का हो गया,
0: और थोड़ा मनचला भी हो गया है,
1: मनचला हो गया है,
0: आज ये इस पे कल उस पे,
1: हाँ,
0: ये वाला है। तो हो सकता है लड़कियां जो सोच रही हो, या लड़के लड़कों को ऐसी सोच आ रही हो कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरी वाली बंदी मेरे लिए कुछ षड्यंत्र प्लान कर रही है, मतलब हर प्रकार का ख्याल आता ही है,
1: आता ही है। मतलब जब से ड्रम आ गया तब से और ख्याल।
0: डॉक्टर लव ने अपने घर में ड्रम हटा दिए।
1: हाँ।
0: और इधर ये क्या कहते हैं, वो वाला मामला हुआ था, कौन सा वाला, इनकी पत्नी ने फ्रिज हटा दिया था, जब इनके वो दिल्ली में एक मामला हुआ था, फ्रिज में बाड़ी मिली थी, तो इनकी पत्नी ने फ्रिज, अब ये घड़े काम चला रहे हैं,
1: घड़े का पानी पी रहे हैं।
0: तो मतलब इनके घर में वाइस वर्षा चल रहा है, मतलब इनके घर में सबसे खास बात, 300 पत्नियों को इन पे शक हो जाता है, इनको भी अपनी 300 पत्नियों पे शक?
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 300 पत्नियां हमारी हमारे पे वफादार हैं।
0: ऐसा ना हो किसी दिन मतलब कुकर में पक जाएं आप भी।
1: ऐसा न कहिए बाप, ऐसा कह देंगी
0: नहीं। मतलब देखिए, डॉक्टर लव इस मामले में बहुत सतर्क इंसान है। जब लोग इनसे सलाह ले रहे हैं तो इन्होंने अपने घर में बहुत टाइट सिक्योरिटी और बहुत टाइट, मतलब मेरे को लगता है आपने साइकोलॉजिकल बैलेंस बना के
1: सीसीटीवी कैमरा
0: वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपने साइकोलॉजिकली अपने घर में असमंजस बना रखा है तो आपकी दुनिया बाल नहीं बाका कर सकती। महाराज केतन के सर में बाल कम था इसलिए उसको मार डाली उसकी वो।
1: अब सोचिए हाल, मतलब अब आप
0: बाल बाला फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, बाल जरूरी है, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं है कि किसी को उड़ा दिया जाए,
1: कि बाल ना हो तो उसका बाल बाका कर दिया जाए।
0: बाल बाका नहीं, उसको बांक ही दिया जाए,
1: उसको मतलब तो उसको बांके से बाल दिया गया।
0: फिर ऐसी फिलहाल ऐसी बात नहीं। अब देखिए, लड़कों के लिए एक दो मामला हो गया तो बड़ी बात हो गई। कहते ना कि वो गांव में, हमारे यहाँ कहा जाए, निरेह गांव में उठावा मार उठे हुए।
1: हाँ।
0: कुछ ऐसा ना।
1: हाँ।
0: तो लड़कों के लिए दो चार एक आध मामले आ गए तो लड़के मतलब ये सोचने लगे कि अरे भाई हम लोग के साथ हुए, लेकिन लड़कियों के साथ जब इतने, मतलब अब लड़कियों का साथ तो मुझे देना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आता है कि जब चार मामले सामने आए तो लड़कों की मतलब हालत खराब हो गई, सांसें ऊपर नीचे होने लगी, यहाँ तक कि देश भर का एक एक युवक मन में अपने एक छोटा सा डर लिए बैठा है कि मेरे सामने वाली कहीं मेरे लिए कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रही है।
1: भरोसा उठता
0: जब, जब लड़कियों की बारी आती है तब किसी ने ये नहीं सोचा। इस हिसाब से तो मैंने कल भी कहा था कि लड़कियों को कुछ नहीं तो एक ऐसा देश बना देना चाहिए जहाँ पे लड़के हो ही ना।
1: हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा
0: इस हद तक मतलब लड़के मतलब एक्सप्लॉइट कर चुके। तो चलिए, किसी का कॉल आ गया तो मैं तो चाहती हूँ सबसे पहले कॉलर से अपने बात करना, क्योंकि सबके पास मुझसे ज्यादा समस्या है। हेलो।
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग अनु, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका?
2: मैं तो बहुत अच्छी।
0: क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो सवाल जानने के लिए मैं चाहूंगी कि सवाल क्या है आपका?
2: मैम, मेरे पास तो ऐसे ही सवाल तो नहीं है कुछ खास। मैं हमेशा ही अच्छी रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर सवाल क्या करे।
1: हाँ,
2: लेकिन मगर एक बात है। गुड इवनिंग सर।
1: जी, गुड इवनिंग।
2: लेकिन सर एक बात है, आप वो फ्रिज कूलर सूट केस क्यों भूल जाते हो?
1: भूल जाते
2: हम लड़कियाँ ना फ्रिज कूलर और सूट केस से बहुत डरते हैं।
1: अच्छा, मतलब आपके घर में भी?
2: आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन सर इस टॉपिक पे आप ना चर्चा करो तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि हम लड़कियाँ भी फ्रिज कूलर और सूट केस और बहुत सारी चीजें जिनसे बहुत डरते हैं
0: पर फिर भी बेखौफ घूमते हैं।
2: हाँ, क्या करें, जिंदगी है। हाँ, जब सारे इंसान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं।
1: वही तो
2: हमारे तरह
0: लेकिन अनु, आपको पता है आज का मुद्दा ही बड़ा खास है। ज्यादातर मेरे कॉलर्स का सवाल यही है, इनसिक्योरिटी। उन्हें मन में डर बैठ गया है, उनके हालात खराब हैं, और मतलब क्या बताएं।
2: जब मैम डर के बैठ गए, हार पहले से ही मान लिए, तो फिर उसकी क्या बात करें। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती।
1: तो मतलब इसके आपने अब कमर कस ली है।
0: और
2: सर काहे का डरना।
1: हाँ, काहे का डरना।
2: और सर पहली बात तो काहे को डरना, सारे लोग एक जैसे नहीं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं, और कुछ लोग हैं जो मीडियम में अच्छे हैं। और दूसरी बात, मैम है, आप हो जहाँ डॉक्टर लव हो और हमारी इतनी अच्छी मैम हो, फिर वहाँ काहे का डरना। कोई भी बात होगी तो आपसे सीधा सवाल करेंगे, हम लोग आपसे इलाज करवाएंगे, आपसे सलाह मशवरा लेंगे।
1: और क्या आपकी सहेली को पति मिल गया या नहीं?
2: हमारे गोंडा में इतने अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर लव के डॉक्टर है, जो बहुत विशेष बहुत खास है, पूरी दुनिया में एक लौते डॉक्टर लव है। फिर हम लोग क्यों डरे, गोंडा वाले क्यों डरे,
1: गोंडा वाले।
2: और हम तो कहते हैं, हाँ और सर हम तो कहते हैं बाहर वाले भी ना डरे, क्योंकि वो आए गोंडा में, उनका इलाज होगा, उनको मुफ्त में सलाहें दी जाएंगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। तो फिर डरे ना,
1: मोहब्बत खुल के करें।
2: मोहब्बत खुल के करे, एकदम प्रसार करे मोहब्बत का,
1: एकदम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।
0: तो चलो अनु, आपके सवाल का मुझे लगता है आपने सवाल भी खुद ही किया, जवाब भी खुद ही दे दिया। अब अगले कॉल को मौका देना चाहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच।
2: ओके
0: बाय। सो अनु की भी बात बहुत जायज थी, लेकिन डॉक्टर लव एक बड़ा जेन्युइन सवाल आपके आने के पहले ही कॉल मुझे आया था। लड़की ने कहा कि मैं रेडियो सुन रही हूँ, ऑन एयर तो ये सवाल नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ आरजे बिना, और ये मेरा सवाल डॉक्टर लव को फॉरवर्ड कर दीजिएगा
1: जी।
0: लड़की का नाम है वाई।
1: वाई
0: नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे शहर की लड़की है। तो
1: जब माना वो संख्या एक्स है, आपने मेरा माना वो लड़की वाई है।
0: हाँ, मैंने कब एक्स मानूंगी, तो एक्स का मतलब हमारे जीवन में अभिप्राय बस एक्स ही है।
1: हाँ, वही तो, वही
0: तो मैंने कहा लड़की का नाम वाई है।
1: हाँ
0: ठीक है। तो उनका सवाल ये है कि उनकी शादी भी जल्दी जल्दी फिक्स हुई है। जल्दी क्या, नवम्बर में
1: फिक्स हो गई, मतलब
0: एंगेजमेंट,
1: मतलब अब उनके पति के दुख के दिन शुरू होने वाले।
0: अरे सुनिए पूरी बात तो सुन लीजिए।
1: अच्छा,
0: तो एंगेजमेंट हो गई, हमारे पगल में रहती थी।
1: हाँ।
0: तो फैमिली थोड़ी सी बैकवर्ड थी, बैकवर्ड क्या कह सकते हैं, लड़की की फैमिली, मतलब उसको मोबाइल वोबाइल ज्यादा नहीं दे रखा था घर। हाँ। में मम्मी का मोबाइल वही यूज करती थी।
1: हाँ।
0: तो उसके मतलब ससुराल वालों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए मोबाइल भिजवा देंगे, तब तुम बात करना।
1: अच्छा।
0: तो शादी मतलब एंगेजमेंट को 5-6 महीने हो गए, ना मोबाइल आया ना बात हो पाई। तो बहुत संशय में कि मतलब इनकी मतलब कहानी में प्यार की एंट्री होगी कि नहीं होगी।
1: हमको लगता है विवाह के पूर्व बात करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, कम बात की जाए ज्यादा।
0: क्या पता लड़का गूंगा हो।
1: गूंगा हो तब एंगेजमेंट हुई तो देखा नहीं,
0: तो देख के पता चल जाएगा कि सामने वाला बोलता है कि नहीं।
1: अरे तो बतियाई नहीं होंगी का।
0: नहीं, सीधे सगाई।
1: सगाई तो हो गई, लेकिन कुछ लड़के ने बोला तो होगा भाई।
0: मुझे नहीं पता, उनका कहने का मतलब यही था कि कोई बात नहीं हुई, कोई चीत नहीं हुई।
1: नहीं तो बातचीत
0: नहीं, तो माहौल देखिए, माहौल देखिए। लड़के डर सकते हैं, लड़कियां इतनी बात पे ना डरे। वाह भाई वाह,
1: ना डरे वाली बात नहीं भाई।
0: जेंडर बाइज्ड हैं आप।
1: नहीं नहीं, जेंडर बाइज्ड नहीं, हमारे
0: लड़के तो शादी करें तो जांच पड़ताल बातचीत सब कर लें।
1: हाँ।
0: लड़की की शादी हो रही है बेचारी, वो बतियो ना करे।
1: तो लड़की को किसी ने मना थोड़े कर रखा,
0: मतलब वो जानना चाह रही है कि उन्होंने कहा था।
1: हाँ, कहा था ना, इसका मतलब गूंगा नहीं था।
0: नहीं, उनके घर वालों ने कहा था।
1: अभी आप बात चेंज कर रही
0: हैं। नहीं, तो मैंने आपको शुरू में उनके घर वालों ने कहा था कि फोन जाएगा तब बात होगी तुम्हारी।
1: हाँ, तो हो सकता है भाई, फाइनेंशियली वो लोग महीने का अंत चल रहा है, हो सकता है भी
0: तो
1: पैसा
0: ना। महीने हो गया, 10,000 का मोबाइल नहीं खरीद पा रहे थे, आजकल तो एंड्रॉइड मोबाइल सेकंड हैंड में मिल जाता है।
1: अच्छा, ये बात है, सेकंड हैंड नहीं, हो सकता है उसको आईफोन का सबसे बड़ा वाला दिलाने की सोच रहे हैं। पॉजिटिव सोचिए,
0: एक बटन वाला मोबाइल तो मिला नहीं, आप बता रहे हैं।
1: हम आपको बताए, बात शुरू करने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, तो उनका विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, हमको उनके साथ पूरी सिंपैथी भी है, सहानुभूति, चलो भाई बेचारे का विवाह संपन्न हो गया। तो
0: आप क्या कहना चाहेंगे हमारी वाई से, पहले बता दीजिए संदेश क्या।
1: नहीं, वाई को संदेश यही देना चाहेंगे कि एकदम गूंगे नहीं है भाई, कि आपने बातचीत थोड़ी बहुत की होगी, और अगर वो गूंगे निकल गए तो हम तैयार बैठे हैं। मतलब आप गलत समझ रहे हैं, उनका इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर वो गूंगे निकले तो हमारे मित्र की शादी हुई। तो उसने सोचा कि अब यार बातचीत शुरू कहाँ से की जाए, क्योंकि पहले तो फोन वोन होता नहीं था पुराने जमाने में,
0: नहीं वो वाला फोन होता था इसे घुमाने में, चर, चर, चर,
1: नहीं तो वो
0: वाला। हमारे साथ अभी सविता जी हैं, हमारे साथ अभी सबलू सावत जी हैं मुंबई से सुन रहे हैं, शिल्पी जी हैं, नागेश्वर जी हैं, इनकी भी एक समस्या है बड़ी, भी उसी उसका भी आएंगे हम लोग। गुड इवनिंग नागेश्वर जी, क्या हाल है? चलिए आप।
1: हाँ, तो भाई बातचीत हुई नहीं थी, तो लड़के ने कहा भाई बातचीत शुरू कहाँ से की जाए।
0: बात समझ में आया, चीत क्या होता है?
1: मतलब बात के साथ चीत होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं आप चीत कर रही हैं। जब दो लोग बतियाते हैं तो पहले वाले बात करने वाले को बात कहते हैं, दूसरा जो बतियाता है उसको चीत कहते हैं। हाँ, तो उसने बड़े प्यार से पूछा, वो जो है वो बिहार की साइड का था, तो उसने बड़े प्यार से पूछा तुहार नाम का बधे। हाँ, अब वो एकदम झल्लाई ही, उसने कहा कार्डवा में अपने भौजी के नाम छपो ले धला। हाँ, तो मतलब इस प्रकार का भी उत्तर मिल सकता है कभी कभी इंसान को, तो सोचता है भैया कहीं ऐसा ना हो, ऐसा उत्तर मिल जाए, तो इसलिए हो सकता है बातचीत भाई साहब कम करना चाह रहे हो। तो हाँ, लड़कियाँ बोल सकती हैं,
0: ये बात सही है, मतलब बिल्कुल सही बात है कि मतलब वो मूर्ख था क्या?
1: नहीं, मूर्ख नहीं था, उसने कहा जैसे होता नहीं कि बातचीत करनी है, दो अनजान लोग हैं बातचीत नहीं किए, तो जनरली इंसान यही पूछता है आपका नाम और क्या पसंद है आपको, मतलब उसने सामान्यतः ऐसे पूछा कि शुरू करनी है बातचीत तो शुरू करें, तो उसने पूछ लिया कि
0: ऐसा ना हो कि बात शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाए।
1: हाँ, तो मतलब उसने पूछ लिया कि भाई आपका नाम क्या है, जनरली पूछा होगा कि मतलब निक नेम क्या है, कार्ड पे तो हमने ये छपवाया था, लेकिन वो एकदम झल्ला के बोली, तो हमको लगता है कहीं कहीं जो है वो इंसान सोचता है भैया ना बतवाओ तभी ठीक है। अब ऐसे मेरा मानना ये है, शादी के पहले पत्नी सुनती है, फिर शादी के दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है, तीसरे साल के पश्चात दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं।
0: चलिए ऐसी बोलचाल आगे बरकरार रखेंगे, और चलिए हम एक गाना सुनते हैं, फिर इसके बाद वापस आते हैं अपने सवालों पर। तब तक के लिए हमारे श्रोताओं के भाई इनका सवाल ये है, नागेश्वर जी का हमारा सवाल है कि क्या है, तो रो भी रहे हैं तो इसलिए मुझे लग रहा है कि समस्या ही है, इनकी बोलचाल मुझसे बंद है, मुझे तो नहीं पता इनकी बोलचाल मुझसे बंद है, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझसे कहा है, तो चलिए इनकी बोलचाल अभी शुरू करा देंगे, और तब तक के लिए हम गाना एक सुन लेते हैं बढ़िया सा, जिसको एंजॉय करने के बाद आपकी जो है ना वाइब शानदार हो जाएगी। लेट्स
1: वाइब शानदार हो जाएगी।
0: वाइब नहीं जानते हैं, वाइब मतलब
1: अच्छा अंग्रेजी कमजोर,
0: तो डॉक्टर कैसे बने आप बिना पढ़े लिखे?
1: नहीं,
0: चलिए कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है, बहुत सारे ऐसे झोला छाप डॉक्टर हमारे इंडिया में काम करते हैं, लेकिन हम काम चला लेते हैं क्योंकि प्रेम से जुड़ा डॉक्टर हमारे पास थोड़े कमी है।

0: वापस से आरजे बीना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके शो गुंडा वैसे मसाला में। आरजे बीना वाला में और आपके साथ मौजूद हैं आपके अपने फेवरेट डॉक्टर लव। सो डॉक्टर लव, जैसा कि हमारे श्रोताओं की मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, नागेश्वर ने पूछा है कि सुना है, बताया है, पूछा नहीं है, बताया है कि सुना है वाइफ को पाइप भी बोलते हैं, ऐसा है क्या?
1: वाइफ को क्या बोलते हैं?
0: पाइप?
1: नहीं नहीं, वाइफ को वाइफ ही बोलते हैं क्योंकि वाइफ का फुल फॉर्म है।
0: ओके।
1: हाँ।
0: इन्होंने लिखा है, डॉक्टर मेरी बचपन से बीमारी है, मुझे मेरी गलती नहीं दिखती लेकिन दूसरों की गलती मुझे पहले दिख जाती है। मेरी गलती भी दिख जाए इसलिए आंखों में कौन सा ड्रॉप डालना जरूरी है?
1: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आपने आंखों में ड्रॉप नहीं डालना है, आंख में आपको हरे रंग का चश्मा लगाना है। जब सड़क पर चलना है तो हाथ के बल चलना है, पैर ऊपर रखना है। हाँ, चश्मा हरे रंग का और जो है वो पैर ऊपर, हाथ से चलिए,
0: बस अपनी गलती दिखना शुरू हो
1: जाएगी।
0: ये वैसे बहुत कॉमन समस्या और हमें से सब में होगी।
1: हाँ, इसलिए जो है वो हम तो कभी भी चलते हैं तो हाथ के बल ही चलते हैं।
0: तो जब भी किसी को कोई समस्या हो तो वो मतलब अपनी गलती जिसको ना दिखाई दे रही हो तुरंत हाथ पे चलना शुरू कर दे, उसे अपनी गलती तुरंत दिखाई देने लगेगी। इमीडिएटली,
1: तुरंत मतलब हरे रंग का चश्मा जरूर लगाएं।
0: हाँ, चश्मे का रंग थोड़ा हरा होना चाहिए। हाँ। ठीक है, ना हो तो घर पे पेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और डॉक्टर लव, हमारे जो एक और लिसनर हैं हमारे साथ, विजय जी मौजूद हैं, इनकी ज़िंदगी में आपने बहुत हरियाली भर दी थी और ये मुस्कुराते हुए हमेशा मिलते हैं हमें। और हमारे सबलू जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब पूछताछ जारी, सवाल इस तरह है कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है?
1: नहीं, बिल्कुल लव मैरिज 100% सही है।
0: अब मतलब मौजूदा हालातों के अनुसार?
1: हाँ, देखिए लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक ही फर्क होता है। लव मैरिज में ये कंफर्म होता है कि ये हमारी वाली ही गर्लफ्रेंड है, और अरेंज मैरिज में हो सकता है भगवान न करे किसी दूसरे वाले की आपके गले पड़ जाए। अतः पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें और फिर विवाह करें।
0: तो फिलहाल लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज के दौर में तो बिल्कुल लव मैरिज को
0: डॉक्टर लव नजर आ रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल,
0: सही जवाब है। और नागेश्वर लिखते हैं कि पता नहीं वाइफ के कितने नाम होते हैं, मेरी अगर वाइफ आएगी तो मैं सोना बाबू बोलूँगा।
1: नहीं नहीं, ये मत बोलिएगा, उसको बोलिएगा नीम, करेला, तुलसी, मिर्चा। अभी एक सर्वे हुआ बिना जी, हम बताएं आपको, हाँ, उसमें बहुत से लोग डायबिटिक पाए गए। तो डायबिटिक पाए जाने के पीछे का कारण ये था कि वो अपने जो है वो हाफ वन को सोना, स्वीटी, हनी, जानू, बाबू ये सब कहते थे, इसीलिए डायबिटिक हो गए। अब आप कहिए करेला, नीम, तुलसी,
0: जिससे तो आप, कि आपका इंसुलिन स्तर बराबर।
1: हाँ बराबर है, नहीं तो पतला कि सोना बाबू बोलने, स्वीटी बोलने के चक्कर में आपको स्वीट हो जाएगा भैया। और मधुमेह की जिम्मे बीमारी जो है बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए अपनी बीवी का नाम करेला रखिए, नीम रखिए। हम तो अपनी सबका नाम यही रखे हैं, किसी का करेला, किसी का लौकी, किसी का भिंडी। हाँ, सबको मतलब मैं सब्जियों के नाम से पुकारता रहता हूँ। एक का नाम काली मिर्च रख दिया है।
0: वाह।
1: हाँ, एक का नाम तीखी मिर्च,
0: नाम कम हो गया था तो इसे।
1: लाल मिर्च, हाँ, पीली मिर्च, अधपकी मिर्च, पकी मिर्च, ऐसे ऐसे करके नाम रखिए। मतलब हमको लगता है कि आप मधुमेह के शिकार कभी नहीं होंगे, अन्यथा स्वीटी बाबू जानू बोलने पर वो भी आपको ऐसे ही बोलेगी। अच्छा, हमारे साथ एक समस्या भी है।
0: क्या?
1: हम तीसों के नाम याद रख सकते नहीं हैं, तो इसलिए हम ऐसा इसका प्रयोग करते हैं कि तुम तो जानती हो हरी मिर्च, तो कहते हैं कल आपने काली मिर्च कहा था। हमने कहा कल काली मिर्च कहा था क्योंकि तुम काली साड़ी पहने हुई थी, आज हरी पहनी हो इसलिए हरी मिर्च कह दिया।
0: क्या बात है। हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आने वाला है हैप्पी कपल्स डे, तो क्या ये मना सकते हैं? ये वैसे सिंगल है।
1: अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत सुखी हैं, जान लीजिए। कपल्स डे मत मनाइए भाई साहब,
0: सिंगल्स डे मनाइए।
1: सिंगल्स डे मनाइए, ईश्वर जब तक किसी को सुखी रखना चाहता है तब तक उसका विवाह नहीं कराता।
0: और हमारे एक लिसनर है, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से ज़्यादा जुड़े हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं सेक्टर में, तो वो कह रहे हैं अपनी मतलब उनकी गर्लफ्रेंड अक्सर कहती है कि तुम बदल गए हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे नहीं पता मैं कब बदला, क्योंकि मैंने अपडेट का ऑप्शन अपने लिए तो कभी अप्लाई ही नहीं किया। तो वो जानना चाहते कि वो अपडेट कब हुए,
1: मतलब ये
0: किस दिमाग का सॉफ्टवेयर कब अपडेट हुआ।
1: नहीं मतलब
0: इनकी मतलब पत्नी या प्रेमिका जो भी, इन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि तुम बदल गए हो, रोज बोलती है।
1: ये ऐसा हम तो आदत से परेशान है। अगर आप न बदले तो लोग कहते हैं बताओ अभी भी तुम पहले ही जैसे हो,
0: जड़ हो।
1: हाँ, और अगर बदल जाओ तो कहते हैं अब देखो तुम बदल गए। पति बेचारा करे तो, इस दुनिया का सबसे बेचारा और अभागी प्राणी अगर कोई है तो बेचारा
0: अभागा।
1: हाँ, उसको अभागी मतलब जिसको लेकर भाग जाने का मन करे। हाँ, इसीलिए उसका नाम हस्बैंड है, जो बैंड की तरह पिटे और फिर भी हंसता रहे वही हस्बैंड। हाँ बेचारा, अंग्रेजों ने नाम बहुत सोच समझ कर रखा था। हाँ, जो पत्नी हिंदुस्तान में, तो जो पति पे रहे तनी वही है पत्नी। हाँ, और दोनों को मिला दीजिए तो होता है दंपति, यानी जब तक दम तब तक पति।
0: वाह,
1: ये अजीब सब शब्द अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, शब्द आपको बताएंगे कि हम ये हैं।
0: ये बात तो सही।
1: हाँ, जैसे नाउन की परिभाषा क्या होती है,
0: किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं।
1: नहीं, नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा जो घर घर दित बलौवा, नाऊ की पत्नी को नाउन कहा जाता है।
0: हाँ, ये बात तो सही।
1: हाँ, अब आप नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग करें। दर्जन, दर्जी की पत्नी को दर्जन कहते हैं, पता है आपको। अच्छा बताइए लाला की पत्नी क्या कहलाएगी, ललाइन। ठाकुर की
0: ठकुराइन।
1: अच्छा सुनार की
0: सुनराइन।
1: अच्छा तो बनिया की
0: बनिया।
1: देखिए गलत बात है ये आप ये आप नहीं कह सकती हैं। देखिए सोचिए कोई सुन रहा होगा तो क्या।
0: मिसेस गुप्ता।
1: ये आप कहिए मतलब
0: तब क्या कहे बताइए, सब यही तो कहते हैं। तिवारी की त्योराइन,
1: पंडित की
0: श्रीवास्तव की भी भाई बहुत सही बोलते हैं श्रीवास्तवाइन। अरे मैंने इतना सोचिए, एक लोग का मतलब सरनेम था भास्कर, तो भास्कर का क्या बनेगा सोचिए, भास्कराइन।
1: ये तो कहिए फिर भी ठीक है। हम आवास विकास कॉलोनी में रहते थे तो कथा थी, तो मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उधर से कोई खटखटाया दरवाजा, तो हमने दरवाजा खोले, हमने कहा क्या हुआ, कहें भैया अपने अम्मा से बता दियो कि आज केपाइन खिया कथा है।
0: अब मैं
1: जो है वो समझ नहीं पाया कि केपाइन के यहाँ कथा है। तो बहरहाल क्लास समाप्त करने के बाद मैं मम्मी के पास पहुँचा, मैंने माता जी से कहा कि मम्मी आज केपाइन के यहाँ कथा है। तो मैंने कहा हाँ कुछ फुटकर पैसा रखे हो तो दो, दिया बहरहाल। तुमने कहा मम्मी ये केपाइन कौन है। अरे कहीं समझो तुम कुछ जानते नहीं हो, सामने ही रहते हैं के पी सिंह, उन्हीं की पत्नी। अब बताओ केपी के पत्नी केपाइन, अब मुझे तो डर लग रहा है किसी दिन मेरी पत्नी का नाम मनुआइन ना हो जाए। सोचे लबाइन,
0: डॉक्टराइन
1: नहीं डॉक्टराइन लबाइन, सोचिए हम लब हैं तो हमारी मेरा लबाइन। अब ये कोई भाई बातचीत हुई, सोचिए मतलब ये सोचने वाली

0: हाथ में जल लेकर कसम खाकर कह रहा हूँ कि केपाइन हाउस गैस कॉलोनी में वो केपाइन के नाम से प्रसिद्ध है।
1: तो
0: हिंदुस्तान है, अंग्रेज जब यहाँ से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने जो हमारे साथ किया हमने बदला लिया। अंग्रेज क्या कहते थे, तुम क्या टलता है मैन, तो हमने कहा ठीक है बेटा तुम जाओ इसके बाद तुमको बताएंगे
1: हम अंग्रेजी का।
0: और सोचिए हमने अंग्रेजी के साथ क्या किया, अंग्रेजी विश्व की इकलौती भाषा है जिसमें मात्रा नहीं लगती लेकिन हम लगाते हैं मोबाइलिया
1: वाह
0: पेना बुका। देखे कभी सुना मोबाइलिया बैगवा बैग के साथ वा। सोचिए नेल कटरवा कहाँ धरा है, रिमोटवा चार्जरवा
1: लैपटॉपवा।
0: हाँ सोचिए मतलब हमने अंग्रेजों से कहा था बेटा तुम याद करोगे कि कभी भारतवर्ष आए थे और तुमने हमारे ऊपर शासन किया था। तो हम अद्वितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। भारतवर्ष के लोग किसी भी भाषा को बिगाड़ सकते हैं, कहने अगर लेडीजों ने खाना खा लिया हो तो जेंट्सों भी खाना दे दो।
1: तो
0: हमारी परंपरा है, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और विशेषकर भाषा में तो कोई तोड़ ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए हमारे श्रोता लोग कुछ लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब जब विकराल रूप ले लें तो क्या उसे अगरबत्ती का धुआं देना चाहिए या सिकाई। पत्नियां अगर विकराल रूप धारण कर लें तो क्या किया जाए, ऐसा विजय
0: पत्नियां अगर विकराल रूप धारण कर लें तो लाठी लेकर दो लाठी मारिए, उनका विकराल रूप पता नहीं कहाँ चला जाएगा, आए बाएं करती हुई ठीक हो जाएंगी।
1: डंडे और जब पतियों का जब दिमाग खराब हो जाए तो बिल्कुल उन्हें गरम में पैक करके सीमेंट कर दीजिए।
0: नहीं नहीं मतलब
1: ये एक अच्छा,
0: इसीलिए वो फाइबर वाली लाठी है
1: तो
0: ये जिससे
1: लड़कियां और औरतें जो भी सुन रही उन्हें ध्यान से ध्यान पूर्वक सुने कि आपको जब भी लगे कि आपका पति थोड़ा सा भी मतलब बाहर हो रहा है उसके मतलब ऐसी एक बार की बात है तो मतलब एक कपल था ऐसे दो जोड़ी बात कर रहे थे और मैं भी उसी होटल में बैठ के बात कर रही थी, मेरे पीछे के टेबल पे दो औरतें बैठी थी, कहीं यार तुम्हारा वाला तो बड़ा चिल्लाता है बगल में सुनाई देता है और तुम कैसे मैनेज करती हो, तुम्हारी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देती है, तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो। बहुत पूछे बोल, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, कुछ बोली नहीं, मुस्कुराए जा रही थी, कह रही थी यार तुम्हारा धैर्य बड़ा टाइट है यार, मुझे भी सिखाओ कैसे तुम इतना बर्दाश्त कर लेती हो, इतना चिल्लाता है चीखता है पागल की तरह। तो वो बोले कि मैं बस एक काम करती हूँ। उसने पूछा क्या, कहते मेरे जो हस्बैंड का ब्रश है मंजन करने वाला उसी से लैटरिन साफ कर देती हूँ। सुबह उठती हूँ जो मेरे घर का जो फ्लश है उस पे उसको मैं मतलब उसको अच्छे से उसी से साफ कर देती हूँ, फिर रख देती हूँ, मेरा हस्बैंड कर लेता, मुझे संतुष्टि मिल जाती है।
0: क्या तरीका है क्या?
1: तो मतलब मुझे लगता है कि आपने इतनी अच्छी सलाह दी तो मुझे भी एक सलाह देनी ही चाहिए।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। ये आप, मतलब हमको लगता है कि
1: नहीं तो मैं जा रही हूँ,
0: ये लगता है ये अप्लाई हो रहा है आपके घर में।
1: नहीं मेरे घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपने जैसा सलाह दिया तो मैं मतलब मुझे भी एक सलाह देनी ही पड़ेगी
0: तो भाई
1: औरतों के हित में।
0: नहीं हिंसा का उत्तर आप जो है वो जो है बस को उससे साफ
1: कर। देखिए आपने हिंसक बात की, मतलब हिंसक बात की कि दो लाठी उठाएं तो मतलब ये तो एक हिंसा वाली बात हो गई डॉक्टर लव की तरफ से। देखिए मेरी तरफ से देखिए एक संतोषजनक उपाय,
0: संतोषजनक
1: किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाया जा रहा है।
0: सोचिए, लेकिन ये सोचिए कि भाई उसी पत्नी का जो है वो कई पत्नी ने आधा खाना आधा लड्डू खाया और आधा
1: के डब्बे में पैक करने से तो ठीक।
0: नहीं नहीं हम ये कह रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए पति ने आधा लड्डू खाया और फिर पत्नी से कहा लो आधा तुम भी खाओ, तो पत्नी
1: कहाँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पूछता है।
0: नहीं नहीं
1: बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पूछता है लेकिन पति कभी जिंदगी में नहीं पूछता तुम वो खाओगी, अरे लाओ पहले मुझको दो मैं।
0: अरे नहीं भाई हम देखा है हमने
1: तो डॉक्टर लोग आप लड्डू पाते ही नहीं होंगे आपके घर में, 1 किलो में मुश्किल से 30 लड्डू चढ़ता है तो 5 किलो लड्डू ले जाते हैं रोजा।
0: हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए उसने फ्लश से साफ तो कर दिया, पति को लड्डू मिला उसने आधा खाया, उसको
1: तो
0: कहा कि
1: नहीं, अरे जब उसको पता है कि वो फ्लश साफ कर रही है तो वो क्यों खाएगी,
0: क्यों खाएगी तो क्या कहकर मना करेगी, जरा आप ये बताइए।
1: वो ये अब आप जान गए तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर में जाके ये फार्मूला।
0: नहीं वो फार्मूला की बात नहीं है,
1: डॉक्टर लव ये सोच रहे हैं कि मेरे घर में भी तो कहीं ये टेक्निक नहीं चल रही, अब मैं क्या करूं।
0: वो टेक्निक नहीं चल रही, मैं ये कहूंगा कि वो मना क्या क्या कहेगी।

0: करके।
1: बहुत ऑप्शन है कि मेरा व्रत है मैं नहीं खाऊंगी, मुझे मीठा नहीं पसंद, क्योंकि रोज तो वो पूछता नहीं है, एक दिन अचानक से पूछ के क्या होगा, यही कह देगी 500 बात यही सुना देगी कि आज तक जिंदगी में नहीं पूछे।
0: अरे चलो यार, जिंदगी में नहीं पूछे लेकिन
1: हम वो
0: कहेगा कि भाई चलो आज तो पूछा।
1: ये बताइए आप लोग में से, खास तौर पर फीमेल लिसनर से बात करना चाहूंगी, कि कोई ऐसा है जो किसी खाने के लिए चीज के लिए मना करने के लिए उसे बहुत बड़ा बजट गिराना पड़े, वो आराम से मना कर सकता है,
0: बिल्कुल
1: नहीं खाना।
0: आपने स्नेकर वाला जो है वो देखा होगा।
1: अब आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए आपको जितना मर्जी संतुष्ट करना है कर लीजिए। अब आप ये बता रहे हैं जनहित में जारी करें कि भाई खाओ।
0: भाई देखिए पतियों, आपसे अनुरोध है कि आप कभी भी आपको अगर ऐसा लगे तो आप तुरंत आधा
1: आधे से ज्यादा लोग जिनकी शादी है सब ब्रश करिए,
0: आधा जो है वो खाइए और आधा खाने के बाद आधा पत्नी को खिलाइए। अगर ये ब्रश वाला काम जो होगा ये तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगा, क्योंकि पति तो बेचारा अनजाने में खा रहा है लेकिन खाते समय जो पत्नी का हाल होगा, आहा
1: नहीं, पत्नी तो नहीं खाएगी।
0: नहीं खाएगी कैसे नहीं भाई,
1: तो आप बताइए। लेकिन हमारी जो फीमेल्स हैं वो उतनी मूर्ख नहीं है।
0: मूर्ख नहीं है तो भाई पति भी मूर्ख है क्या?
1: बिल्कुल है,
0: हाँ बिल्कुल मूर्ख है, तभी तो उन्होंने शादी की। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर वो समझदार होते। हमारी पत्नी ने हमसे एक दिन कहा कि हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए लेकिन जो है हम किसी ने जो है हमने तुमसे शादी की, तुमने कहा सब समझदार थे बच गए, जो दुर्भाग्यशाली था वो बेचारा फंस गया, अब उसके लिए क्या किया जाएगा।
1: तो बाकी 29 ने क्या कहा?
0: तो बाकी 29 ने क्या कहा? सबका सा ज़्यादातर पत्नियाँ कहती हैं इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, तुमने कहा सब बुद्धिमान थे बच गए, हम मूर्ख थे फंस गए। तो भगवान भैया जिसको फंसा दे, ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ समझिए,
1: हारे का सहारा
0: माँ, पति देव हमारा जितने पति देव हैं।
1: अनिल जी लिख रहे हैं पति मनुहार करेगा अपने प्रेम की दुखाई देख खिलाएगा। आप मनुहार करते रहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखे, ये अनुभवी व्यक्ति निकले, ये जो है अनिल जी बहुत अनुभवी व्यक्ति है।
1: अनुभवी, अरे बहुत मनुहार हो चुका अब। अब आप आज से तो मनुहार शुरू करेंगे। इतने दिन तक क्या आपने कर लिया?
0: नहीं, इतने दिन तक तो कर लिया।
1: चलिए एडवाइस,
0: अंग्रेजी में कहावत है इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, हिंदी में कहते हैं जब से जागो तब से सवेरा। पतियों जो कुछ भी खाओ पहले पत्नी को खिलाओ,
1: और पत्नियों एक नई टेक्निक खोज के निकालो।
0: हाँ अब एक टेक्निक तो
1: बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती है, और निकालती भी हैं।
0: निकालती भी है, हमारी वाली तो कान में हेडफोन लगा लेती है।
1: और अच्छा एक और थी भाई, उसने क्या बताया भाई? वो बोली कि मैं तो, मतलब उसने जब उसका सुना तो बोली अच्छा तुम इतना बढ़िया खतरनाक कांड करती हो, मैं तो यार बस यही करती हूँ जो उसकी फेवरेट शर्ट रहती है उसको अपनी साड़ी के साथ भिगो देती हूँ, बस पूरा फ्रस्ट्रेशन खत्म।
0: मतलब
1: सबसे मतलब साड़ी रंग छोड़ देती है, शर्ट खराब हो जाती है।
0: साड़ी का रंग छोड़ देगी, धोती रंग क्या बिना जी, आप साड़ी का भी रंग छोड़ती है धोती?
1: नहीं, आजकल महंगी वाली जो साड़ियाँ होती है ड्राई क्लीन वाली, वो अपनी साड़ी का कुर्बानी कर देती है सामने वाली की शर्ट बिगाड़ने के लिए। किसी की खुशी छीनना इज सबसे बड़ा रिवेंज।
0: अच्छा मतलब किसी की, मतलब भले हमारी साड़ी खराब हो जाए लेकिन उनकी शर्ट लेकर हम, मतलब आप इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं?
1: अरे गुलाबी है थोड़ा, मतलब जैसे रानी पिंक है थोड़ा हल्का पिंक रह जाएगी, लेकिन सफेद शर्ट का तो आप बैंड जानते ही
0: नहीं। वो तो बात सही है लेकिन मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुझे लगता है बहुत मूर्ख पत्नी को ऐसी होगी।
1: प्रिय महिलाओं को बहुत सारी सलाह मिल गई लेकिन हमारी महिलाएं कहीं गायब दिखाई दे रही। शिल्पी जी आप कहाँ हैं? आप जरा मैदान में आई और आप भी अपने दिल का दर्द बयां करिए। और चलिए इसी के साथ हम दर्द को दूर करेंगे इस प्यारे से गाने के साथ। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए सुनते रहिए अपना ऑल रेडियो स्टेशन 89.6 FM गोंडा शहर की तरफ।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ मेरे नमस्ते।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
0: संतोष कुमार, ग्राम पोस्ट गिलवली, जनपद गोंडा से बात कर रहा हूँ मैं।
1: जी संतोष जी, पहले तो स्वागत है आपकी आवाज का। कैसे हैं संतोष जी, क्या हाल है?
0: बहुत एकदम फिट एंड फाइन हूँ, चकाचक है इसमें।
1: डॉक्टर लव से क्या सवाल करना चाहते हैं? अगली आवाज डॉक्टर के।
2: जी नमस्कार।
0: हाँ सर जी नमस्ते।
2: जी नमस्ते।
0: क्या हाल कैसा है सर जी?
2: आप बताइए, आपको कोई दुख तकलीफ चिंता परेशानी कष्ट मुसीबत गिला शिकवा शिकायत तमन्ना इच्छा ख्वाहिश झटका कुछ हो तो तुरंत बताइए।
0: अभी तो ईश्वर की कृपा से ना कोई चिंता है, ना कोई अफसोस है, ना कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या।
2: मतलब आपकी शादी हो गई है?
0: हाँ शादी हो गई, लड़की की शादी कर दिया, एक बच्चे का शादी कर दिया।
2: बच्चे
0: हम खुश रहते हैं,
2: बहुत खुश रहते हैं। आपकी पत्नी आपके साथ ही रहती है?
0: हाँ हमारी पत्नी भी हम।
2: बहुत बढ़िया है, मतलब आपकी पत्नी आपके साथ रहती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, कभी कोई नोक झोंक होती है कि नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं सर, झूठ कैसे बोले हम। ऐसा मौका भी नहीं आया जब तक, आज कम से कम 25 साल होगा कि कोई
1: ही नहीं। तो हम तो कहते हैं कि आप कोई सलाह दे दीजिए, कोई आप सलाह दे दीजिए जिससे कि लोगों को थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट मिले आपके सुखी जीवन के, कुछ कहते हैं ना कि नुस्खे।
0: नहीं मैं अपने सारे श्रोताओं को कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के प्रति कोई ऐसा गंभीर विषय न प्रस्तुत करे घर में कि उनको कोई उलझन हो। जब आप घर पर आए, भले ही मानसिक आप कोई चिंता में है या कोई कोई परेशानी में, तो आप अपनी परेशानी आप अपने अंदर रखिए और जो परेशानी आप के ऊपर है वो खाली आप ही इसको दूर कर सकते हैं या ये भी आप दूर कर
2: सकते। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, तो भाई आधा अंग हमारा तो वो है, तो आधी परेशानी तो मुझसे बांटेंगे।
0: सर वो तो बात ठीक है, लेकिन जैसे कुछ पुरुष देखते हैं कि आते हैं घर पर, नोक झोंक करते रहते हैं, उसी में खाना बन जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं, बीवी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि पापा झगड़ा किए हैं। कोई कोई आदमी दारू शराब पीकर आता है, तो वो भी एक मानसिक कला है अपने जीवन में।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: और फिर सारे श्रोताओं को कहता हूँ कि महिलाओं के पास इतना उलझन में न रहे कि महिलाएं का नाम है जो बात बोलते हैं वो अगर उसी में रहेंगे तो आपका आप उस मंजिल के ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते हैं।
2: हाँ, महिलाओं की बात नहीं, अगर आप मानेंगे तो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे।
1: तो आपका सवाल महिलाओं की बात न माने क्या है?
0: हाँ मैम,
1: डॉक्टर लव से आप क्या सवाल करना चाहते हैं?
0: मैं सबसे यही सवाल करना चाहता हूँ मैम कि मैं संदेश देना चाहता हूँ लास्ट अपने रेडियो ज्ञान स्थली के माध्यम से कि अपने महिलाओं अपने बेबी बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि वो आपके संस्कार में ठलती चली जाए।
1: क्या बात है, मतलब संस्कारों की नींव होगी तो मकान काफी ऊंचा और काफी मजबूत बनेगा, क्या कहते हैं?
0: हाँ सर, मैं अभी हमारे 44 साल का उम्र है मैम, आप सुनिए, मैं अपना मकान घर दुकान और पापा, मैं जब 1994 में मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो मैं बॉम्बे था, 16 साल की उम्र।
2: मुझे आश्चर्य है कि आप मात्र 44 स्वीट 44 के हैं।
0: हाँ सर, और
2: एक लड़की
0: फिर उसकी शादी कर दिया, एक बच्चे का शादी, एक लड़का अभी बाकी है, लेकिन घर मकान गोंडा में यहाँ गिलौली में पूरा मैं अपना मामला एकदम चौबन किया रहता है।
1: मुझे लगता है कि आपने प्रगति की जो मतलब शुरुआत है काफी अर्ली कर ली, बहुत शुरुआती दौर रहा होगा मुझे लगता है, मात्र 14-15।
0: हमारी बीवी का भी सहयोग रहा मैम,
2: सही
0: हो रहा हूँ मैं, जैसे बहुत पैसा कमाता हूँ अगर बीवी उसमें।
1: हेलो संतोष जी।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो संतोष जी, संतोष जी कुछ बता रहे थे अपनी पत्नी के बारे में।
2: जी बता रहे थे कि बहुत आज्ञाकारी हैं।
1: नहीं कुछ अपनी पत्नी के सहयोग को भी यहाँ साझा करना चाहते हैं। लेकिन बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही कि संस्कारों की नींव अगर होगी तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। और मुझे लग रहा है संतोष जी का पुनः कॉल आ रहा है, चलिए ऑन एयर करते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर लव, मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही, आप ट्राई करें।
2: हेलो
1: हेलो संतोष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि हमारी आवाज़ नहीं जा रही है और नेटवर्क इशू की वजह से बात नहीं हो पा रही है, सॉरी टू से संतोष जी। और क्या करें हम, मतलब कभी कभी क्या होता है नेटवर्क ऐसा ही होता है। डॉक्टर लव से पूछ रहे हैं नवीन जी कि क्या आप भाभी जी से डरते हैं?
2: बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल आपकी पत्नी से तो डरते ही, अपनी पत्नी से कौन डरता है?
2: अपनी पत्नी, दूसरे पत्नी नहीं डरते हैं आप अपनी।
1: और एक और कॉल आ चुका है, लगातार कॉल आ रहा है लेकिन यहाँ नेटवर्क का इशू हमें परेशान कर रहा है। हेलो हेलो, हमारे श्रोताओं को मैं बस एक सलाह देना चाहूँगी, जब भी आप कॉल करें तो आप खुली जगह में रहें, कोशिश करें कि मतलब जैसे बंद कमरे में या ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं जाएं जहाँ पे मतलब आवाज़ ना अच्छे से आए। अगला कॉल मैं ऑन एयर लेती हूँ, देखो आप किसकी बारी है। हेलो, ये कॉल तो आ गया भाई, लग रहा है खुली जगह में। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम?
0: रईस बोल रहा
1: हूँ। ओ रईस जी, कैसे हैं, क्या हाल है?
2: आपका नाम रईस है लेकिन आप कंजूस बहुत हैं।
0: जी साहब।
2: हाँ जी साहब, क्या है?
1: जी साहब।
2: हाँ, इन्होंने जो है वो न ईद में सेवई खिलाई न बकरीद में सेवई खिलाई है,
1: थोड़ा कंजूसी की पराकाष्ठा पे पहुँच गए हैं
2: ये रईस जी। इतनी रईस
0: नहीं, ऐसी बात नहीं मिला मैम।
2: हाँ
1: तो सेवई तो आज तक हमारे पास पहुँची
2: नहीं।
0: एक तो लोग को साथ भी खिला देंगे ना।
2: एक ही उम्मीद थी आपसे कि कोई और हो ना हो, लेकिन हमारे रईस जी जो दिल से भी रईस हैं।
0: और
1: हमारे आरजे अदनान भी हमें नहीं खिलाते हैं।
2: हाँ सोचिए, हाल नहीं तो आपको उनके घर जाना।
1: हमारे आरजे अदनान भी हमें खिलाना भूल जाते हैं कभी कभी।
0: अच्छा वो भी नहीं खिला रहे हैं?
1: और क्या।
0: अच्छा, ये तो
2: नाइंसाफी
0: है।
2: बिल्कुल
1: नहीं, उनकी वाली नाइंसाफी मुझे समझ में आती है लेकिन आपकी नहीं समझ में आती, आपको तो खिलाना चाहिए।
0: अच्छा तो भाई हम बिल्कुल सेवा करेंगे आप लोगों की।
1: तो ये बताइए आपका सवाल क्या है डॉक्टर लव से आज?
0: सवाल यही है कि कल बारिश हुई, कुछ पानी बराबर बरसा नहीं हो रहा और आग भड़क गई।
2: आग भड़क गई, कुछ लोग बीपी के शिकार हो गए
0: जी। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
2: बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आप विवाहित हैं या शादीशुदा हैं?
0: जी?
2: मतलब विवाहित है या शादीशुदा है?
0: अरे ये सवाल कंफ्यूज वाला है।
2: अच्छा नहीं, कंफ्यूज वाला क्या है, आप विवाहित
1: आपका
2: हैं?
1: कबूल है हुआ है
2: ना?
0: अरे ये कबूल नहीं हुआ है अभी।
2: कबूल नहीं हुआ है अभी। बस जल्दी इसको कबूल कराइए और छुहारा बटवाइए। वो आपके छुहारे के कारण जो है वो आसमान से पानी मानसून नहीं आ रहा है, रुका हुआ है। कह रहा है जब तक छुहारा बटेगा नहीं तब तक बरसेगा नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो रहा था।
2: तो वो छुहारा कब खाने को मिल रहा है?
0: बहुत जल्द।
2: बहुत जल्द मतलब इंशाल्लाह
0: हम दोनों लोगों की सेवा में हाजिर होगा।
2: हैं?
0: दोनों लोगों की सेवा में।
2: नहीं ये कहाँ बारात जा पाएंगी, बारात तो हम ही जाएंगे लेने।
0: नहीं नहीं बारात जा नहीं पाएंगी लेकिन मतलब गिफ्ट तो उन तक पहुँच जाएगा।
2: हाँ गिफ्ट पहुँच जाएगा।
1: क्या बात है।
2: लेकिन आपकी, अरे आपकी पत्नी को देखना इनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ये कहीं भी जाती हैं तो कहते हैं,
0: अरे स्टूडियो लेके आ जाएंगे ना।
2: हाँ कहीं भी जाती हैं कहती हैं दुल्हन देख लें बस समझो काम हो गया।
0: मीना मैडम ये बात सही है।
2: हाँ
1: बिल्कुल शत प्रतिशत। हाँ,
2: मतलब ये पता नहीं क्यों।
0: अच्छा तो अच्छी बात है और क्या।
2: स्वयं जो है वो पत्नी होकर दूसरे की पत्नियों को देखती हैं, हम समझ नहीं पाते इसका कारण क्या है। बता नहीं रही हमसे।
1: हमने हम चाहते हैं कि और भी लोगों पे कोई मतलब कहते हैं ना पत्नी तनी रहे जैसे हम तने हैं वैसे ही। तो चलिए रईस जी, मैं चाहती हूँ कि आपकी जो मुराद है जल्दी पूरी होगी और जल्द बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। बस ये कहते हैं ना कि जब इंतजार ज्यादा होता है ना तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया होता है।
2: लग्गी हमने मंगवा ली है इंग्लैंड, लग्गी मंगवा ली है इंग्लैंड से।
0: अब, जी जी जी।
2: अब खाली खुदिहालना है। हाँ वो खुदिहाल कल तनिक भर खुदिहारे थे, अब आप क्या चाहते हैं आज कायदे से खुदिहार दें?
0: हाँ
2: मतलब आप सेवई खिलाइए हम इधर खुदिहार देंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: बिल्कुल खिलाएंगे साहब,
2: बारिश हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको अपने यार को हंसाना पड़ेगा ना।
1: हाँ ये बात तो सही
2: है, बिना यार को हंसाए, अरे बिना यार को हंसाए बारिश कहाँ होगी। नहीं सुना है मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए।
0: अरे वो तो गाना है,
2: वो रियलिटी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गाया।
1: कवि का अभिप्राय जो है वो यही है कि मुस्कुराना बहुत जरूरी है।
2: हाँ तो मेरा यार हंस रहा है।
1: कोई बात नहीं, हमारे लिसनर्स भी हमारे दोस्तों की तरह ही हैं, यारों की तरह हैं, ये हंसेंगे और बारिश होगी।
2: बारिश होगी, पहले आप हंसिए, हंसिए तो ये बिना जी
1: वैसे अब बारिश जरूर
2: रहेगी। ये लंकापति रावण का ठास।
1: चलिए आपके आपके हंसने का इंतजार था और अब बारिश तो जल्द हो जाएगी, लेकिन गाना सुनाने की बारी अब मेरी है। थैंक यू सो मच रही जी आपके कॉल के लिए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, शुक्रिया। तो रईस जी से बात हो गई है और गाना भी बजने को तैयार है और समय भी अब टाटा बाय बाय कहने को तैयार है। अब हम लेते हैं आप लोगों से कुछ ही मिनटों में इजाज़त। एक और कॉल ऑन एयर करने की बारी, चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
3: हेलो,
1: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम।
3: बस इतना ही बोलिए कि प्रणाम बोला आपने, बहुत अच्छा है क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं।
1: जी जी,
3: मैं गोरखपुर से अनिल बोल रहा
1: हूँ। आवाज से मैं पहचानने का प्रयास कर रही थी लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट।
3: नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मेरी आवाज बदल गई हो।
1: थोड़ा
3: मुझे, मुझे डॉक्टर लव साहब से बात करनी है।
1: डॉक्टर लव हमारे साथ
2: जी, नमस्कार,
1: आपकी आवाज सुनने को तैयार।
3: अरे नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: जी नमस्कार, नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, मैं आपसे दो सवाल पूछने हैं।
2: अच्छा दो पूछने
3: जी
2: जी।
3: पहला मेरा प्रश्न वो है, इसको थोड़ा मंथन कीजिएगा
2: जी,
3: पहले का प्रेम,
2: हाँ,
3: पहले का प्रेम,
2: हाँ,
3: और अब का प्रेम में क्या अंतर है।
2: अच्छा बिल्कुल सही सवाल।
3: दूसरा सवाल मेरा ये है,
2: हाँ,
3: जो आपने क्वेश्चन किया था ना मैम
2: जी,
3: कि वो कपड़े में धुलने वाला चक्कर, तो मैंने मैसेज भी किया था कि मैं भुक्तभोगी हूँ
1: जी।
2: अच्छा,
3: कि कितना कोई पढ़ ले करता वही है जो उसका मन में होता।
1: ये बात तो सही,
2: तो मतलब ये पहले के प्रेम में हमको लगता है कि इंसान सीरत देखता था और आज के प्रेम में हमको
3: देखिए ये जीवन में का यही है रंग रूप की, कभी छांव कभी धूप, और दूसरा कभी ठंडा कभी गर्म, कभी मीठा कभी खट्टा, यही तो टेस्ट है जो समाज को एक लेके चलता है।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
3: जी जी,
2: तो मतलब पहले का
3: और
2: प्रेम,
3: आपका प्रोग्राम रियल बताऊं कि आज मुझे बहुत पसंद है आज का, मतलब सुना शायद एक दो बार होगा लेकिन जो आज का सुना हूँ रियली कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया लेके आज चली है आप लोग, तो आप लोग इसके भाई धन्यवाद के बहुत ज्यादा ज्यादा पात्र हैं आप सभी लोग।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे डॉक्टर लव जो हैं आतुर हैं एकदम।
2: हाँ
3: नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे जवाब चाहिए डॉक्टर साहब।
2: नहीं मंथन कीजिएगा तो मंथन से हमको मंथरा याद आ गई, पुराने पुराने जमाने में प्रेम के बीच में मंथराएं नहीं होती थी, आजकल हमको लगता है मंथरा हो रही है कुछ ज्यादा।
3: नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मैं पहला मेरे सवाल का जवाब
2: जी
3: बोले सर,
2: हम ये कहते हैं कि पहले जो प्रेम था वो सीरत पर था, इंसान के मतलब
1: मन से
2: चारित्रिक गुणों पर था, उसकी आत्मिक सुंदरता से था, और आज की जो मोहब्बत है ये समझ लीजिए आज हुई कल, आज ब्रेक होता है एक महीने में सब कुछ हो जाता है, स्लैब दे कि चॉकलेट दे ये दे उसी में हक दे,
1: फिर ब्रेकअप डे,
2: हाँ फिर ब्रेकअप डे, अब वो सुनने पाए अंग्रेजी जानते नहीं थे, उन्होंने कहा आज हक डे है तो हमने सुनने का ये हम यहाँ काम बनाएंगे, तो अच्छा ही अंग्रेजी हमारी कमजोर थी तो ये जो है वो
3: मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी और मेरी एक्सपीरियंस बोल्ड
2: है। हाँ बहुत एक्सपीरियंस, मतलब आजकल जो है वो तन की खूबसूरती पर मोहब्बत है,
1: अनुभव तो बहुत है डॉक्टर लव को।
3: नहीं नहीं मैं यही कहता हूँ कि आप उनकी जो असिस्टेंट आई सेंस कि नर्स जो आप हैं, वाकई आपको पास अनुभव का ज्यादा होना चाहिए,
2: बस यही अपराध में हर बात करता हूँ।
3: इतने ज्ञानी डॉक्टर के साहब के साथ रह के तो, लेकिन कभी कभी आपका भी सवाल तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। जैसे मैं था, अरे मैं आपके असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ।
2: जी जी, तो काफी ट्रेनिंग दी है हमने।
3: अरे वाकई उनका जो अभी क्वेश्चन था तो उसी पे तो मैंने दूसरा मेरा था। मैंने बोला मैं भुक्तभोगी हूँ।
2: हाँ वही भुक्तभोगी हूँ। हाँ अब ये जो है वो वेल ट्रेंड नर्स है हमारी समझिए।
3: चलिए आप लोग का शो इसी तरह चलता रहे, आप लोग लोगों के दिलों में गुदगुदियां करते रहें, यही तो जीवन है, बाकी कोई जीवन नहीं।
2: बस यही जीवन, जीना इसी का नाम है।
3: मतलब देखिए मुस्कुराते रहिए, कल होगा नहीं होगा प्लानिंग आदमी करता है, लेकिन जब है, है। चलिए आप लोग का मैं ज्यादा समय ले लिया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सॉरी भाई,
1: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अनिल जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।
3: अरे नहीं नहीं, आप लोगों को भी, और कोई बढ़िया गाना सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं समय हो गया है आप लोगों से दूर जाने का, और कॉल्स जानते हैं ना कि हम लोग होल्ड नहीं करवा पाते, तो क्या कहते हैं डॉक्टर लव
2: जी? तो
1: कोई आखिरी मतलब जो सुझाव देना चाहते हैं?
2: बस आखिरी सुझाव यही है कि जो है वो लग्गी मंगवा ली है लंदन से, चिंता मत कीजिए, वो खुदियार देना है और बहुत जल्दी आपको परेशानी से जो ठंडक है ये, इसको हम गर्मी में चेंज कर देंगे।
1: अरे वाह क्या हाँ। बात है।
2: तो अब आप लोग निश्चिंत रहिए, रजाई निकाल लीजिए, कंबल निकाल लीजिए और जाड़े की प्रतीक्षा कीजिए।
1: और इसी के साथ मुझे लगता है हम लोग को भी इजाज़त ले लेनी चाहिए।
2: जी बिल्कुल ले लेनी चाहिए। और आप चलिए पहले कंपाउंडर पर देखिए आपने इमरजेंसी के आज कितने केस लगा रखे हैं।
1: अरे बहुत सारी लंबी, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना एक लंबी लिस्ट है।
2: लिस्ट है तो चलिए फिलहाल
1: सुबह से ही लगे हुए हैं। तो चलिए चलते चलते ये प्यारा सा गाना सुनते हैं और लड़कों के दर्द को इस गाने के साथ भी समझते हैं। लता जी की आवाज़ में छाया फिल्म से, छाया फिल्म जो कि 1961 में आई थी। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए। लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक। और आप सुन रहे थे शो गुंडा मैसे मसाला, आरजे बीना वाला, अपनी फेवरेट आरजे बीना और डॉक्टर लव के साथ। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड। कुछ ही देर में आप सुनेंगे अपने नाम से गीत, यानी कि गीत आपके नाम से, आरजे सिंपल के साथ।

सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो पर माय शिवी द आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन स्टे

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी सैटरडे नाइट स्पेशल वाली प्लेलिस्ट को नहीं खोली है भाई, अब तो खोल लो क्योंकि तूफानी परमाइशी की महफिल एकत्रित हो चुकी है और हम सब एक के बाद एक पावर पैक गानों की फरमाइशें करेंगे और एक दूसरे की जज्बातों की कद्र करते हुए एक दूसरे की फरमाइशी गीतों का आनंद लेंगे। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, इसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। तो क्या हाल चाल है, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, मैं जागू मेरे बिन तू कैसे सो जाती, और शनिवार राती सच में हमें नींद नहीं आती। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले आप सभी का इस्तकबाल है विजयपाल यादव जी ललोवा लखीमपुर खीरी से, नवीन राजपूत जी एमपी से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, बबीता गोंडा से, नागेश्वर धाकड़, दीपक हथियागढ़ गोंडा से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, लवली सिंह गोंडा से, राजेश कुमार बेदर्दी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जिरानी बाजार सुनार गली गोंडा से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सबीहा गोंडा से, चांदनी गोंडा से आप सभी का स्वागत है, इम्तियाज अहमद एन मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी, अरे क्या ही बताऊं किसकी, अरे वो है ना हमारी प्यारी सी बहुत ही स्वीट सी आशा मिश्रा जी, जो कि हैं लखनऊ से। सो नवाबों के शहर लखनऊ से आशा मिश्रा जी की फरमाइश आई हुई है, धरती कहे पुकार के मूवी के गाने की जा रे कारे बद्रा बलमा के। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारी आशा मिश्रा जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। किसी का कहना है कि मुलाकातों में जरा सा फासला रखिए हुजूर, मुलाकातों में जरा सा फासला रखिए हुजूर, कहते हैं बेताबियों में इश्क खूबसूरत होता है। अच्छा, स्टे ट्यून्ड।

0: धरती कहे पुकार के मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है लता मंगेशकर जी की आवाज में, आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन इस फरमाइशी गीत को सुनने के बाद में मुझे कुछ याद आया है। मैं कहना चाहूंगी कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है मोहब्बतें मूवी का गाना, आंखें खुली हो या हो बंदीदार उनका होता है।
1: लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में मोहब्बती का ये नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों। अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है सैदापुर से, और इसी के साथ में अनिल जी का कहना है कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से, और नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है अंदाज मूवी का गाना आज कहना जरूरी है। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से सुपर डुपर हिट नगमा अलका याग्निक जी की आवाज में और उदित नारायण की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी रहो।

सांस तुम भी न अधूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, और बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। हमने इंजॉय के हल्का याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में ये नगमा अनिल वर्मा की फरमाइश पर जो की है सैदापुर से, और हमारे लिसनर का कहना है नागेश्वर धाकड़ का कि दिल में प्यार कितना है, ओ सॉरी ये फरमाइश थी नवीन राजपूत जी की एमपी से, इट्स माय मिस्टेक। और नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि दिल में प्यार कितना है आजमा कर देख लो ना, दिल में प्यार कितना है आजमा कर देख लो ना, आंखों में ख्वाब किसके हैं ये हमारी आंखों में देख लो ना, क्यों पूछते हो कि दिल की गहराई लोगों से, क्यों पूछते हो दिल की गहराई लोगों से, आप खुद ही उतर कर देख लो ना। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। बबीता जी को गोंडा से सुनना है गाना हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। सो अलका याग्निक जी की आवाज में ये ब्लॉकबस्टर नगमा दर्द भरा गाना एंजॉय करते हैं हमारी बबीता जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड आते हैं। इस गाने में सबसे सुंदर मुझे ये लाला लाला लगता है। आप लोग को क्या लगता है इस गाने में सबसे खूबसूरत, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना।

और हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। अलका याग्निक की आवाज में हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर हिट दर्द भरा नगमा। बबीता जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश को एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके पहले नागेश्वर धाकड़ की शायरी का जवाब भी दे देते हैं फटाफट से। मैं कहना चाहूंगी आपसे नागेश्वर धाकड़ जी बहुत ही प्यार से कि इतने गहरे हैं आपके दिल के जज्बात कि हम तो किनारे पर ही अटक गए जनाब। इतने गहरे हैं आपके दिल के जज्बात कि हम तो किनारे पर ही अटक गए जनाब। उतरने की बात तो आपने कर दी पर हम तो आपकी शायरी सुनकर ही भटक गए जनाब। सो एंजॉय कर लेते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

ठाकुर की फरमाइश पे ये नगमा बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। कृष्णा वर्मा, राम वर्मा और राकेश वर्मा दुकरनाथ गोंडा से और अरमान पटेल नगर गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपक जी की, हथियागढ़ गोंडा से। इनको सुनना है गाना दिल के झरोखे में आ जा, चंदा सा मुखड़ा दिखा जा। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट सदा बहार और हर रोमांटिक वाला नगमा अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में हमारे हमारे हमारे दीपक जी की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले अनिल वर्मा जी का सैदापुर से कहना है कि किनारे पर गिरना तो बस एक शुरुआत है मेरे दोस्त, असली मजा तो तब है जब लहरें भी आपसे हार मान लें। सो एंजॉय कर लेते हैं अब ये वाली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

साथिया बेलिया हमने एंजॉय किया। ये सदाबहार नगमा कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ और कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए और चैट बॉक्स के डांस फ्लोर में आ जाइए, क्योंकि आ चुकी है सैटरडे नाइट की स्पेशल सी तड़कती भड़कती सी पावर पैक और ब्लॉकबस्टर सी फरमाइश। ओह माय गॉड, जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली फरमाइश है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। आय हाय, सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट आइटम सॉन्ग अजय मिश्रा की फरमाइश पर।

ये ब्लॉकबस्टर सॉन्ग मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में राजेश कुमार बेदर्दी की गोंडा से, और इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। किसने कहा कि मैंने आपका वेलकम नहीं किया? मैंने आपका वेलकम किया, लेकिन शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, आप डिस्ट्रैक्ट थे, आपका ध्यान ना कहीं और था। मैं सही बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन री वेलकम इन योर शो, वेलकम इन योर शो। इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा एंड शशि सिंह जी फ्रॉम गोंडा, सुनीता जी गुड़वा घाट गोंडा से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजेश कुमार बेदर्दी की गोंडा से, उनको सुनना है ग्रेट टारगेट का गाना दिल ने पुकारा ओ जानम। ओह माई गॉड, दिल पुकारता भी है, मेरा दिल तो कभी पुकारता ही नहीं है। सिर्फ दिल गुस्सा होता है, दिल दुखी होता है, दिल नाराज होता है, दिल रोता है, दिल हंसता है, दिल एक्साइटेड होता है, लेकिन दिल पुकारता तो नहीं है। स्टे ट्यून्ड।

तुमको यहाँ पहली बार। ग्रेट टारगेट का ये गाना हमने एंजॉय किया है और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से आपका स्वागत है आपके अपने शो परमाइशी में, और आपके परमाइशी गीत का आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को है बेसब्री से इंतजार। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली परमाइश। अगली परमाइश हमारे पास में है लवली सिंह की। लवली सिंह को सुनना है गाना शुरू हो रही है प्रेम कहानी। सो मोहम्मद अजीज और अनुराधा की आवाज में ये सोलफुल म्यूजिक एंजॉय करते हैं हम। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कहानी हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है निशा की पटेल नगर गोंडा से। निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है चिकनी चमेली। सो एंजॉय करते हैं अग्निपथ का ये गाना श्रेया घोषाल की आवाज में। सो एक बार फिर से एंजॉय करते हैं ये ब्लॉकबस्टर नगमा, तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर नगमा, एकदम सैटरडे नाइट स्पेशल प्लेलिस्ट से मैच खाता नगमा निशा की फरमाइश पर स्टेज।

पद का ये गाना बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ चलेंगे, हमारी अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगली फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की, गोरखपुर से। उनको सुनना है गाना इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। सो ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा एंजॉय करते हैं और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ से देश दुनिया की खबरों को एकत्रित करने के बाद में दोस्तों उसके साथ में हम लोग पेट पूजा भी करेंगे। पेट पूजा करने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे अपने फरमाइशी प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के।

0: मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
5: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो परमाइशी की महफिल में एकत्रित हो चुके हैं और देश दुनिया की खबरों से भी रू रू हो चुके हैं, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने पेट पूजा भी कर लिया होगा। सो चलिए पेट पूजा के बाद में करते हैं काम दूजा। काम दूजा मीन्स एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी। सो हमारे पास में अगली फरमाइश है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना मेरी गोरी गोरी बाह। सो एंजॉय करते हैं ये 90s का हाउ रोमांटिक वाला लव डम नगमा कुमार सानू अलका यागनिक की आवाज में मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर, जो कि है बाराबंकी से। और मोहम्मद मुशीब जी मैं कहना चाहूंगी कि दिखा तो दिए आपने ख्वाब अपनी आंखों में, अब उन ख्वाबों को पूरा करने का वादा भी कर लो ना। जो उतरना है दिल की गहराई में तो पहले जरा मोहब्बत का इरादा भी कर लो ना। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ।

मोहम्मद मुशीब जी की बार अबंकी से बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की, और सबीहा को सुनना है गाना आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक। सो एंजॉय करते हैं शहजादे का ये सुपर डुपर हिट नगमा परिणीति चोपड़ा और गौहर खान का झल्ला बल्ला। श्रेया जी की आवाज में सबीहा की फरमाइश पर स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया ये गाना सभी हके फरमाइश पर पढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना गरीब जान के हमको ना तुम। सो रफी जी की और गीता दत्त की आवाज में एंजॉय करते हैं छू मंत्र का ये सुपर डुपर हिट नगमा। स्टे ट्यून्ड।

राजेश सिंह जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुनीता जी की गुड़वा घाट गोंडा से और गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से। एंजॉय करते हैं संजू का ये नगमा।

बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा की और उनके बेटे कृष्णा वर्मा और राम वर्मा की। इन तीनों को दुखरनाथ गुंडा से सुनना है करण अर्जुन का गाना जाती हूँ मैं। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा राकेश वर्मा और उनके बेटे कृष्णा वर्मा और राम वर्मा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की, रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। उनको सुनना है गाना जोरों का झटका हाय जोरों से लगा और शादी बन गई उम्र कैद की सजा। सो एंजॉय करते निब्बर जी की फरमाइश पर ये वाला गाना।

0: का छक्का हाई जोरों से लगा और शादी बन गई उम्र कैद की सजा। हमने एंजॉय किया ये गाना। निबर जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है। मैं तेरे अगल बगल हूँ तो मेरे अगल बगल है, सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा सौरभ की फरमाइश पर, जो कि है गोड़वा घाट गोंडा से। उनको सुनना है गाना फटा पोस्टर निकला हीरो। सो एंजॉय करते हैं इस मूवी के नगमे को और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर बालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत सारा मिस करना है क्योंकि कल है संडे, संडे मीन्स पंडे, पंडे मीन्स हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स कल तो मैं नहीं रहूंगी। ये आप लोग खूब सारा इंजॉय करना और मुझे बिल्कुल भी मिस मत करना, और मनु का तो बहुत सारा मिस करना। तो चलती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से हमेशा हमेशा के लिए बेइंतहा बेइंतहा बेइंतहा प्यार आपके आज सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं मंडे को।
1: दिल बोले तो
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी बग बग गर्ल आज सिंपल के साथ में, हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, अब हम एंजॉय करेंगे अगला शो बहारी गजल आपके आरजे मनु के साथ। स्टे ट्यून्ड और हंस रहा हूं गोंड में ये दिल का जज कहे।
2: ऑर्डर ऑर्डर।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

जी हाँ, और इस प्यारी सी गजल के बाद आपसे रूबरू होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और आज विशेष कार्यक्रम है और गजलें हमारी, गीत आपके, गजल हम आपको सुना रहे हैं और गीत आपसे सुनने आ रहे हैं इस प्यारे से संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो गणेशलेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम है गजलें हमारी, गीत आपके, तो गजल हमने आपको सुना दी है, गीत आपको सुनाना है। और देखते हैं भाई क्या बात है, इधर हमने आवाज दी नहीं, उधर से आवाज आ चुकी है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: ओहो, इफ आई एम नॉट इन द रॉन्ग, यू आर द क्या कहते हैं डीपेस्ट ओशन, शायद प्रशांत महासागर जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना सर आपने,
0: बिल्कुल सही पहचाना आपने। कैसे हैं आप?
1: बस बस बढ़िया है सर, अपना बताएं।
0: हाँ, कहीं कहीं बहुत मिस करते हैं भाई आपको हम लोग।
1: अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाकी हम भी आपसे ज्यादा मिस करते हैं
0: जी।
1: लेकिन कभी कभी ऐसा इत्तेफाक रहता है कि हम प्रोग्राम में आ नहीं पाते, लेकिन ये कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें।
0: नहीं नहीं, खैर वो कोशिश तो आपकी दिखाई पड़ती है हमको, और आज उस कोशिश में हम क्या सुनने वाले हैं?
1: आज सर आपको किशोर कुमार जी का एक गाना सुनाना चाहता हूँ मैं
0: जी,
1: कह दूं तुम्हें या चुप रहूं।
0: हाँ, दिल में मेरे आज क्या है, क्या बात है, मतलब आज रोमांटिक मूड में है, हालांकि गर्मी इतनी जबरदस्त है, लेकिन इसके बावजूद ये मूड बताता है कि आप भाई कलाकार आदमी है जी। शुरू करते हैं।
1: ठीक है सर,
0: ठीक।
1: कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या

सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए, सोचा है कि तुम

सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में झूमे जरा धूमे मचाए, हो सोचा है ये

0: है।
1: थैंक यू सर।
2: क्या बात है, मतलब सिर्फ किशोर कुमार ही नहीं, आपने तो आशा भोसले को भी डिट्टो कर लिया भाई। मतलब लगता है शायद इसमें एक फीमेल सिंगर भी हैं जो आशा भोसले जी हैं।
1: जी जी जी, फीमेल सिंगर वही हैं।
2: हाँ, और फिल्म का नाम जहाँ तक मुझे याद है दीवार।
1: हाँ, शशि कपूर जी के ऊपर फिल्माया गया है।
2: शशि कपूर और नीतू सिंह।
1: जी जी जी।
2: क्या बात है भाई, लेकिन आपने बहुत रोमांटिक अंदाज में बहुत ही प्यारा गीत गाया। ये कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, क्या बात है भाई। उदित नारायण से आप किशोर कुमार भी हो गए, और नहीं रे नहीं मैं, आपने तो आशा भोसले जी को भी टच कर दिया, और दादा लिख चुके हैं भाई, बहुत बहुत शानदार गाया आपने।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: क्या बात है, बहुत शानदार गायन के लिए और इस कार्यक्रम की शानदार शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम।
1: प्रणाम प्रणाम।
2: जी हाँ, तो कार्यक्रम की आधारशिला भाई, कार्यक्रम की नींव रख दी गई है, और मेरे साथ नेहा जी बहराइच से हैं। नमस्कार सर जी, आदाब करते हैं आपको। नीना जी हैं, नमस्ते सर, आदाब आदाब आपको भी जी। और शुरुआत हो चुकी है भाई, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, और देखते हैं मेरे साथ फिर हो चुका है। हेलो,
3: हाँ मनु सर, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम, और खैरियत भाई जान?
3: जी खैरियत से हैं, आप अपना बताइए।
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले की दुआएं।
3: चलो, दुआएं तो है, हमारा भी है आपको।
2: जी जी हाँ, वो हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह।
3: अगर टाइम रहेगा सर तो एक मतलब अताउल्ला का एक सुना दीजिएगा।
2: जी क्या सुना देंगे बताइए।
3: खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो वो हाथों में मेहंदी
2: रचाने लगे है। हाय हाय हाय, इतना दर्द कहाँ से लाते हैं जिंदगी में आप?
3: दर्द कितनी तेरी चाहत के मिले हैं मुझको,
2: तेरे दर्द से तो, दिल आवाज रहा है।
3: दर्द कितनी तेरी चाहत के मिले हैं मुझको, सोचता हूँ तो कहूँ तुझसे मगर जाने दे।
2: जी,
3: जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाने दे, और कुछ मेरी तमन्ना नहीं है इसके सिवा, राख बनकर मुझे राहों में बिखर जाने दे।
2: क्या बात है भाई, क्या बात कही आपने, क्या बात कही आपने। जी बिल्कुल,
3: आप ही से सीखा है सर?
2: अरे नहीं नहीं नहीं, हमने आप लोगों से सीखा है भाई, आप हमारे श्रोता है जो हमको सिखाते हैं।
3: नहीं, आप आदरणीय मनु सर है ना, तो हमने कुछ तजुर्बा आपसे भी सीखा है।
2: जी जी, लेकिन आप हमारे लिए आदरणीय मुमताज साहब हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
3: हमने भी, आपने मुझसे सीखा, मैंने आपसे सीख लिया।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए भाई। तो कुछ आज गुनगुनाएंगे आप?
3: जी
2: कुछ गुनगुनाएंगे आप?
3: अब जो कहिए।
2: जी जी,
3: तेरे दर्द के दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। जी सर बस।
2: चलिए भाई इतना ही, आप कुछ थके हुए भी लग रहे हैं आज, रात भर जागे हैं। चलिए बिल्कुल, आपको वो गजल जरूर सुनाएंगे हम।
3: ठीक है सर, टाइम मिलेगा तो सुनाइएगा।
2: जी जी जी बिल्कुल, फी अमान अल्लाह।
3: अमान अल्लाह सर।
2: जी हाँ भाई, हमारे साथ रफ्तार जी भी हैं। कोई वाह क्या बात है, रफ्तार जिस सोच के जिसका नाम रफ्तार, उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। और लिख दिया भाई, वाह मुमताज जी। जी हाँ, तो भाई शाम की शुरुआत हो चुकी है, और बहुत ही प्यारे से गीत के साथ अब चलते हैं भाई, देखते हैं कौन हमारे साथ है। हेलो हेलो
4: नमस्ते
2: जी। नमस्ते, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राची दिशा?
4: जी जी, प्राची दिशा बोल रहे हैं।
2: जी जी, पूर्व दिशा कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: आपका आशीर्वाद।
4: आपका भी आशीर्वाद है।
2: जी हमारा हमेशा आप पर रहेगा।
4: जी
2: तो आज हम क्या सुनने वाले हैं आपसे?
4: आज एक पंजाबी सॉन्ग है बहुत ही प्यारा, दूरो दूरो वही सुना सकते हो।
2: ओहो क्या बात है भाई, हमने आते हुए भी वो गीत सुना है।
4: हाँ हाँ
2: हाँ
4: ठीक है।

बोलूंगा कि तेरी पागल नाच शायरी देखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, भाव विभोर कर देने वाला ये पंजाबी गीत, कहाँ तू कहाँ मैं। क्या बात है, और जो आपका एसेंट है, जो उच्चारण है आपका, वो भी आपने एकदम पंजाबी टच में ही वही टेक्सचर लेकर आए आप।
0: थैंक यू सर।
1: दत्ता जी ने कहा वेरी नाइस, प्राची जी और नेहा जी ने आपको 100 में से 100 नंबर दे दिए।
0: थैंक यू सो मच
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और प्रणाम।
0: नमस्ते
1: जी। जी हाँ भाई, तो ये हमारे साथ प्राची जी रही हैं। अब तो भाई मुहर्रम की 10वीं तारीख हो चुकी है कल, तो अब तो नेहा जी भी और नीना जी भी फ्री हो चुकी होंगी, लेकिन फिलहाल देखते हैं हमारे साथ तो कोई जुड़ चुके हैं। और हेलो हेलो,
2: हाँ नमस्कार मनजी।
1: अरे दादा चरण स्पर्श।
2: अरे आप खुश रहिए, बहुत ज्यादा तरक्की कीजिए।
1: जी कैसे हैं आप?
2: बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस चाहता हूँ कि बारिश हो जाए।
2: अरे उसी का तो इंतजार मैं भी।
1: सोचिए, और पिछली बार गीत गाया था किसी ने आपके सज्जन सावन में। हम सोच रहे हैं कि वो सावन आ जाए भाई गाने से।
2: अरे सावन मेरे लिए नहीं आ रहा, वो तो गाय की।
1: हाँ
2: गाया उन्होंने कि बारिश में,
1: मतलब भगवान ने कहा आप कुछ दिन और रुक जाओ।
2: अरे उन्होंने कहा आप सूखे ना रहो।
1: नहीं नहीं, मतलब गाने का असर होगा और बहुत जल्दी बारिश अच्छी हो।
2: बारिश तो यहाँ हुई है कल, मतलब एक दिन पहले हुई है,
1: लेकिन एकदम वही हुई है कि गर्म तवे पर कोई पानी के छींटे मार दे।
2: अरे ऐसा हुआ बच्चों, तावा में थोड़ा सा पानी का छींटा मार।
1: हाँ वही वही मैं भी कर रहा हूँ, गर्म तवे पर किसी ने पानी का छींटा मार दिया। तो दादा आज तो क्या सुनने वाले हैं हम?
2: मैं देखिए, बातें हो रही हैं जब एजुकेशन पर्सन से
1: जी,
2: मतलब एजुकेशन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है।
1: अरे नहीं नहीं, हाँ आप एजुकेटेड हैं, हम लोग तो बस अभी सीख रहे हैं।
2: अरे पहले मेरी बात सुन लेते
1: जी।
2: तो मैं प्रोफेसर पिक्चर का ही गाना सुनाने की सोचना।
1: ओहो क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल।
2: जरा ठहरो जरा।
1: आहा, क्या बात जी, निसंदेह।
2: तो मैं कोशिश करने का प्रयास करूंगा, बाकी मैं कहां तक
1: वो आप गाइए, हम निश्चिंत हैं कि 100% श्योर है।

0: खुली पलकों में झूठा गुस्सा, बंद पलकों में प्यार, जीना भी मुश्किल आए मरना भी मुश्किल। खुली पलक पे झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल आए मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की छलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल ओए मरना भी मुश्किल। खुली पलक पे झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल ओए मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा है तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आखिर है आँखों में, और आखिर है आँखों में एक मन चाहे सपने से, समझना है क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। खुली पलक पे झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। तुम प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया में, अब तो सारी दुनिया में अब हाल है ये हमारा, पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब है ये दुश्वार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। खुली पलक पे झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल।
1: क्या बात है दादा, आपके लिए क्लैपिंग, शानदार क्लैपिंग हमारी तरफ से। क्या निभाया है आपने?
2: नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत कमियां
1: रह गई। नहीं, कमियां नहीं रह गई दादा, हमने तो सुना, हमको तो बहुत पसंद आया भाई। आगे तो श्रोतागण हमारे बताएंगे।
2: हाँ, वही।
1: लेकिन शानदार गायन,
2: थैंक यू
1: जी। चरण स्पर्श,
2: अरे खुश रहे सर
1: जी। भाई हमारे प्रश्न की बारी है, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सविता शास्त्री जी हमारे साथ हैं, लवली सिंह जी हैं, हमारा नाम MANU है, आप चाहे तो सही कर सकती हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर देता है कौन।
3: नमस्कार,

0: जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था।
1: आगे की पंक्ति गानी है आपको।
0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
1: जी हाँ, देखते हैं इस पंक्ति को कौन पूरा करता है। जी हाँ, ये आपके लिए चैलेंज है। कायनात जी हमारे साथ मौजूद है, पत्र लिखती हैं, सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं, सैयारा की याद में लेकर क्या बात है चिट्ठियाँ बाँचूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, फिलहाल हम चाहते हैं कायनात जी इस गीत को पूरा कीजिए।
0: जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे।
1: जी हाँ, देखते हैं कौन हमारे साथ।
2: हेलो
1: हेलो,
2: नमस्कार सर जी।
1: अरे चरण स्पर्श आपको, आशीर्वाद आपका। अगर रेडियो है कहीं आपके पीछे तो उसके
2: बस बस सर, मैं किनारे हो गई।
1: जी नहीं, नहीं क्या बात है, मतलब आज हमको लगता है मासूम फिल्म का ये गीत है और शायद शायद लता जी ने गाया है
2: जी,
1: और आज आधुनिक युग की लता इसे पूजा करने जा रही है।
2: अरे सर इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए, मैं कोशिश करूंगी।
1: हाँ नहीं, कोशिश हमने भी की, बहुत दिनों के बाद दिमाग में आया, हमने कल जरा ये गीत सुनते हैं।
2: आज तो सब लोग अपने मन से कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद
1: नहीं नहीं मतलब एक सज्जन ने, हमने कहा ठीक है भाई आप अपने मन से गा दीजिए।
2: नहीं नहीं ऐसे भी अच्छा था सर, अच्छा हाँ, लग रहा है सुनने का प्रोग्राम,
1: अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा
2: जी, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी।
2: तो आपके प्रश्न का उत्तर
1: जी,
0: जीने के लिए सोचा ही नहीं,

0: थैंक यू सर।
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, हम सोच रहे हैं कि हमने प्रश्न इतना घटिया अंदाज में किया, उत्तर इतना शानदार मिला।
0: मैं सोच ही रही थी कि मैं कौन सा गाना गाऊं कौन सा, फिर आपने प्रश्न कर दिया, मैंने कहा चलो उत्तर दे ही देते हैं।
1: हाँ अच्छा, आपने एक बार सोनू निगम की एल्बम का एक गीत गाया था, मुझको याद नहीं आ रहा है, वो बड़ा प्यारा गीत था।
0: सोनू निगम का
1: जान शायद उनकी एक एल्बम थी, उसका बहुत ही प्यारा गीत आपने गाया था, सोनू निगम।
0: याद नहीं आ रहा सर कौन सा गाना, याद दिलाते तो गा देते। वो तो नहीं है।

तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है।

0: तुम्हारा ही ख्याल है। सब लिरिक्स इधर उधर हुआ है।
1: क्या बात है, अभी देखिए कितनी मोटी आवाज में आप गाती हैं तो भी, और आवाज को इतना पतला कर लेती हैं सुन निगम की आवाज में, एकदम मिल जाता है आपका स्वर, यही आपकी खूबसूरती है वैसा टाइल सिंगिंग। और इसके लिए मैं नहीं, ये दादा भी कहते हैं बहुत खूबसूरत गाय शिल्पी जी, और अनुप मिश्रा ने लिखा है वाह मामी जी उम्दा खूबसूरत सुपर्ब बहुत ही बढ़िया, मतलब शब्द कम पड़ गए। और सविता शास्त्री ने लिखा है बहुत अच्छा शिल्पी दी, देखिए मतलब
0: चलिए इन लोगों का आशीर्वाद है सर, बस और क्या,
1: मतलब ये लोग गाते रहे
0: जी
1: और आपको आशीर्वाद देते रहे और आपकी आवाज की मधुरता बनी रहे, ये हम कामना करते हैं
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: जी, प्रणाम।

0: जी भाई, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे साथ आने से पहले देखिए, हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं, पहले देख लेते हैं कौन है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: दर्द कुमार जी आ चुके, आपके बिना महफिल अधूरी रहती है।
1: कैसे
0: हैं आप? आपका आशीर्वाद।
1: हाँ ठीक है, मौका मिल गया, अभी दुकान बढ़ा के आ रहा हूँ
0: जी।
1: और आप ठीक हैं?
0: जी जी, आशीर्वाद आपका।
1: तो एक गीत है को हल्का छोटा सा, तो
0: अरे तो बिल्कुल मतलब हल्का सा छोटा सा।
1: जब दिल से दिल टकराता है, जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है, देखा था तुझे एक बार कहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं। फिर इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है महाजब। अब देखिए क्या क्या रंग नए, दीदार तेरा दिखलाता है। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है, ये हुस्न शराबी महका बदन, और उस पे तेरा ये भोलापन। तेरी भी उम्मीदें जागी है, कहती है तेरे दिल की धड़कन। ऐ हुस्न की देवी आँख मिला, अपनों से कोई शर्माता है। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है। जब टकराता है, थैंक यू।
0: क्या बात है भाई, जब दिल से दिल टकराता है। और धनुष मिश्रा ने लिख दिया, वाह सुरेश जी जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत प्यारा गीत आप जो लाते हैं वो चुन के लाते हैं, जौहरी है आप गीतों के मामले में भाई, बहुत बहुत प्रणाम आपको।
1: प्रणाम
0: जी। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए भाई उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।

किसका रास्ता देखे, ऐ दिल ऐ सोराई। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत ये देवानंद के ऊपर फिल्माया गया, साथ में हेमा मालिनी जी हैं और प्यारी सी आवाज़ किशोर कुमार की है। जी हाँ, हमको लगता है कि अनूप मिश्रा जी इस गीत को पूरा कर देंगे और उन्होंने सुरेश जी की बात कर दी है भाई, और बहुत अच्छा शिल्पी जी। और प्रश्न है, किसका रास्ता देखे है दिल है सोराई। जी हाँ, किसी का रास्ता देखा जा रहा है और देखते हैं इस गीत को कौन करता है पूरा। किसका रास्ता देखे है दिल है सोराई, बहुत ही प्यारा गीत ये, और हम चाहते हैं कि भाई इस गीत को सुना जाए। और जब तक आप में से किसी की आवाज़ नहीं आती है तब तक

जहर मिले या अमृत धारा, सारा सागर पी लेते हैं। जीवन पर क्या नुक्ता चीनी, हंसते गाते जी लेते हैं।

जी हाँ, बहुत ही दर्द भरी गज़ल ये अताउल्लाह खान की आवाज़ में हमने सुनी। और भाई सभी लोग गर्मी से बहुत बेहाल हैं, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आसमान वाले ने चाहा तो कल 1 बजे मिलेंगे आपसे इस दोपहर को ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक भाई बारिश की चाहत सबको है और चलते चलते एक तरह सा गीत बारिश के नाम, हो सकता है बारिश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।

पांचों दोस्त अमृतसर स्टेशन पर रात 10:30 बजे उतर चुके थे। पेपर के बाद हुई 2-4 छुट्टियों का मजा हमेशा ही किसी ऐसे ही कोई घूमने का प्लान बनाकर लिया करते थे। विपुल और विनय तो हमेशा जिंदगी में कुछ रोमांचक करने की खोज में ही लगे रहते थे। तभी उन्होंने बाकी दोस्त प्रखर, सुदेश और निशा, जो कि सुदेश की गर्लफ्रेंड थी, सबको माउंट आबू चलने के लिए कहा। प्रखर की जिद पर इस बार वाघा बॉर्डर देखने का बड़ा मन था, तो पांचों दोस्त मिलकर अमृतसर पहुंच गए। प्रखर के पापा भी कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे और अब भाई की पोस्टिंग भी कश्मीर में ही थी, इसीलिए उसका सेना के प्रति सम्मान था। शायद इस भावना को बयां कर पाना प्रखर के लिए थोड़ा मुश्किल था। अमृतसर पहुंचते ही सीधे अपने बुक किए हुए होटल में पहुंचकर अपने अपने कमरे में पांचों लोग आराम करने लगे। तय तो यही हुआ था कि थोड़ा आराम कर घूमने जाएंगे, पर रात के 3 बजे सुदेश और निशा ने तो अपने कमरे में से निकलने से इनकार कर दिया। पर प्रखर, विपुल और विनय तीनों पहुंच गए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और साथ में थोड़ी दूर था जलियांवाला बाग। गुरुद्वारे में माथा टेक अमृतसर की सुनसान पड़ी सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। हालांकि उनका होटल स्वर्ण मंदिर से बहुत दूर नहीं था, मगर घूमने फिरने के लिहाज से निकल पड़े उन गलियों की ओर जहां आधे से ज्यादा मकान बंद पड़े थे। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ बिखरा पड़ा था। बंद दरवाजों के ताले पर जंग लग चुके थे, कुछ तो टूटकर जमीन पर गिर पड़े थे। तीनों दोस्त बड़े ध्यान से सभी बंद घरों को देखे जा रहे थे। बीच बीच में विपुल और विनय मजाक भी कर रहे थे, ये तो काफी बड़े घर हैं, पर लगता है कोई सालों से लौटकर यहाँ नहीं आया। विपुल बोला, चल हम सब यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं यार, सुदेश और निशा को वेडिंग गिफ्ट में ये स्वीट होम गिफ्ट कर देंगे, कहकर दोनों जोर से हंसने लगे। अरे यार, मुझे तो भूतिया घर लगते हैं, एक अजीब सी दहशत हो रही है, प्रखर बोला। प्रखर की बात सुनकर विनय कहता है, हो भी सकता है, फिर तो मजा आने वाला है इस ट्रिप में। कि तभी प्रखर तेज तेज कदमों से चलने लगा। आगे जाकर चाय की दुकान नजर आई तो विपुल दोनों को जबरदस्ती वहाँ ले गया और कहता है, भैया 3 कप कड़क चाय पिलाओ तो, और यह भी बताओ कि यह इतने सारे घर बंद क्यों हैं? विपुल ने चाय वाले से पूछा। इतना सुनकर विनय पूछता है, तो क्या कोई नहीं है जो इन घरों को संरक्षण दे? चाय वाले भैया ने चाय देते हुए कहा, कौन देगा, सरकार? सरकार तो कुछ नहीं करती, और वैसे भी इनका तो कोई बचा ही नहीं, जो थोड़े बहुत रिश्तेदार बचे भी थे वो भी बाहर चले गए, अब तो बस ऐसे ही खाली है। इतना सुनकर प्रखर पूछता है, और आप कब से यहाँ पर हैं? चाय वाले भैया ने एक छोटी सी सोती हुई लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा तो जन्म ही यहाँ हुआ था, चाय बेचना हमारा काम है, तो बरसों से बस चला आ रहा है। वह चाय वाला और वह छोटी बच्ची दोनों प्रखर को देखकर मुस्कुराते हैं कि तभी वो चाय की दुकान वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखकर प्रखर बहुत घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो जोर जोर से विपुल और विनय को चिल्लाकर बुलाने लगता है कि तभी विपुल पूछता है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, हम सब यही तो हैं। प्रखर कहता है कि विपुल वो दुकान, वो चाय वाला, वो लड़की सब गायब हो गए, सब भूत बन गए। इतना सुनकर विपुल ने प्रखर को होटल के अंदर खींचते हुए कहा, शांत हो जा भाई, देख कल सुबह बात करते हैं, बहुत थक चुके हैं, और उस चाय वाले की बातें सुनकर मैं समझ सकता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, जो भी है रूम में चलते हैं और आराम करते हैं, कल सुबह बात करेंगे। तीनों होटल के कमरे में पहुँचते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं और बिस्तर पर पड़ जाते हैं, पर प्रखर बेचैनी से खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। उसकी आंखों में जैसे नींद ही नहीं थी, पर फिर भी थकावट इतनी थी कि वो ज्यादा देर तक जागने का संघर्ष नहीं कर सका और सो गया। सुबह के 10 बजे पांचों लोग होटल से रवाना हुए और रास्ते में विनय कल रात की बात सुदेश और निशा को बताए जा रहा था। सब उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। प्रखर का ध्यान उस दुकान पर ही था जो कल रात दिखी थी। ये तो बंद पड़ी है, निशा ने कहा। तभी प्रखर कहता है, हाँ बंद तो है, चलो किसी से पूछते हैं। एक कुल्फी रेड़ी वाले से पूछने पे पता चला दिन में तो बंद ही रहती है, पर 6 बजे के बाद कोई खोलता हो तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो बस तभी तक यहाँ होता हूँ। यह सब सुनकर
वो पांचों लोग आगे बढ़ जाते हैं और प्रखर को भी लगा शायद मन का कोई वहम हो। अब सब गुरुद्वारे में माथा टेक जलियांवाला बाग देखने निकल पड़ते हैं। चारों तरफ शांति और देशभक्ति का प्रतीक यह बाग और उधम सिंह की मूर्ति सबके मन में साहस और श्रद्धा की भावना को मौजूद कर रही थी। जहाँ सुदेश और निशा सेल्फी खींचने में लगे थे, वहीं प्रखर को वही लड़की और चाय वाला दिखाई देते हैं। तो उसने चारों को बताया और सब उन दोनों के पास पहुँचे। भैया आप यहाँ कैसे, पहचाना? कल रात हम चाय पीने आए थे आपके यहाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? विपुल ने पूछा। हम तो यहाँ आते रहते हैं, हमारे सारे अपने लोग यहीं तो रहते हैं, रात को हम चाय का काम कर लेते हैं, चाय वाले ने अजीब और बेहद दर्द भरी आवाज में कहा। वो छोटी लड़की ने चाय वाले का हाथ पकड़ा हुआ था। आप हमारे साथ फोटो खिंचाएंगे, निशा ने कहा, और प्रखर सबकी फोटो खींचने लगा। प्रखर ने फोटो खींचते वक्त यह महसूस किया कि कैमरे में लड़की बड़ी नजर आती है और कैमरा निशा को दे दिया। निशा ने सबकी सेल्फी ली और वो चाय वाले को थैंक यू बोल बाग से बाहर आ गए। निशा ने सारे दिन शॉपिंग की, फिर शाम को सारे दोस्त वाघा बॉर्डर पहुँचे। देश की सेना को देखकर प्रखर को अपने पिता की याद आई। सभी दोस्तों ने उसे गले लगाया और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सभी एक ढाबे में खाना खा रहे थे। रात हुई और घूमते फिरते पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजर गया और रात के 12 बज गए। जब होटल पहुँचे तो होटल मालिक ने कहा कि आप सभी को रूम खाली करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस आई थी, उनके कुछ लोग यहाँ पर ठहरना चाहते हैं, हमारी भी मजबूरी है, आप अपने आधे पैसे वापस लेकर रूम खाली कर दीजिए, असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। यह कहकर होटल के मालिक ने सभी को कमरे का सामान खाली करने के लिए कह दिया। होटल के मालिक की यह बात सुनकर निशा कहती है, यार हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? तभी सुदेश कहता है, जाना कहाँ है, मिल जाएगा कुछ, पहले यहाँ से बाहर तो निकलें। निशा फिर परेशान होकर बोलती है, रात के 1 बज रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तभी विपुल विनय को गले लगाकर बोलता है, यार इसी का नाम तो रोमांच है। विपुल गाना गाते हुए जा रहा था, तभी सभी को चाय वाले की दुकान नजर आई। अरे वो देखो, चाय वाले की दुकान, चलो वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ चलना है। सभी चाय वाले की दुकान पर पहुँच जाते हैं। विपुल चाय वाले भैया से कहता है, भैया 5 कप कड़क चाय बना दो। और वो छोटी लड़की भी वहीं खड़ी सबको देख रही थी, पर प्रखर को उसकी आंखें कुछ घूमती हुई सी नजर आई। उसने एकदम से वहां से अपना ध्यान हटा दिया। इतने में विनय कहता है, भैया कोई होटल मिल जाएगा, हमको मजबूरी में अपना होटल खाली करना पड़ा है। तभी चाय वाले भैया चाय देते हुए कहते हैं, चलना है तो हमारे यहाँ चलो, वहाँ रात गुजार लेना। सभी दोस्त मान गए, पर प्रखर ने जाने से इनकार कर दिया। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो वहाँ कोई भी रात गुजारे। सबने उसे बहुत समझाया। विपुल ने कहा, यार प्रखर रात की तो बात है, फिर सुबह कहीं और निकल लेंगे। इतना सब सुनने के बाद प्रखर ने गुस्से से कहा, मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं नहीं जा सकता, तुम्हें जाना है तो जाओ। प्रखर की ये बात सुनकर सुदेश कहता है, इनके घर चलोगे तो तुम्हारे मन का बहम भी दूर हो जाएगा और हमारी रात भी आसानी से कट जाएगी। सुदेश की बात में हाँ मिलाते हुए निशा भी यही कहती है कि हाँ यार जिद नहीं करो, प्रखर शॉपिंग करके मैं बहुत थक गई हूँ। और इतना सब कुछ सुनने के बाद ना चाहते हुए भी प्रखर मान जाता है। फिर सबके सब चाय वाले और उस छोटी सी लड़की के साथ चल दिए। रास्ते में मुकुल ने चाय वाले से उसके घर और उस छोटी सी बच्ची के बारे में पूछा, और जैसे ही उसने यह बताया कि यह लड़की उसकी बहन है और उसका घर जलियांवाला बाग के पीछे है, तो एक पल के लिए सभी थोड़ा घबरा गए। फिर विपुल ने पूछा, भैया वहाँ तो ज्यादातर घर बंद पड़े हैं। चाय वाले भैया ने उत्तर दिया, नहीं हमारा घर तो खुला है, हम तो बंसी चाय वाले के नाम से यहाँ मशहूर थे। यह कहते ही लड़की की आंखों का बदलता रंग इस बार सुदेश ने भी देख लिया, और प्रखर तो पहले से ही डर के मारे पीछे ही चल रहा था। जैसे जैसे वो उन गलियों की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही अंधेरा और खौफनाक होता जा रहा था। निशा को लगा कि जैसे उसके और सुदेश के साथ कोई और भी चल रहा था। सभी बंद पड़े मकान के ताले खुलते हुए से नजर आए। फिर उसने अचानक मुंह फेरा तो सब गायब। निशा थोड़ा डर जाती है और सुदेश के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। तभी सुदेश पूछता है, क्या हुआ? इस पर निशा बड़े अनमने ढंग से कहती है, कुछ नहीं, शायद थोड़ा थक गई हूँ।
निशा और सुदेश की बातें सुनकर चाय वाले भैया कहते हैं कि बस अभी पहुंचने ही वाले हैं, फिर आप सब आराम ही आराम कर लेना। यह कहते हुए चाय वाले भैया के चेहरे की डरावनी हंसी और टेढ़े मेढ़े दांतों को प्रखर भी देख पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ विपुल और विनय सभी घरों को गौर से देख उसकी फोटो खींचते जा रहे थे। तभी एक बड़े से मकान के सामने वो सभी आकर रुक गए। दरवाजा खुलता गया लेकिन अंदर काफी अंधेरा था। लाइट नहीं आती क्या, विपुल ने पूछा। अभी बत्ती जल जाएगी। तभी घर के दो तीन बल्ब खुद ब खुद ही जल गए और आज वहाँ एक औरत भी नजर आई और कहने लगी, बंसी आ गए तुम? हाँ आ गया, कुछ मेहमान भी लाया हूँ, बंसी ने कहा। और औरत का मुंह ढका हुआ था, लाल रंग का घूंघट अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रहा था। किसी को भी उसका चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन जब प्रखर की नजर उस औरत पर पड़ी तो प्रखर को उसका रंग बदलता हुआ उसके दांत बाहर निकलते हुए नजर आए। ये देखकर प्रखर एकदम से डर जाता है। तभी बंसी ने कहा, भाग्यवंती इनको जरा ऊपर वाला कमरा तो दिखाओ, आज की रात ये लोग यहीं रहेंगे। सभी उस औरत के पीछे सीढ़ियों पर चलने लगे। एक विचित्र सा खौफ, मानो ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियों पर कोई एक नहीं बल्कि कई सारे लोग खड़े हों। और इतने सारे लोगों का वहाँ पर होना सिर्फ और सिर्फ निशा और प्रखर को महसूस हो रहा था। मगर जैसे ही निशा और प्रखर कुछ भी कहते, इससे पहले वो सभी लोग कमरे में पहुंच चुके थे और वो औरत वहां से जा चुकी थी। कमरा पुराने समय के हिसाब से बना हुआ था, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, एक हल्की सी दुर्गंध भी आ रही थी और एक हल्का सा चांदनी सा बल्ब भी वहां जगमगा रहा था। तभी प्रखर बोलता है, मैं अभी भी कह रहा हूं, कहीं और चलो, यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। ऐसा ना हो कि हम सब यहाँ पर घूमने आए थे और किसी भूल भुलैया सी जगह में फंस कर हम सब भूतिया बन जाएं। इतने में निशा कहती है, मुझे भी कुछ अजीब सा डर लग रहा है सुदेश। आज जब मैंने फेसबुक पर डालने के लिए कैमरा चेक किया था तब उस भैया और लड़के की फोटो कहीं नहीं थी। मुझे लगा शायद डिलीट हो गई होगी, पर सिर्फ वही दोनों गायब थे, बाकी सभी लोग फोटो में थे। शायद प्रखर ठीक कह रहा है। निशा की ये बात सुनकर सुदेश कहता है, तूने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई निशा? निशा कहती है कि मैं दुविधा में थी, क्या बताती तुम्हें? निशा ने ये बात सफाई देते हुए कहा। तभी पिपल कहता है, यार वक्त देखो, रात के एक बजने वाले हैं, फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, तुम लोगों से थोड़ा सब्र नहीं होता? चलो यार पिपल, मेरे दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है, चलकर छत पर बातें करते हैं, इन डरे हुए लोगों को यहीं रहने दो। यह कहकर विपुल और विनय कमरे से बाहर निकल गए। सुदेश कहता है, चलो निशा थोड़ा सा सो लेते हैं, बहुत थक चुके हैं। और यह कहकर सुदेश कमरे में बिछी हुई चारपाई पर लेट गया। निशा भी वहीं उसके पास बैठ जाती है और प्रखर जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर में सुदेश और निशा तो सो गए, पर प्रखर की आंखों में कहीं भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह तो बस कमरे की दीवारों को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस कमरे का कोई डरावना गुजरा हुआ कल है जो अभी उसके सामने शुरू हो जाएगा। और हुआ भी वही, उसे टूटे हुए पंखे पर कोई लटका हुआ नजर आया और अचानक गायब हो गया। बस फिर प्रखर से वहाँ रुका नहीं गया और वो नीचे उतर कर बरामदे में आ गया। पसीने से भीगा प्रखर जैसे ही बरामदे में पहुंचा, उसने देखा कि चार पांच लोग काली पीली शक्ल वाले वहां बरामदे में घूम रहे हैं। वो लड़की भी वहीं थी और पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चेहरा नीला पड़ा हुआ था, उसकी तरफ सभी ऐसे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था सभी उसके शरीर में घुस जाएंगे और वह कुछ नहीं कर पाएगा। तभी प्रखर जोर से चीखता है और वहां सो रहे निशा और सुदेश भी जग जाते हैं और भागते हुए नीचे आते हैं। तभी विपुल और विनय हंसते हुए कैमरा लेकर आ गए और सब कुछ ठीक हो गया। वह डरावने लोग सही हो गए, दो औरतें और तो वो आदमी, पर वो लड़की नहीं थी। ये सब हमारा किया हुआ है, हमने भैया से बात कर ली थी, हम यह डरावनी वीडियो अपलोड करेंगे और तहलका मचा देंगे, देखना कितने ज्यादा लाइक आते हैं और खूब पैसे भी मिलेंगे, विनय ने कहा। इतना सुनकर प्रखर विपुल को धक्का देते हुए कहता है, तो पागल है क्या, तूने मेरी जान ही निकाल दी थी। निशा और सुदेश भी उसकी खूब डांट लगाते हैं। प्रखर ताजी हवा लेने छत पर चला गया। निशा और सुदेश भी वापस कमरे में आ गए। विपुल और विनय वहीं कैमरा चेक करने लगे। शुरू से वीडियो शुरू किया, पूरा घर सब वीडियो में दिख रहा था, पर जब आगे बढ़े तो प्रखर के अलावा वहाँ कोई नहीं था।
बस वीडियो में प्रखर चीखते हुए दिख रहा था। अरे ये क्या है यार, बाकी सब लोग कहाँ गए? तूने ढंग से शूट किया था ना, विपुल ने पूछा। हाँ यार, सब सही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। विनय अभी भी कैमरा बार बार ठीक से देखकर बोल रहा था, मगर बस प्रखर ही दिख रहा था। हम दोबारा शूट कर लेंगे, जरा भैया से पूछ कर आता हूँ। ये कहकर विनय पूछने चला जाता है, और ढूंढते ढूंढते जब वो एक कमरे में पहुँचता है तो देखता है उस कमरे में पहले से ही उसकी तरफ कोई पीट करके खड़ा था। घुसते ही विनय ने बोलना शुरू किया, भैया क्या आप फिर से वही लोगों को ले आएंगे? हमारा ठीक से शूट नहीं हुआ है। विनय के इतना कुछ कहने के बावजूद भी वो इंसान कुछ नहीं बोलता है, और अब विनय थोड़ा सा और आगे बढ़कर जब उसके कंधे पर हाथ रखता है तो इस बार वो इंसान पलटकर विनय की तरफ देखता है, और अब विनय को काटो तो खून नहीं, उसकी दोनों आंखें नहीं थी, चेहरा काला पड़ा हुआ था। एक भद्दी और मोटी सी आवाज में बोला, हाँ आ जाएंगे, बताओ कब बुलाना है। यह कहकर उसने विनय की गर्दन पकड़ ली और विनय की आंखें बाहर आ गईं। जब काफी देर तक विनय नहीं पहुंचा तो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, और तभी अचानक से वहां पर विनय आ जाता है। विनय को देखकर विपुल पूछता है, तू ठीक है, कहां रह गया था यार? और विपुल के इतना पूछने पर विनय कुछ भी नहीं कहता है, बस सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। विपुल एक बार फिर से पूछता है, कब आ रहे हैं वो लोग? और इस बार विनय विपुल को घूरते हुए कहता है, बस आते ही होंगे। विपुल कहता है कि चल ठीक है, मैं बाकी के दोस्तों को बता देता हूँ। यह कहकर विपुल ऊपर कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सुदेश और निशा पहले से ही सर पकड़ कर बैठे थे। विपुल पूछता है क्या हुआ? इस पर सुदेश कहता है, प्रखर तो यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, वो नहीं मानेगा, अब हम यहाँ से निकलेंगे। सुदेश की बात सुनकर विपुल कहता है, यार एक वीडियो शूट कर लेते हैं, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, बहुत मजा आएगा, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, जरा सोचो तो। फिर निशा कहती है, प्रखर नहीं मानेगा, वो वैसे भी बहुत परेशान लग रहा है, और हम उसे नहीं समझा सकते, और उसे अकेला भी नहीं जाने देंगे। विपुल कहता है कि ठीक है, तुम तीनों नीचे आओ, हम वहीं थोड़ा सा शूट कर बाहर के दरवाजे से निकल लेंगे। सभी अपना बैग लेकर नीचे बरामदे में आ जाते हैं। नीचे विपुल पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। विनय ने अपने हाथ में कैमरा ले रखा था। तभी विपुल ने एकदम से कहा, शूट शुरू करते हैं। और विपुल के इतना कहते ही सब की सब डरावनी शक्लें उसकी तरफ बढ़ने लगी, और पूरा कमरा भूतों के हुजूम से भर गया हो जैसे। प्रखर, निशा और सुदेश जोर से चिल्लाते हुए भागने लगे। सब दरवाजे की तरफ भागे तो विपुल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये सब एक नाटक है, कुछ भी हकीकत नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, विनय सबको मना कर रहा था कि मत भागो। और फिर जब वो पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि सभी भूत रुक गए। तभी विपुल ने सभी को धन्यवाद किया और कहा कि अब हम चलेंगे। यह कहकर उसने विनय का हाथ पकड़ा, उसे चलने के लिए कहा, तो विनय ने पूरी ताकत से विपुल को दीवार की ओर ढकेला। सब विनय को देखने लगे, उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसका सिर घूमने लगा था, इसका मतलब वह भी भूत बन चुका था। प्रखर ने कहा कि सब के सब भागो यहाँ से, और चारों दोस्त दरवाजे की तरफ भागने लगे। सबने दरवाजा खोला और भागते भागते सड़क पर आ गए। फिर एक बंद घर के पास हाफते हाफते सभी लोग रुक जाते हैं, और फिर प्रखर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि कोई गड़बड़ है, पर मेरी सुनता कौन है? अब भुक तो सबके सब लोग, मैं और नहीं भाग सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ। विपुल यह कहकर उस बंद घर के पास बैठ गया। तभी सुदेश कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलकर स्टेशन पहुँचना होगा। और फिर उन लोगों ने देखा, जहाँ पर विपुल बैठा हुआ था उस घर का दरवाजा अपने आप खुला, और जोर की आंधी आई और विपुल को अंदर खींच ले गई। सब के सब बुरी तरह डर गए और भागने लगे। आगे वो भाग रहे थे और पीछे उनके भूत बन चुका विनय भाग रहा था। छोटी छोटी गलियों में भागते हुए तीनों दोस्त खुले घर के सामने पहुंच जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। अब क्या करें, ऐसे तो हम सब के सब मारे जाएंगे, निशा ने रोते हुए कहा। निशा की ये बात सुनकर सुदेश उसको गले लगाकर कहता है, कुछ नहीं होगा, बस कुछ घंटों की बात है, सुबह होने वाली है, फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। तभी प्रखर ने उस घर की तरफ देखा तो वो घर भी किसी खंडहर से कम नहीं था। सामने कुछ तस्वीरें लगी थी, शायद उसी घर के लोगों की थी।
एक जगह पूरा परिवार और एक जगह कुछ बच्चों की तस्वीरें लगी थीं। उसे बच्चों वाली तस्वीर में वह छोटी लड़की भी दिखाई देती है। प्रखर ने सुदेश और निशा को भी दिखाया। उन्हें उन तस्वीरों में वही चाय वाले भैया भी दिखाई दिए। सब बुरी तरीके से डर जाते हैं। तस्वीरों के पीछे लिखा हुआ था कि 1919, इसका मतलब यह सब लोग मर चुके हैं। जलियांवाले बाग में मरने वाले लोगों में से ये सब भी थे, और वो जो हमें उस घर में दिखाई दिए वो भी इन्हीं के परिवार के लोग थे। तभी मैं कहूँ कि उनकी तस्वीरें कैमरे में क्यों नहीं आ रही हैं? इसका मतलब कि विपुल और विनय सच के भूतों के साथ शूटिंग कर रहे थे। निशा ने ये कहते हुए सर पकड़ लिया। कहीं यह घर भी तो भूतिया नहीं है, थोड़ा अंदर चलते हैं। अगर यहाँ छुपा जा सकता है तो फिलहाल के लिए यह रात यहीं गुजार लेते हैं। सभी अंदर के कमरों की तरफ चल पड़ते हैं। प्रखर और सुदेश अपने अपने फोन की लाइट जलाकर फिर उसके सहारे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक बंद कमरे का दरवाजा खुलता है तो अंदर देखते हैं कि चारपाई पर एक आदमी लेटा हुआ होता है। उन्हें देखते ही वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। उन तीनों को लगता है कि शायद यह आदमी भी कोई भूत होगा। उन दोस्तों को भागता हुआ देखकर वह आदमी उन लोगों को रोकता है और उनसे उनकी कहानी पूछता है। सब उसे बताते हैं कि उसके साथ अब तक क्या क्या हो चुका है, और पूरी कहानी सुनने के बाद वह आदमी कहता है कि हाँ, यह सब सही है, मैंने भी सुन रखा है कि जलियांवाले बाग में मरे हुए लोगों की रूहें यहाँ आती हैं। पर तुम जिनकी बात कर रहे हो वो भाई बहन तो उस बाग में नहीं मरे थे, पर यहाँ पर बहुत सालों पहले चोरी हुई थी। वह तो उस दिन बाग में गए ही नहीं थे, और उस जलियांवाले बाग में सिर्फ और सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। मगर एक रात की डकैती ने उन दोनों की जान ले ली। वो बेचारा तो सिर्फ चाय बेचता था, नाम था उसका बंसी चाय वाला। लेकिन जब वो लोग मर गए तो उन्होंने फिर सबको मारना शुरू कर दिया। उन चोर डाकुओं को भी मार चुके हैं, और उन सब की आत्माएं इन बंद तालों के घरों में भटकती रहती हैं। फिर जब तुम जैसे नासमझ लोग उन्हें मिल जाते हैं तो वो तुम्हारा भी शिकार कर लेते हैं। उस आदमी ने बड़े ही इत्मीनान से सारी कहानी सुनाई। प्रखर उस आदमी से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रखर की बात सुनकर वो आदमी कहता है, मैं तो चोर हूँ, आज यहाँ आ गया। निशा बहुत घबरा कर कहती है, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? और इतना ही नहीं, निशा का थकान के कारण बहुत बुरा हाल था। वो आदमी कहता है, मुझे लगता है यहाँ से भागना फिजूल है, सब जगह वही भूत प्रेत वही आत्माएं हैं। उस आदमी की बात सुनकर प्रखर कहता है, हमें तो किसी तरह स्टेशन पहुँचना है ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलें। इतने में वो आदमी फिर से कहता है, तुम्हें स्टेशन मैं पहुँचा देता हूँ। आप कैसे पहुँचाएंगे? आपको रास्ता पता है क्या, जहाँ हमें फिर ऐसा खतरा नहीं मिलेगा? सुदेश ने अपने मन का सवाल पूछा था। तुम जाना चाहते हो तो मेरे पीछे चलो, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं तो यहाँ से निकल ही जाऊँगा, या कहकर आदमी आगे आगे चलने लगा। तीनों दोस्त रुक कर सोचने लगे कि जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो सब धोखा दे रहे हैं, सब हमें मारने में लगे हुए हैं। इतने में निशा कहती है, ऐसे में अब इस चोर आदमी पर भरोसा करना ठीक है क्या? निशा की बात सुनकर सुदेश कहता है, और हम कर भी क्या सकते हैं निशा, कोई और रास्ता भी तो नहीं है, हो सकता है यह आदमी हमारी मदद ही कर दे। सुदेश और निशा दोनों की बातें सुनने के बाद प्रखर कहता है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, विपुल और विनय मरकर भूत बन चुके हैं, अब हमारा क्या होगा? देखो यार, अब इस सुनसान जगह पर खड़े रहना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, उस आदमी के पीछे चलते हैं। या कहकर सुदेश निशा का हाथ पकड़ और प्रखर को भी खींच उसी दिशा की तरफ भागने लगता है जहाँ वो आदमी जा रहा था। सुनो सुनो, हम भी पीछे आ रहे हैं, तीनों यह कहते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। अब सबके सब गलियों से निकलकर बाहर की तरफ आने लगते हैं, मगर रास्ता सुनसान है। छोटी छोटी झाड़ियाँ और पेड़ दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। झाड़ियों में रेंगते हुए कीड़े नजर आने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि ये सारे कीड़े एक साथ सांप बनकर उन्हें डसने लग जाएंगे। प्रखर पूछता है, हम जा कहाँ रहे हैं? इतने में वो आदमी बड़ी ही रुखाई से कहता है, तुम्हें स्टेशन पहुंचने से मतलब होना चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर प्रखर एक बार फिर से सवाल करता है, उन दोनों भाई बहन को मरे हुए कितना समय हो चुका है? क्योंकि आपने तो यही कहा था कि वो लोग उस जलियांवाला बाग वाले हत्याकांड में नहीं मरे थे। प्रखर के सवालों का जवाब वो आदमी बस चंद शब्दों में देता है कि उनको मरे हुए 5 साल हो गए। प्रखर एक बार फिर से सवाल पूछता है कि फिर वो चोर कब मरे जिन्होंने उन्हें मारा था? एक बार फिर आदमी जवाब देता है, यही कोई 2 साल। और इतने में प्रखर का गला सूखने लगता है।
आपको यह कहानी यहाँ के लोगों ने सुनाई होगी। प्रखर ने एक बार फिर अपनी आवाज को संभाल कर बोला, कहानी सुनने के लिए कोई जिंदा नहीं रहा। इतने में निशा पूछती है कि फिर आपको कैसे पता? वो आदमी फिर एक बार बताता है कि मैं वही चोर हूँ जिसने उन भाई बहन को मारा और उन्होंने मुझे। या कहकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आँखें, जला हुआ चेहरा और उसके मुंह से निकलती हुई आग को देखकर पसीने से लथपथ वो तीनों वहाँ से जोर से भागे और उन सब की आवाज जैसे कहीं हलक में अटक कर रह गई हो। तभी प्रखर बोला, भागो निशा और सुदेश, कहीं भी भागो। सब उल्टी दिशा की तरफ भागने लगे। उन तीनों दोस्तों को भागता हुआ देखकर वो डरावना सा आदमी चिल्ला कर कहता है, तुम्हें तो कोई तुम्हारा अपना ही बचा सकता है, अन्यथा तुम्हारी मौत तय है। उसकी ये बात सुनकर प्रखर फिर से कहता है, अरे जल्दी चलो। प्रखर की ये बात सुनकर सुदेश गुस्से से कहता है, सब तेरी वजह से हुआ है, तुझे ही अमृतसर आने की पड़ी थी और तो और वो बाघा बाजन देखने के लिए मरा जा रहा था। अब सचमुच ही मौत हमारे पीछे पड़ गई है। अच्छा खासा हमारा प्लान पहाड़ों की वादियों में घूमने फिरने का बन रहा था, वहीं चले जाते। अब कह रहा है जल्दी चलो। सुदेश ने गुस्से में इतनी बात निशा को उठाते हुए कहा। प्रखर कहता है, मेरी वजह से? मैंने कहा था कि उन बंद तालों के घरों में जाओ, और तो और विपुल और विनय को मैंने कहा था भूतों के साथ मिलकर वीडियो शूट करो। प्रखर ने भी लगभग ये बात चिल्लाते हुए कहा। निशा कहती है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हमें अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके बारे में जो गुजर चुका है। निशा उन दोनों को समझाती है। अब तीनों स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। अब स्टेशन ज्यादा दूर नहीं रह गया था, बस स्टेशन पर पहुँचने ही वाले थे कि अचानक से जोर की हवा आई और निशा गायब हो गई। वहीं झाड़ियों की सरसराहट ने निशा को ले जाने का अनुमान दे दिया। निशा कहाँ गई? निशा? दोनों सुदेश और प्रखर जोर से चिल्लाने लगे, मगर कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। इसका मतलब निशा हमें छोड़कर चली गई? सुदेश ने लगभग रोते हुए कहा। कैसी बातें कर रहा है, जरूरी है क्या जो विपुल और विनय के साथ हुआ वही हमारी निशा के साथ भी हो? हो सकता है वह रास्ता भटक गई हो। प्रखर ने सुदेश का कंधा पकड़ उसे संभालते हुए कहा, आखिर सब खत्म हो गया, तूने महसूस नहीं किया? वो भूत निशा को उठाकर ले गया। यह कहकर उसने गुस्से में एक जोर का घूसा प्रखर के मुंह पर दे मारा। अब हम कहीं के नहीं रहेंगे, बस सुदेश ये कहे जा रहा था और प्रखर को मारे जा रहा था। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, लगे एक दूसरे को मारने। सुदेश के सिर पर खून सवार हो गया था। तभी एक जोर का घूसा सुदेश और प्रखर के मुंह पर लगा और वो दोनों दूर जा गिरे। उनके सामने विपुल और विनय भूत बनकर खड़े थे। विपुल और विनय ने प्रखर और सुदेश को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद बाकी के भूत भी उन्हें खींच एक ऐसी जगह ले आए जहां निशा को पेड़ से उल्टा टांग रखा था और उसका सिर आग की तरफ था जो कट कर सीधा आग में गिरने वाला था। निशा जोर से चिल्ला रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, कोई बचाओ मुझे। प्रखर और सुदेश को जख्मी हालत में देख निशा ने और भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सुदेश, प्रखर, बचाओ मुझे। निशा ने कहा, तुम दोनों ने हमें परेशान कर दिया है। इतने में भूत बन चुके विपुल और विनय कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत परेशान किया, बहुत भगाया, अब हम तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। सुदेश ने विपुल और विनय को हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे और मेरी निशा को छोड़ दे, तू प्रखर की जान ले ले। ये क्या कह रहा है तू? प्रखर ने सुदेश की तरफ देखते हुए कहा। सुदेश कहता है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तेरे खानदान में तो वैसे भी मरने की बड़ी हिम्मत है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो छोटी चाय वाली बच्ची कहती है, सब मरेंगे, हम भी मरे थे, हमारा भी पूरा परिवार जलियांवाले बाग हत्याकांड में मारा गया था और तुम सब भी मारे जाओगे, सबके सब मरेंगे। तभी उस भूतनी का मुंह बड़ा हो गया और उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि निशा की गर्दन तक पहुंच गया। सुदेश निशा का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है तो बाकी के प्रेत भी उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। और इससे पहले कि निशा का सिर उस दहकती आग में जाता, प्रखर को उस भूत चोर की बात याद आ जाती है कि तुम्हें कोई तुम्हारा अपना ही बचा सकता है। तभी प्रखर ने अपने पिता को याद किया और अचानक इतनी तेज रोशनी हो गई, सामने देखा तो उसके पिता की आत्मा खड़ी थी। सभी भूतों ने प्रखर के पिता की आत्मा पर हमला करना शुरू कर दिया, फिर और भी कई आत्माएं आ गईं। तभी उस लड़की भूतनी को अपना परिवार और सारा पड़ोस जो उस जलियांवाले कांड में मर चुका था नजर आने लगे।
तभी वो लड़की का भूत और बंसी की आत्मा शांत हो गई और निशा पेड़ से नीचे गिर गई। प्रखर के पिता की आत्मा प्रखर से कहती है, भागो बेटा, स्टेशन पहुंचो, बस और पीछे मुड़कर मत देखना। तीनों भागकर स्टेशन पहुंचे और दिल्ली वाली गाड़ी में चढ़ गए। भीड़ होने के कारण दरवाजे पर ही खड़े हो गए। सुदेश ने निशा को गले लगाकर कहा, शुक्र है हम बच गए, आज प्रखर के पापा और उन सभी नेक रूहों ने हमें बचा लिया। निशा ने प्रखर को देखते हुए कहा। प्रखर कहता है, हाँ, देश के लिए मरने वाले शहीद क्यों कहलाते हैं आज समझ आया, क्योंकि वो अमर हो जाते हैं और वो किसी से बदला नहीं ले सकते। ये कहते हुए प्रखर की आंखों में आंसू आ गए। अब यह नाटक बंद कर, बस यह हमारा आखिरी ट्रिप था, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना है। अब कहीं जाना होगा तो मैं और निशा खुद ही देख लेंगे, बस दिल्ली पहुंच जाएं, सुदेश ने प्रखर को घूरते हुए कहा। गाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी और सुदेश पागलों की तरह निशा को गले लगाते हुए हम बच गए कहने लगा। तीनों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी कि ट्रेन के दरवाजे से किसी ने सुदेश को जोर से खींचा। निशा जोर से चिल्लाती है। दोनों ने देखा कि सारे भूत सामने दूर खड़े थे और सुदेश की कटी हुई गर्दन उनके हाथ में थी। निशा ने ना कुछ सोचा ना समझा, बस चलती गाड़ी से कूद गई।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सोग फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, आज की ये शाम समर्पित है उस मुस्कुराते चेहरे को जिसने 70 के दशक से 2000 तक रोमांस को अपनी पहचान बना दिया। जी हाँ, आज भूले बिसरे गीत में हम बात करेंगे उस एक्टर की जिसने कहीं ना कहीं अपने दौर से, जी हाँ 70 के दशक से लेकर के 90 तक में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आप सुन रहे हैं शो भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। और जिस अभिनेता की आज हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है ऋषि कपूर, जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि हर गीत में धड़कता एहसास थे। उनका चेहरा, उनकी मासूमियत, उनकी अदाएं, हर गाने में बस एक कहानी कह जाती थी। तो इनकी सबसे पहले वाली सॉन्ग को मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कहीं ना कहीं मेरे दिल के भी बहुत करीब है। कहते हैं ना, चेहरा और चांद, और जब बात चांद की आती है तो हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। एक चांद आसमान का और एक हमारी जिंदगी का, तो कुछ ऐसे ही शब्द से सजाया गया है ये नगमा। नगमे के बोल हैं, चेहरा है या चांद खेला है। मूवी सागर जो 1985 में आई थी, गोवा के नीले आसमान के नीचे सागर की लहरों के बीच रवि यानी हमारे ऋषि कपूर मोना को देखते हैं और दिल कहता कि चेहरा है या चांद खिला है। कहते हैं ये गाना तब शूट हुआ था जब गोवा की लहरों में सूरज ढल रहा था और ऋषि जी ने उस समय अपनी आंखों से वो सच्चा प्रेम दिखाया जो उस मूवी में हमने पूरी परफेक्शन के साथ देखा और महसूस किया। वही चमक थी जो किसी आशिक के दिल में पहली बार होती है। चलिए उस दौर की ओर रुख करते हैं इस गीत के माध्यम से।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने एंजॉय किया ये प्यारा सा नगमा। इसको आवाज से सजाया था किशोर कुमार ने, म्यूजिक दिया था आरडी बर्मन ने और लिरिक्स जावेद अख्तर साहब के थे। अब हम चलेंगे ऋषि कपूर हिट्स, जी हाँ रोमांटिक हिट्स की एक और नगमे की ओर। गाने के बोल हैं, सागर किनारे दिल ये पुकारे, और ये सॉन्ग भी सागर मूवी का ही सॉन्ग है जो कि आई थी 1985 में। स्टार कास्ट की बात करें तो ऋषि कपूर साहब के साथ में डिंपल कपाड़िया देखी गई थी इस मूवी में। सिंगर हैं किशोरदा और लता जी, म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन साहब, लिरिक्स जावेद अख्तर साहब के। ये गाना सागर मूवी का वो दूसरा मोती है जब लहरों की गूंज के साथ दिल अपनी तन्हाई बयां करता है। आरडी बर्मन का ये कमाल का संगीत जहां हर तरंग हर नोट जैसे सागर का ही हिस्सा बन गया हो। कहते हैं पंचम दा को ये धुन एक गोवन लोक धुन से प्रेरित लगी थी, पर जब ये धुन ऋषि कपूर जी पर फिल्माई गई तो वो गीत बन गया प्यार की पुकार, जो हर दिल को कहीं ना कहीं कर देता है तार तार। चलिए एंजॉय करते हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर अपना वो शो जिसमें हम भूले बिसरे नगमों की बात करते हैं। आज के सफर में हम उस दौर की ओर जा रहे हैं जहां पे हम ऋषि कपूर साहब के रोमांटिक हिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। इसी क्रम में

याद रहेगा। और सच में ये गाना प्यार के वादे की पहचान बन गया। इस गाने को आवाज से सजाया है किशोर कुमार साहब ने और साथ ही साथ में आशा भोसले जी ने। स्टार कास्टिंग की बात करें तो ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों और टीना मुनीम जी। और म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो आरडी बर्मन साहब का। लिरिक्स गुलशन बावरा जी का। चलिए हम भी एंजॉय करते हैं इस नगमे को।

जी हाँ दोस्तों, दौर चाहे जो हो, जब अभिनेता अपने अभिनय पर आता है तो दिल जीत लिया करता है। अभी तक हमने सुना 70s के हिट्स सॉन्ग, अब हम आगे बढ़ेंगे उस दौर की ओर जब ऋषि कपूर साहब ने एक मूवी में अपना अभिनय दिया था और उसके इस उम्दा वाले सॉन्ग की बात करें तो ये आज भी उतने ही फेमस हैं, उतने ही पसंद किए जाते हैं जितना जब ये बने थे। गाने के बोल हैं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं। मूवी का नाम है दीवाना, जो आई थी 1992 में। 90 के दशक में ऋषि कपूर और दिव्या भारती की जोड़ी ने प्यार की मासूमियत फिर से लौटा दी थी। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, ये गीत उस संकोच का प्रतीक है जब प्यार दिल में होता है पर लफ्ज अब तक नहीं निकलते होते, है ना। कई दफा होता है कि हम प्यार में तो पड़ जाते हैं पर जुबान तक वो बात आती ही नहीं। कुमार सानू की आवाज और ऋषि कपूर साहब की झिझकती मुस्कान, एकदम परफेक्ट मेल। म्यूजिक की बात करें तो नदीम और श्रवण जी की म्यूजिक, लिरिक्स से सजाया इसे समीर साहब ने और जिस बैनर में ये म्यूजिक कास्ट किया गया वो था मयंक आर्ट्स। चलिए हम भी चलते हैं उस दौर की ओर जो कि 90s का हिट्स कहलाता है।

अब हम जिस सॉन्ग की बात करने वाले हैं वो हर दफा हर इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं तहलका मचा देता है। अब आप सोच रहे होंगे तहलका मचा देता है मतलब ये जनाब कि हम कई दफ़ा तैयार तो होते हैं कहीं निकलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों के चलते हमें हो जाती है देर, और उसके बाद में हम सफाई भी देते हैं, चाहे वो ऑफिस की बात हो, ज़िंदगी की बात हो, या किसी अपने से मिलने की बात हो। फिर सफाई देते देते हम थक जाते हैं और सामने वाला हमसे नाराज़ होते होते, और इस तरह से नोक झोंक आगे बढ़ती जाती है और हम उसे मनाते जाते हैं। तो ये सॉन्ग हम उस जगह पे बिल्कुल से डेडिकेशन कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं उस वक्त को भी और उस इंसान को भी जो अक्सर आने में देरी कर जाता है। गाने के बोल हैं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, होती है ना। और ये सॉन्ग है हीना मूवी से, जो कि आई थी 1991 में। सिंगर की बात करें तो लता जी और सुरेश वाडकर साहब ने इसमें आवाज़ दिया है, और म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट दोनों ही रविंद्र जैन रहे हैं। चलिए हम पे चलते हैं वरना हमको भी देर हो जाएगी और पनवेल निकलने से पहले हमारी भी ट्रेन छूट जाएगी। आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में।

दोस्तों, अब मैं आपसे जिस सॉन्ग के बारे में बात करने वाली हूँ वो हर घर में दिखता है। अब आप कहेंगे हर घर में दिखता है? हाँ जी, कहते हैं ना कि हर घर में, हर नज़र में और हर एक खूबसूरती पे होना चाहिए क्या, पर्दा। हाँ जी, ये जो सॉन्ग है इसके बोल हैं पर्दा है पर्दा। और ये सॉन्ग जिस मूवी से है उसका नाम है अमर अकबर एंथनी। और इसमें अगर सिंगर की बात की जाए तो आवाज़ से सजाया इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर थे हमारे लक्ष्मीकांत और प्यारी लाल जी की, वो जोड़ी जो आज भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रही है। लिरिक्स हैं आनंद बख्शी साहब का। कास्ट की बात करें तो अमिताभ साहब, विनोद जी, ऋषि कपूर साहब, परवीन बाबी, शबाना आज़मी और नीतू सिंह जी की जोड़ियाँ। जब इस सॉन्ग में ऋषि कपूर साहब ने अपनी मुस्कान और ऊर्जा से मंच को हिला दिया, तब से लेकर आज तक ये सॉन्ग उतना ही फेमस है। और काफ़ी नटखट वाला रूप देखने को मिला हमें ऋषि कपूर साहब का इस सॉन्ग में। ये गीत बना था अमर अकबर एंथोनी का दिल, जी हाँ, क्योंकि इस गाने ने पूरा शमा बांध दिया था। और आज भी जब शमा बांधने की बारी आती है, नोकझोंक की बारी आती है, थोड़े से नटखट पने की बारी आती है, तो हम ये सॉन्ग गुनगुना के किसी को छेड़ दिया करते हैं और किसी की यादों को ताज़ा कर दिया करते हैं। कहते हैं इस गाने की शूटिंग के दौरान स्टूडियो में सच में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि ऋषि कपूर का लाइव परफॉर्मेंस सबको झूमने पर मजबूर कर रहा था। तो देर किस बात की, चलिए हम भी चलते हैं कहाँ, वहीं झूमने इस सॉन्ग के माध्यम से।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवाना।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

श्रोताओं, अब मैं आप सभी को पहाड़ों की उन वादियों में लेके जाना चाहूंगी जहाँ पे एक प्यारा सा नाम एक लड़की को दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात कर रही हैं आपकी अपनी आरजे अनोखी, तो आपको बता दें कि ये वो गाना है जो कहीं ना कहीं आज भी जब हम पढ़ते हैं या गाते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो हमारा दिल बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित होता है। गाने के बोल हैं, होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है ए कंचन, और कंचन को वहाँ पे कांची बोलते हैं, और कई दफ़ा हम प्यार से किसी को कांची बुला भी लेते हैं। तो अगर आपको ये गाना याद आया है तो ठीक है, नहीं आया तो हम याद दिला देते हैं। गाना उस जमाने का है जब ये बना था, और ये बना था 1981 में, और मूवी थी जमाने को दिखाना है। युवा ऋषि कपूर का एक और रोमांटिक अंदाज इस सॉन्ग के माध्यम से सभी को देखने को मिला। नासिर हुसैन की फिल्म, आर डी बर्मन साहब का संगीत और ऋषि और पद्मिनी जी की जोड़ी ने इसको सुपर डुपर हिट बना दिया था। ये गीत बना हर उस दिल का इजहार जो मोहब्बत में डूबा था, जहाँ ऋषि कपूर को ठंड से कांपने के बावजूद भी हर सीन में मुस्कुराना पड़ा था। सिंगर की बात करें तो शैलेंद्र सिंह जी थे, और म्यूजिक डायरेक्शन था आर डी बर्मन साहब का। लिरिक्स से सजाया था इसे मजरूह सुल्तानपुरी जी ने। स्टार कास्टिंग में थे हमारे ऋषि कपूर साहब, पद्मिनी, कोल्हापुरी जी।

अब 80s के दशक से हम 90s की ओर फिर से रुक करते हैं और ले चलते हैं आपको उस गाने की ओर जिनके बोल हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। एक बार फिर से दीवाना मूवी जो आई थी 1992 में, जब किसी का इंतजार सालों साल का नहीं बल्कि सांसों का हिस्सा बन जाए तो वो गाना बनता है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। ऋषि कपूर का ये भावुक अंदाज हमें फिर याद दिलाता है कि प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक प्रतीक्षा है।

अच्छा दोस्तों, कुछ इत्तेफाक ऐसे होते हैं ना जब लगता है कि पहली ही मुलाकात जन्मों जन्म का साथ बन जाए। इस गाने को जब आप सुनेंगे तो आपको वही एहसास आने वाला है। गाने के बोल हैं, हमने

जैसे मूवी है खेल खेल में जो आई थी 1975 में, युवा रोमांस का सबसे चुलबुला चेहरा खेल खेल में, हाँ ये मूवी है। और ऋषि कपूर और नीतू सिंह जी की असली वाली केमिस्ट्री इस फिल्म की जान थी। मज़ेदार बात ये है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियाँ सच में बढ़ने लगी थी और यही दोस्ती आगे चलकर जिंदगी की कहानी बन गई। इसलिए जब आप ये गीत सुने याद रखिए ये सिर्फ एक सीन नहीं, एक सच्ची मोहब्बत की शुरुआत थी। आइए एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को।

अब बढ़ चलेंगे आज के सफर के उस अंतिम पड़ाव की ओर, जो कि बतौरे तोहफा आपके लिए लेके आई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। ऋषि कपूर के गीतों में से एक बात हमेशा कॉमन रहती थी, चाहे वो सागर किनारे की तन्हाई हो या पर्दा है पर्दा की मस्ती, उनकी आंखों में हमेशा सच्चा प्यार झलकता था। आज वे हमारे बीच भले ही नहीं हैं, पर उनके गीत, उनकी मुस्कान और उनका रोमांस हमेशा हमारे दिल में गूंजता रहेगा। तो चलिए आज के इस शो के इस सफर के लास्ट नगमे को आप एंजॉय करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में, किसी और कलाकार के साथ, किसी और नगमों के साथ, किसी और अध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड आवाज

0: विकास कॉलोनी गोंडा।
1: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र नीरो हॉस्पिटल सुधा नीरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।